मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 28वीं तिथि। तदनुसार 19 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:57 और 8 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। सुप्रभात।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों को चेतावनी दी है कि ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वो जांच के लिए केवल असली OMR शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई OMR शीट फर्जी पाई गई है, इसीलिए अब हर शिकायत और हर OMR शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय

0: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। शिक्षा बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के बीच एहतियाती तौर पर श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जलभराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोत से दूर रहने की सलाह दी है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम विदेशी सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ रुपए है। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धियों में से एक बताया है। पार्टी के IT विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में आयोजित भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलोग्राम भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में ये भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत करते हैं मातृ वंदना से।

साथियों, ये देशगान आपने सुना समूह स्वर में। लीजिए सुनिए अब भजन छाया गांगुली के स्वर में।

साथियों, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। लीजिए, आप सुनिए अनूप जलोटा के स्वर में अगला ये भजन।

साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। लीजिए सुनिए मनहर उदास और साथियों के स्वर में कार्यक्रम के आखिर में ये भजन।

0: साथियों, इसी भजन के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है नम्रता। आलेख है KG महेश्वरी का और वाचक हैं यतीन्द्र चतुर्वेदी।
1: मानव जब पैदा होता है तो वो निर्विकार, अबोध एवं निर्मल होता है, पर ज्यों ज्यों उसका बालपन समाप्त होता है, उस पर काम, क्रोध, मद व लोभ का आवरण चढ़ता चला जाता है। जहाँ शिशुपन में वो हर एक से सहायता की मांग करता है और उसकी इस मांग में भोलापन होता है, वहीं बड़े होने पर उसका वह भोलापन समाप्त हो जाता है और उस पर कभी अहंकार का तो कभी मोह का प्रभाव बढ़ जाता है। जहां अहंकार व मद सवार हो जाएं, वहां नम्रता तिरोहित हो जाती है। रावण के पास क्या नहीं था, पर उसका अहंग उसे ले डूबा। कंस को भी भगवान बनने का शौक था और उसको इसी बात का अहंकार भी था। परिणाम सबके सामने है। वहीं दूसरी ओर तुलसी जैसे विनम्र पुरुष भी हमारे सामने हैं। उन्होंने सभी की वंदना की। ऐसा नहीं है कि वैदिक धर्म ही नम्रता की शिक्षा देता हो। इस्लाम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन सभी धर्म नम्रता पर ही बल देते हैं। पोलाइटनेस इज द फ्लावर ऑफ ह्यूमैनिटी। कोई भी धर्म ये नहीं कह

0: कहता कि अहंकार की चादर ओढ़ो। इतिहास के पन्ने पलटने पर एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जिसके अनुसार व्यक्ति विनम्र बनकर ही सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सके। रहीम की कविता में उदारता का एक उदाहरण देखें। देन हार को और है भेजत सो दिन रैन, लोग भरम हम पर धरें या ते नीचे नैन। मिठाई कहीं से भी तोड़िए मीठी ही निकलेगी। इसी प्रकार नम्रता भी बड़ी प्रेरक, मीठी एवं लुभावनी ही होती है। अपने नाम के आगे उपनाम लगा लेने से नम्रता नहीं आती, इसे तो हृदय से आना होता है। और जब तक हम अपने हृदय को विकारों से शून्य नहीं करेंगे तब तक नम्रता से हम दूर ही रहेंगे। नम्रता के लिए चाहिए त्याग, तपस्या, सेवा, उदारता, कष्ट सहने की शक्ति, इंद्रिय संयम, क्रोध पर काबू। इन सबको प्राप्त करने में बाधाएं आएंगी। हर पग पर विकार हमारे रास्ते की बाधा बनेंगे, पर उन पर विजय प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं। मानव यदि ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। अतः हम सब विनम्र बने, अन्य गुण अपने आप ही हमारे पास हमारे आचरण में समा जाएंगे।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आज का विषय था नम्रता। आलेख था केजी महेश्वरी का और वाचक थे यतीन्द्र चतुर्वेदी। हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानी हुई कि हरि के भक्ति बिना जीवन अकारत बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने समान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मन चाह वरदान प्राप्त हुआ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। ये प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा सामयिक चर्चा, टमाटर की फसल में कीट नियंत्रण। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, टमाटर की फसल कम या अधिक क्षेत्रफल में सभी उगाते हैं। सामान्यतः टमाटर की फसल गर्म ऋतु की फसल है, गर्म क्षेत्रों में उत्पादन अधिक मिलता है, लेकिन जहां पर पाला कम अवधि के लिए पड़ता हो वहां पर भी टमाटर की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। टमाटर की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए हमेशा प्रमाणित बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। बीजों को बोने से पहले फफूंदनाशक दवाओं से उपचारित करने के बाद ही नर्सरी में बीजों की बुवाई करनी चाहिए। उन्नतशील प्रजातियों का चयन करके बुवाई करनी चाहिए जिससे पैदावार अधिक मिल सके। टमाटर की उन्नतशील प्रजातियां हैं पूसा रूबी, पंजाब छुआरा, पूसा अल्ली ड्वार्फ, अर्का विकास, गुलमोहर सदाबहार, S22, S28। पौध प्रतिरोपण के पूर्ण खेत की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। खेत को खरपतवार रहित बना लेना चाहिए। खेत तैयार करते समय पर्याप्त मात्रा में जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। दीमक से बचाव के लिए खेत तैयार करते समय ही 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कीटनाशक चूर्ण मिला दें। टमाटर की फसल जब बरबाद की स्थिति में होती है, जब कुछ कीट फसलों को हानि पहुंचाते हैं, सबसे अधिक नुकसान तंबाकू की इल्ली पहुंचाती है। बेस कीट भूरे रंग के होते हैं, ऊपरी पंख कत्थई रंग के होते हैं जिस पर सफ़ेद लहरदार धारियां पाई जाती हैं। पिछले पंख सफ़ेद रंग के होते हैं। पूर्ण विकसित इल्ली का शरीर कोमल हरा भूरा होता है। इसके शरीर पर कहीं कहीं रोए होते हैं। इल्ली की पीठ पर दोनों तरफ एक एक पीली धारी होती है। इल्ली पौधों की पत्तियों को काट कर नुकसान पहुंचाती है। पौधों की सिराओं मध्य सिरा के अतिरिक्त कोमल टहनियों को भी खा जाती है। यह कीट मुख्यतः रात के समय फसल को नुकसान पहुंचाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए

0: के गुच्छों को पत्तियों सहित तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। फसल कटाई के बाद गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे प्यूपा संखी पूर्णतः नष्ट हो जाएं। इसी तरह कपास का पर्णफुदका कीट नुकसान पहुंचाता है। यह कीट 3 से 6 मिलीमीटर लंबा होता है। यह कीट हरा भूरा या स्लेटी भूरा होता है। व्यस्क और अव्यस्क दोनों ही कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यह कीट पौधों से रस चूसते हैं जिसके कारण पौधे कमजोर हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में ये पौधे सूखने लगते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह कीट प्रकाश प्रिय होते हैं। प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। टमाटर का चूड़ी बग अंडाकार मुलायम सफ़ेद चूर्ण मोम से ढके रहते हैं। मादा कीट पूर्ण विकसित होती है लेकिन नर कीट पंख रहित होते हैं और नर कीट मादा की अपेक्षा छोटे होते हैं। इल्ली और कीट दोनों ही पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये पौधों के चारों तरफ चिपक कर रस चूसते रहते हैं जिससे पौधों की बढ़वा रुक जाती है। प्रभावित पौधे झाड़ीनुमा गहरे हरे रंग के हो जाते हैं। यह मुख्य पहचान होती है। पौधों में जब फल बनने लगते हैं, जब फल छेदक इल्ली फसल को प्रभावित करती है, यह कीट पीले भूरे रंग के होते हैं। कीट के अगले पंखों पर भूरे रंग की कई धारियां होती हैं और पिछले पंख सफेद रंग के होते हैं। पूर्ण विकसित इल्ली की ऊपरी सतह पर हल्का हरा और निचली सतह पर चमकदार सफेद होता है। पृष्ठभाग पर दोनों तरफ एक दो हल्की धारी होती है। इस कीट की इल्ली ही फसल को हानि पहुंचाती है। कच्चे और पके फलों में छेद करके उसके अंदर का गूदा खा जाती है जिसके कारण फलों में सड़न आरंभ हो जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर मिट्टी में गाड़ देना चाहिए। खड़ी फसल में थायोडान या मेटासिस्टा का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए जिससे कीट नियंत्रित होंगे। फसल कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे प्यूपा इल्ली धूप में मर जाए, साथ ही फसलों के अवशेषों को जलाकर नष्ट कर दें।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा सामयिक चर्चा। टमाटर की फसल में कीट नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। साथियों, शासकीय केआरजी कॉलेज में एल्युमिनाई मीट 2025-26 का आयोजन शनिवार को हर्षोल्लास के साथ किया गया जिसमें सभी एल्युमिनाई ने कॉलेज के पुराने दिनों को याद किया और अपनी यादें सभी के साथ साझा की। वर्ष 1968 से वर्ष 1984 तक की भूतपूर्व छात्राओं ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में संगीत विभाग की छात्राओं ने मधुर गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं छात्रा खुशी तोमर ने भरतनाट्यम की सांस्कृतिक प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री माया सिंह ने कहा कि हमें माह में एक बार एल्युमिनाई मीट का आयोजन करना चाहिए। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर आशा माथुर ने कहा कि केआरजी की छात्राएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मंजू दुबे ने किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक ध्यानेंद्र सिंह, प्राचार्य डॉक्टर साधना श्रीवास्तव, डॉक्टर डी के शर्मा, डॉक्टर मनीषा कौल, डॉक्टर सुधा चौहान, आशा सिंह और महिला क्रिकेट कोच हेमा राजनाव गांवकर उपस्थित रहीं। इसी के साथ ही साथियों, आगामी जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियों को परखने के लिए शनिवार रात फूलबाग बारादरी क्षेत्र में रात्रिकालीन ड्राई रन आयोजित किया गया। साथियों, ग्वालियर को इस चरण के परीक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। जिसके तहत जनगणना की पूरी प्रक्रिया को व्यवहारिक परीक्षण किया जा रहा है।

ड्राई रन के दौरान भोपाल से आए जनगणना प्रभारी संजीव श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी रुचिका चौहान सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जनगणना दल की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। साथियों, अधिकारियों ने प्रक्रिया का अवलोकन करते हुए दिशा निर्देश भी दिए। इसी दौरान विशेष रूप से उन बेघर लोगों की गणना की प्रक्रिया का अभ्यास किया जो दिन भर रोजगार के लिए बाहर रहते हैं और रात में खुले स्थानों या सार्वजनिक स्थलों पर विश्राम करते हैं। इसी के साथ साथियों, परिवार नियोजन के विकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार नियोजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। CMHO डॉक्टर MS सागर ने बताया कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस अभियान के अंतर्गत ESV स्कीम में 3 आशा कार्यकर्ता गीता चौहान ग्राम गडाजर ब्लॉक भितरवार, कमलेश बघेल ब्लॉक घाटीगांव, मीरा कुशवा ग्राम तालपुरा ब्लॉक घाटीगांव और अंतरा इंजेक्शन के लिए रेणु सेन ग्राम इराया ब्लॉक भितरवार, श्रीमती किरण जाटव ग्राम नयागांव ब्लॉक घाटीगांव, रानी रावत ग्राम पाटई ब्लॉक घाटीगांव को सम्मानित किया गया।

0: पत्ती बाकी यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
1: साथियों, जीवाजी विश्वविद्यालय की राजनीति विज्ञान व लोक प्रशासन अध्ययन शाला में सत्र 2026 में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम शनिवार को हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुलगुरु प्रोफेसर राजकुमार आचार्य ने कहा कि युवा अपने ज्ञान और कौशल का विकास कर भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। प्रोफेसर एस के सिंह ने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में संचालित अनुशासन, रैगिंग, निरोधक प्रावधानों व छात्र कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इसी के साथ सूचना परक कार्यक्रम दर्पण यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है।
2: आशावाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम, प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। संसदः आगामि मानसून सेशन इति प्रावृत सत्रात् पूर्वम् अद्य सर्वकारेण सर्वदलीय सभा आहूता। सत्रस्य कालखण्डे संसदः द्वयोः सदनयोः सुचारुरूपेण कार्यं कर्तुं सर्वकारः सर्वेभ्यः राजनैतिकदलेभ्यः सहकार्यं याचयिष्यति। श्वः आरभ्य मानसून सत्रम् अगस्त मासस्य 13 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। सत्रस्य कालखण्डे अनेके महत्वपूर्णाः विधेयकाः चर्चायै पारितार्थञ्च सुनिश्चिताः सन्ति। भारतीय जनता पार्टीति दलेन वर्णितं यत् सर्वकारस्य इथेनाल् मिश्रण कार्यक्रमः भारतस्य बृहत्तमेषु सार्वजनिक नीति सफलता कार्येषु अन्यतमः कार्यक्रमः वर्तते, येन कृषकाणाम् आयः वर्धितः, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढा अभवत्, आयातित असंस्कृत पेट्रोलियम तैलस्य निर्भरता च न्यूनीकृता। सामाजिक माध्यम पटले भाजपा दलस्य सूचना प्रौद्योगिकी कोश प्रमुखः अमित मालवीयः अवदत् यत् E20 मिश्रण कार्यक्रमः राजनैतिक बिंदु अंक निर्धारणेन चालितायाः पक्षपात पूर्ण आलोचनायाः अपेक्षया समग्र साक्ष्य आधारित मूल्यांकनाय योग्यः अस्ति, तथा च एतादृश परिणामस्य सार्वजनिक नीतेः मापनीय परिणामैः न्यायः करणीयः।

0: विंशतिः प्रतिशतम् इथेनाल् मिश्रणस्य उपलब्धिं भारतस्य अत्यन्तं परिणामी नीतिसफलतासु अन्यतमम् इति कथयन् सः अवदत् यत् एतेन उपक्रमेण कृषककल्याणं ग्रामीणविकासः सहकारीयसंस्थाः ऊर्जासुरक्षा पर्यावरणस्य स्थायित्वञ्च इत्यादिषु क्षेत्रेषु युगपत् औन्नत्यं दृष्टम्। एनटीए इति राष्ट्रीय परीक्षण संस्थया समीक्षार्थम् ओएमआर पत्राणां प्रस्तुतीकरणस्य विषये छात्राणां अभिभावकानां च कृते सचेतक पत्रं प्रकाशितम्। एनटीए इत्यनेन प्रकाशितं यत् अद्यतनकाले समीक्षार्थं प्रदत्तानि बहूनि ओएमआर पत्राणि कृत्रिमाणि प्राप्तानि। एनटीए इत्यनेन उक्तं यत् प्राप्तस्य प्रत्येकस्य पत्रस्य सक्रियरूपेण परीक्षणं क्रियते, परन्तु यदि कृत्रिमम् अथवा एआई जनितानि ओएमआर पत्राणि प्रस्तूयन्ते तर्हि गभीराः न्यायिकपरिणामाः भवितुम् अर्हन्ति इति सचेतना दत्ता। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऐषमः दशमकक्षायाः द्वितीय बोर्ड परीक्षायाः परिणामः घोषितः। ये छात्राः द्वितीय बोर्ड परीक्षां लिखितवन्तः ते डिजी लॉकर रिजल्ट इत्यस्य माध्यमेन तेषां परिणामान् प्राप्तुं शक्नुवन्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः अनुशंसानाम् अनुरूपं सीबीएसई संस्थया दशमकक्षायाः कृते अस्मात् वर्षात् बोर्ड परीक्षाद्वयं प्रवर्तितमासीत्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः एस्टोनिया देशस्य आधिकारिक यात्रायाः समये टेलिन नगरे भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चं संबोधितवान्। अस्मिन् अवसरे सः व्यापारे निवेशे नवीनतायां प्रौद्योगिक्यां च गहन सहकार्यस्य आह्वानं कृतवान्। मञ्चे द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यस्य सुदृढीकरणाय नूतनानां मार्गाणाम् अन्वेषणार्थम् उभय देशानां वरिष्ठ सर्वकारीय प्रतिनिधयः उद्योगनेतारः व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य च सदस्याः एकत्र आगतास्सन्ति। जम्मूकश्मीरे श्री अमरनाथजी यात्रा प्रतिकूल ऋतोः पूर्वानुमानं दृष्ट्वा पहलगाम बालताल इति द्वयोः मार्गयोः अपि अद्यारभ्य स्थगिता जाता। एकः अधिकारी अवदत् यत् भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन यात्रिकाणां सुरक्षां कल्याणञ्च सुनिश्चित्य आगामिषु कतिपयेषु दिनेषु ऋतोः प्रतिकूलतायाः पूर्वानुमानस्य अनन्तरम् एषः निर्णयः कृतः। अधिकारी अवदत् यत् यावत् अग्रिम आदेशः न भवति तावत् बालताल नूनवान चन्दनवारी आधारशिला शिभ्रात् यात्रीणाम् अग्रे गमनस्य अनुमतिः न भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जाँच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया है। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में भारत और एस्टोनिया के सरकारी प्रतिनिधियों, प्रमुख उद्योगपति और व्यापार प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है और आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है। उन्होंने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्योगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,408 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। संवेदनशील क्षेत्रों में अचानक बाढ़, भूस्खलन और जल भराव हो सकता है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जल स्रोतों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भी कल तक बारिश का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। बरामद सामान की कुल कीमत करीब 22 करोड़ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मायामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। फाइनल में आज रात 12:30 बजे न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का सामना स्पेन से होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन युफेई को पहले गेम में हराया। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

साथियों, सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज कलाकार रहेंगे रंजना तिवारी। इनके साथ ढोलक पर रहेंगे योगेंद्र सिकरवार और सारंगी पर उस्ताद अब्दुल मजीद खान। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर आप सुन सकेंगे सुबह 9:00। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे सिंधी कार्यक्रम, जिसे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी आप सुनेंगे सुबह 10:00।

कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आप सुन सकेंगे सुबह 10:05 पर। सुबह 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, इसे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संग्रहालय से, दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम, दोपहर 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत, सुगम संगीत आप सुन सकेंगे दोपहर 1:45 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किए जाएंगे। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान, कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे दोपहर 2:50 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किए जाएंगे। दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी, शाम 5:33 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, शाम 6:02 पर आप सुनेंगे भजन संध्या, फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: शाम 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घर आंगन, जिसमें आज चर्चा का विषय रहेगा बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस, मंगल दिवस की अवधारणा, भेंट वार्ता रहेगी कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों के हेतु महिलाओं को स्वरोजगार, डॉक्टर अरविंद कौर से स्वाति शर्मा की बातचीत आप सुन सकेंगे। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे डगर विकास की, रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे संसद के सक्षम समक्ष मुद्दे, अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किए जाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 हुए हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसे भोपाल केंद्र से
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज भोपाल के पास ऐतिहासिक स्थल जगदीशपुर में होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 10,54,000 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 1,460 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई और प्रदेश में एक बार फिर मानसून के गति पकड़ने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज राजधानी भोपाल से लगे हुए प्राचीन महल और स्मारक वाले गांव जगदीशपुर में आयोजित की जाएगी। इसे लेकर कल दिन भर तैयारियां होती रहीं। भोपाल कमिश्नर कर्मवीर शर्मा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जगदीशपुर में डॉक्टर मोहन सरकार की 8वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग हो रही है।

इससे पहले जबलपुर के शक्ति भवन, दमोह के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के सम्मान में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई थी। वहीं लोकमाता अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर, लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष पर इंदौर के

0: का और 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक बड़ी योजना की घोषणा की जाएगी। ग्वालियर विकास और प्रगति के पथ पर चल रहा है और ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार में हो रहा है।
1: ग्वालियर में आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी और मैं मिलकर बहुत बड़ी सौगात लेके आने वाले हैं और वो खुशखबरी ग्वालियर की जो लंबी श्रृंखला रही है विकास की, चाहे ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन जहां हम खड़े हुए हैं, एलिवेटेड रोड हो, अनेक योजनाएं 15,000 करोड़ की, ग्वालियर भिंड इटावा का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है, गडकरी साहब से मेरी चर्चा भी हो गई है, जल्द से जल्द वो भी तैयार हो जाएगा, पश्चिमी बाईपास भी है, ग्वालियर विकास और प्रगति के पथ पे चल रहा है।
0: जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल देवास फोरलेन पर फास्टैग के जरिए 3 XL बसों से अधिक टोल वसूली को अवैध ठहराया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डबल बेंच ने टोल कंपनी को करीब 11 करोड़ रुपए प्रभावित वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को लौटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मेसर्स देवास भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज करते हुए एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के 21 मई 2025 के आदेश को बरकरार रखा। कंपनी पर 25,000 रुपये की कास्ट भी लगाई गई, जिसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अप्रैल 2022 से जिन भी वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों से अतिरिक्त राशि वसूली गई है, उन सभी को रिफंड दिया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस वर्ष पहली बार कक्षा 10वीं के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गईं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। CBSE के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के अंतर्गत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त स्वस्थ एवं सशक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी को सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में डिंडौरी में पुलिस अधीक्षक आशीष खरे के निर्देशन में विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया गया। वहीं झाबुआ जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के चौथे दिन जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं उमरिया SDOP PS परस्ते ने लोगों से इस अभियान में जनभागीदारी की अपील की है।
3: मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य आमजन, युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराना है। वाकई में नशा एक व्यक्ति, उसका परिवार और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार के अवैध मादक पदार्थ की क्रय विक्रय की जानकारी प्राप्त होती है, परिवहन की जानकारी प्राप्त होती है, तो संबंधित नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के इसकी जानकारी दें।
0: श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। श्राइन बोर्ड की आधिकारिक सूचना के अनुसार तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है। श्रद्धालुओं को धैर्य रखने और श्राइन बोर्ड के आधिकारिक संचार माध्यमों से जारी सूचनाओं का पालन करने की सलाह दी गई है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस वर्ष वैष्णो देवी पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख से अधिक हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी कल से पहलगाम और बालटल दोनों रास्तों से रोक दी जाएगी। एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले कुछ दिनों में खराब मौसम के अनुमान के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। अब तक अमरनाथ जी यात्रा के दौरान 3,70,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में दर्शन किए हैं। इस साल की यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। शिक्षा मंत्रालय ने भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध 3 बीएड कॉलेजों में गंभीर अनियमितताओं की टीवी जांच रिपोर्ट के बाद तत्काल कार्रवाई की है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि कुछ

कॉलेज अपने घोषित स्थानों पर संचालित नहीं हो रहे थे और उनमें आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव था। हालांकि ये संस्थान राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त और विनियमित हैं, इसलिए मंत्रालय ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। अब रुख करते हैं खेल की खबर का। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु ने कल चीन के विश्व की नंबर 4 खिलाड़ी चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीत लिया। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल में आज सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। वहीं महिला कुश्ती में भारतीय पहलवान काजल ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में 76 किलो भार वर्ग में अमेरिका की डायमंड प्रेशियस गिलफोर्ड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में यह भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारत ने 53 किलो और 57 किलो भार वर्ग में 2 रजत पदक भी जीते। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने डिंडौरी और उमरिया जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से प्रदेश में लगातार तेज बारिश का सिलसिला शुरू होने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में जिला प्रशासन ने ग्राम खजराना स्थित शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 80 करोड़ रुपये मूल्य की 1 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन पर अतिक्रमण को हटाया। महानिदेशक जेल वरुण कपूर ने जिला जेल शाजापुर में निरीक्षण कर जेल की सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों के लिए मूलभूत सुविधाओं को देखा। खंडवा में एमएसएमई विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत हरिद्वार ऋषिकेश यात्रा के लिए बैतूल जिले से 260 यात्री आज से रवाना होंगे। मंदसौर के दलौदा में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा द्वारा किसान दिवस समारोह में किसानों को सम्मानित करने के साथ ही फलदार पौधों का वितरण किया गया। आगरमालवा जिले में विशेष 138 NI एक्ट के तहत लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 9,46,000 रुपये की चेक राशि मामलों का निराकरण किया गया। और डिंडौरी में राज्य आनंद संस्थान के मार्गदर्शन में जनजाति कार्य विभाग द्वारा अल्पविराम विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए शुरुआत में सुनवाते हैं ये गीत।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया।

0: साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म दुश्मन से। बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आवाज थी लता मंगेशकर की। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला ये गीत।
1: Basically.

0: पेंसिल पर जाती है पेंसिलीन। बड़ी दवाई नगद नारायण, बड़ी दवाई नगद नारायण, बाकी छक्का छू छू, बाकी छक्का छू छू, गजब तेरा जादू छू, पैसे का मंत्र पैसे का जंतर, पैसा पैसा छू छू, जाते प्राण पलट कर आवे, गजब तेरा जादू पराग, पैसे का मंत्र पैसे का जंतर, पैसा पैसा छू छू, जाते प्राण पलट कर आवे, गजब तेरा जादू छू छू छू मंत्र, मैं जादू मंत्र छू छू छू मंत्र, हे जादू मंत्र छू छू छू। तेरी खातिर मुल्ला पंडित सब बेचे ईमान, तेरे हाथों खाता उल्लू बनता है इंसान, तेरे ही खातिर है सारी ये मैं तू तू, पैसा ही अल्लाह, पैसा ही दाता, पैसा ही भगवान, पैसा ही बाबा, पैसा ही भैया, पैसा ही अम्मा जान, तू है तो सब रिश्ता लाता, नहीं तो बम बग्गू। एक तेरे बिना लाख गिर बन के निखट्टू, एक तेरे ही हंसर से चले दुनिया का टट्टू, एक तेरी ही चोरी पे नचे धरती का लट्टू, हो नचे धरती का लट्टू, हो नचे धरती का लट्टू। तेरी चमक से अंधी अखियां मारे नैना बान, अखियां मारे नैना बान, तेरी खनक पर मरता मुर्दा उसके लगा बेतान, तुझसे ही जीवन का मुर्गा, तुझसे ही जीवन का मुर्गा, बोले कुकड़ू तू, बोले कुकड़ू तू, बोले कुकड़ू तू, गजब तेरा जादू छू, पैसे का मंत्र पैसे का जंतर, पैसा पैसा छू छू, जाते प्राण पलट कर आवे, गजब तेरा जादू पलट पलट पलट, पैसा पैसा।
1: साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म पैसा ही पैसा से। बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे, संगीत दिया था अनिल विश्वास ने, आवाज़ थी किशोर कुमार की। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, लीजिए सुनिए अगला ये गीत।

साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म कर्ज से। आवाज़ थी किशोर कुमार और साथियों की, बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला ये गीत।

0: साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म ईमान से। आवाज़ थी किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: पापा लाइए 3000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे।
6: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं 4 दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV/AIDS और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है, और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV/AIDS के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
6: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
7: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: साथियों, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला ये गीत फिल्म पहचान से। आवाज है मोहम्मद रफी की।

साथियों, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला ये गीत।

साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म सुपर 30 से। आवाज़ थी विशाल ददलानी की, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के थे और संगीत दिया था अजय अतुल ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

साथियों सुनिए अगला गीत फिल्म शेरनी से। आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की, बोल वर्मा मलिक के हैं और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: हाँ तो क्या करेगी?
1: अरे गाएगी,
0: नाचेगी, झूमेगी और सबका दिल बहलाएगी।
2: हाँ तो भाई जान, मेहरबान कदरदान, कुछ कदर कीजिए, यानी सिर्फ एक रुपया दीजिए मेरे भैया, एक रुपया।

साथियों, ये गीत आपने सुना फिल्म गंगा की लहरें से, आवाज़ थी उषा मंगेशकर और साथियों की। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और संगीत दिया था चित्रांग गुप्ता ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए अगला ये गीत।

साथियों, फिल्म बच्चन से आपने ये गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के स्वर में। बोल प्रेम धवन के थे और संगीत दिया था रवि ने।

0: पैर की।
1: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
2: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
1: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
2: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
1: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
2: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
1: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
2: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
1: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
2: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
1: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
2: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
1: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
2: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
3: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
2: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
1: समय है पानी बचाने का,
2: पानी का मोल समझने और समझाने का।
1: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
4: इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार प्रभात सुनेंगे, जिसे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
5: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
6: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं। अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें। जलाशयों से गाद निकालें। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू। दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश। फर्जी या एआई से बनी ओएमआर शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने। इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग के लिए चर्चा करेगी। मॉनसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र ओएमआर शीट की जांच के लिए केवल असली शीट ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या एआई से बनाई गई ओएमआर शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए विद्यार्थियों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए केवल असली ओएमआर शीट ही जमा करें। परीक्षा एजेंसी के अनुसार हाल के दिनों में जांच के लिए भेजी गई कई ओएमआर शीट फर्जी पाई गई थी, इसलिए अब हर शिकायत और हर ओएमआर शीट की सावधानी से जांच की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इस वर्ष पहली बार 10वीं कक्षा के लिए दो बोर्ड

0: परीक्षाएं आयोजित की गई थीं। मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और दूसरी बोर्ड परीक्षा 15 मई से 21 मई तक हुई थी। बोर्ड के अनुसार दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% विद्यार्थी सफल रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी टालिन में भारत एस्टोनिया व्यापार मंच को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में तेज बदलाव आया है।
1: इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 13 साल पहले दुनिया की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी और अब ये दुनिया की 6 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गई है। हमने देखा है कि मजबूत आर्थिक संकेतकों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हमारे यहाँ महंगाई दर बहुत कम है और पिछले कई सालों से हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स लगभग 1%
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत का बढ़ता विनिर्माण क्षेत्र, मजबूत नवाचार व्यवस्था और आर्थिक सुधार दुनिया भर के निवेशकों और उद्यमियों के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जंजीबार के राष्ट्रपति और क्रांतिकारी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। आज वे नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत तंजानिया संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर हुसैन अली मिम्वई आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक दक्षिण के साझेदार के रूप में भारत और तंजानिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से घनिष्ठ मित्रता और सहयोग के संबंध हैं। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडवर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वे कल विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। श्री वास्केज का बुधवार को नई दिल्ली में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पनामा साझा मूल्यों, आपसी हितों और सद्भावना पर आधारित संबंध साझा करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल के जगदीशपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम में 10,54,000 किसानों के बैंक खातों में सीधे 1,460 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जाएगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बर्बाद होने से राहत देने के लिए किसानों को ये राशि दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के 20% एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को देश की बड़ी नीतिगत उपलब्धि बताया है। पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस योजना से किसानों की आय बढ़ी है, देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम हुई है। उन्होंने कहा कि इस योजना का आकलन राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि उसके परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने देश के कई हिस्सों में कार्रवाई कर तस्करी का सोना, चांदी और नकदी बरामद की है। वित्त मंत्रालय के अनुसार कार्रवाई में करीब 15 किलोग्राम सोना, 20 किलोग्राम चांदी और 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा जब्त की गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा आज से रोक दी गई है। मौसम अनुकूल होने और रास्तों को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को होगा। उधर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भी खराब

0: मौसम के कारण वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। मौसम की स्थिति में सुधार के बाद यात्रा फिर शुरू की जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है।
1: मौसम विभाग ने नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने सभी अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने, जिला आपदा परिचालन केंद्रों को 24 घंटे सक्रिय रहने तथा राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भूस्खलन संभावित पर आवश्यक मशीनरी और संसाधन उपलब्ध रखने को कहा गया है। इस बीच सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने प्रदेशवासियों, चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की चेतावनियों का पालन करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मूसलाधार बारिश जारी है।
2: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर में येलो अलर्ट, जबकि अन्य 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने कल 20 जुलाई को चंबा, सिरमौर, मंडी और कांगड़ा जिलों में और 21 जुलाई को चंबा, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों व भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आकाशवाणी से पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला की अगली कड़ी में हम सुविख्यात निर्देशक और अभिनेता आर माधवन से बातचीत करेंगे। आर माधवन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए।
0: ये बातचीत आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल से आज सवेरे 9:10 पर प्रसारित की जाएगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मुकाबले में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। फीफा विश्व कप को लेकर भारत में खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
4: फुटबॉल का इतिहास आज रात चाहे भारत से हजारों किलोमीटर दूर न्यू जर्सी में क्यों ना लिखा जा रहा हो, लेकिन कोलकाता में भी इस खेल का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। भले ही भारत विश्व कप का हिस्सा नहीं है, फिर भी पूरे बंगाल में फुटबॉल प्रेमी इसके जश्न में डूबे हुए हैं। शहर को नीले और सफेद रंगों से रंगा गया है और हर जगह लियोनेल मेसी की जर्सी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल खेल विभाग ने कोलकाता में नंदन और एकतारा ओपन एयर स्टेज के अलावा कई जिलों में फाइनल की पब्लिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। शहर के क्लबों, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं और फैंस अपने पसंदीदा टीम की जीत के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज होने वाले फाइनल में स्पेन या अर्जेंटीना कौन बाजी मारता है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। प्रतियोगिता के फाइनल में आज सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का निर्णायक और तीसरा मुकाबला आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 से शुरू होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। निजी रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है स्पेस में धाक, भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में। हिंदुस्तान की सुर्खी है वह विक्रम, पहली उड़ान में मिशन पूरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर

कायरूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी। जनसत्ता के अनुसार विक्रम 1 ने उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया। दैनिक जागरण ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, बंगाल में बेहद संवेदनशील चिकन नेक की होगी अब

0: रिजल्ट 96.78% हुआ। पास होने वाले 23.92 लाख से अधिक 3 लाख छात्रों के अंक सुधरे, 76,000 फेल थे अब पास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता निलंबित किया, खामनेई ने कहा अमेरिका को कड़ा सबक खिलाएंगे। नवभारत टाइम्स के अनुसार आर्टिकल 370 के बेस्ट फीचर फिल्म यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड। श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन और भ्रम युगम के लिए मम्मूटी बेस्ट एक्ट्रेस। दैनिक जागरण के मुताबिक सड़क हादसे को रोकने के लिए बेहतर रोड डिजाइन पर जोर, गुणवत्ता रोड डिजाइन ऑडिटिंग प्रशिक्षण के लिए भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी को मिली जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने नया ट्रेंड शीर्षक से दिया है, नई पीढ़ी में गोल्ड के इमोशन कम, परिवार की परंपरा छोड़ निवेश पर ध्यान।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू, दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक आज। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का छात्रों और अभिभावकों को कड़ा निर्देश, फर्जी या AI से बनी OMR शीट जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। और फीफा फुटबॉल विश्व कप फाइनल में आज अर्जेंटीना और स्पेन आमने सामने, इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। The headlines. Government convenes all-party meeting today ahead of monsoon session of parliament beginning tomorrow. National Testing Agency warns students and parents against submitting fake or AI-generated OMR sheets for scrutiny, says such acts can invite legal action. CBSE declares results of Class 10 Second Board Examination 2026. Shri Amarnath Ji and Vaishno Devi Yatras temporarily suspended due to rough weather forecast. And England beat France 6-4 in thrilling third place match to secure bronze medal in FIFA World Cup 2026. Argentina to take on Spain in final tonight. The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of Parliament beginning tomorrow. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In a stern warning amid rising concerns over manipulated documents, the National Testing Agency, NTA, has issued a strong advisory to students and parents regarding the submission of OMR sheets for scrutiny. The agency revealed that many OMR sheets recently submitted for review have turned out to be fake or artificially generated, prompting closer monitoring of all complaints. A report.
3: The NTA has stated that it is actively scrutinizing every complaint received. However, it cautioned that submitting counterfeit or artificial intelligence-generated OMR sheets could lead to serious legal consequences for the complainants. In a social media post, the agency said students and parents are advised to submit only original OMRs for scrutiny. Any fake AI-generated OMR may invite legal action against the complainant. This development comes at a time when the credibility of the examination process has been under intense public scrutiny. The NTA's move appears aimed at curbing attempts to misuse the re-evaluation or scrutiny mechanism through forged documents created with advanced digital tools. Officials indicated that the agency has already identified several suspicious cases and is taking firm steps to verify authenticity before proceeding with any rechecking requests. The advisory underscores the growing challenge posed by artificial intelligence in academic and administrative processes. With easy access to AI image generation tools, some individuals appear to be attempting to fabricate evidence to challenge exam results. The NTA has made it clear that such practices will not be tolerated and will invite strict legal action. Manik Sharma, Akashwani News, Delhi.
2: The Central Board of Secondary Education, CBSE, has declared the results of the Class 10 Second Board Examination 2026. Students can access their results through DigiLocker Results Portal at the URL results.digilocker.com.

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोकगीत। आज हम आपको लोक संगीत में सुनवा रहे हैं रंजना तिवारी को। उनके साथ ढोलक पर हैं योगेंद्र सिकरवार और सारंगी पर हैं उनके साथ ही उस्ताद अब्दुल मजीद खान।

0: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
1: हाय यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
0: अरे वही अपना 60 रुपया।
1: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
0: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
1: और दूसरा?
0: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
1: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
0: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं। रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।

साथियों, आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं रंजना तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। लीजिए सुनिए अगला सुहाग गीत।

0: साथियों, ये लोकगीत आप सुन रहे थे, रंजना तिवारी की गाए कुछ लोकगीत, जिसमें उनकी ढोलक पर उनके साथ दे रहे थे योगेंद्र सिकरवार और सारंगी पर थे उस्ताद अब्दुल मजीद खान। इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप इस घंटे की खास खबरें सुनेंगे।
1: राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आज भोपाल के गांव जगदीशपुर में आयोजित की जाएगी। जगदीशपुर में डॉक्टर मोहन सरकार की 8वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग हो रही है। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से

पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उनके पारित होने की संभावना है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि ग्वालियर और चंबल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही बड़ी योजनाओं की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। छात्र अपने नतीजे डिजीलॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम की चेतावनी के बाद वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। इस वर्ष मंदिर में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख से अधिक हो गई है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। और फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने फ्रांस को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज रात अर्जेंटीना और स्पेन के बीच न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला रात 12:30 पर शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं, सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

साथियों स्वागत वंदन अभिनंदन सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो साथी अर्चना। साथियों सबसे पहले बात आज दिन विशेष की। साथियों जब सरकार किसी निजी क्षेत्र की कंपनी का संसद कानून बनाकर अधिग्रहण करती है तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज यानी 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसीलिए आज का दिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात 15 अप्रैल 1980 को 6 और नए निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसे द्वितीय चरण का राष्ट्रीयकरण कहा गया था। इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या साथियों 20 हो गई थी। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय होने के बाद सरकारी बैंकों की संख्या 19 रह गई। साल 2019-20 में 13 बैंकों का आपस में विलय करके 5 बैंक बनाए जाने के बाद सरकारी बैंकों की संख्या सिमटकर केवल 11 रह गई है। साथियों भारत में साल 1969 के बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्वतंत्रता के बाद लिए गए सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों में से एक माना जाता है। पहले भारत में बैंकिंग मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी जिसके कारण ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों को 1960 के दशक तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहना पड़ा। इसके कारण कृषि, लघु उद्योग और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों को बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया और कुछ ही बड़े शहरों तक ये लाभ सिमटकर रह गया। इसलिए 1969 का बैंक राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि बैंकिंग को नियोजित विकास के अनुरूप बनाया जा सके और धन के संकीर्ण को कम किया जा सके। साथियों

1969 का बैंक राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया। एक प्रमुख आर्थिक सुधार था जिसमें 14 बड़े निजी बैंकों को सरकारी नियंत्रण में लाया गया ताकि बैंकिंग को समाजवादी और विकासात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाया जा सके। साथियों, बैंक राष्ट्रीयकरण का सकारात्मक प्रभाव ये रहा कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखा नेटवर्क का विस्तार हुआ। जिसे हर छोटे से छोटे जगह को, छोटे से छोटे कस्बे को भी उससे जोड़ा गया और लोगों को बैंकिंग की सुविधा मुहैया कराई गई। इसके साथ ही कृषि, लघु उद्योग और कमजोर वर्गों को संस्थागत ऋण प्राप्त हुआ। हुआ ये इसका परिणाम साथियों कि हरित क्रांति और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में वित्त पोषण का एक सहायक के रूप में ये बैंक राष्ट्रीयकरण ने अपनी भूमिका निभाई। बैंकों में राज्य समर्थित संस्थानों के रूप में जनता का विकास बढ़ा और साथ में विश्वास भी। साथियों, राष्ट्रीयकरण के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में हजारों नई शाखाएं खुलीं जिससे आम जनता बचत करने और बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने में सक्षम हुए। साथ ही दोस्तों, इन बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे अपनी कुल लोन राशि का एक निश्चित हिस्सा कृषि, छोटे उद्योग और कमजोर वर्ग को रखें। इसके साथ साथ साथियों, सरकारी स्वामित्व होने के कारण लोगों की मेहनत की कमाई सुरक्षित हो गई जिससे देश में बचत और निवेश को बढ़ावा मिला। आज हम देखते हैं कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है जो बिना बैंक के संपन्न हो। हर योजना का पैसा सीधे सीधे लोगों तक पहुंच पाता है क्योंकि हर व्यक्ति का बैंक में खाता है और सबसे मेन उनके खाता खोलने के लिए उनको किसी अमाउंट की, कुछ राशि की आवश्यकता नहीं है। जीरो अमाउंट पर भी खाता खुले हैं। यदि हम बात करें अटल पेंशन योजना की तो हम जानते हैं कि इस योजना की मदद से हमारे बुजुर्गों को एक पेंशन मिलती है और वो पेंशन सीधे उन तक पहुंच पाती है क्योंकि उनका खाता बैंक में खुला हुआ है। बैंक में खाता खुलने से एक सस्ता बीमा हर किसी आम जनता तक मिल सकता है, यदि वो चाहे तो ले सकता है। सबसे अहम हमारे किसान भाइयों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, ये एक किसानों को खेती करने के लिए एक ऐसा ब्याज मुहैया कराती हैं जो जिसके पास जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से वो एक सस्ता ब्याज बैंक से लेकर अपनी खेती को संपन्न कर सकता है। पहले सरकार का पैसा बीच में रुक जाता था लेकिन अब बैंक की मदद से सीधा पैसा आम आदमी तक पहुंचता है। चाहे बात हो प्रधानमंत्री जनधन योजना की या बात हो डीबीटी की, सीधा लाभ ट्रांसफ़र, आज हम चाहे गैस की सब्सिडी की बात करें, पेंशन की बात करें, छात्रवृत्ति की बात करें, सीधा पैसा आवेदक के अकाउंट में आता है। पीएम किसान योजना जो अभी चल रही है, सीएम किसान योजना जो हमारे मध्य प्रदेश में चल रही है, तो हर पैसा सीधे सीधे किसान के या आम जनता के खाते में आ पा रहा है क्योंकि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है उससे इतना बढ़ावा हुआ है हमारे देश में, हमारे देश के आम जनता तक, एक छोटे से छोटी जगह तक बैंक का लाभ सभी ने लिया है और वो इसीलिए हो पाया है क्योंकि सबको इस पर विश्वास बढ़ा है। इसके साथ ही अब साथियों, बैंक का उपयोग हमें करना है, बैंक में खाता भी है और बिना हमारे मोबाइल नंबर के और आधार के उस खाते को हम उपयोग में नहीं ला सकते, मतलब ईकेवाईसी होना बहुत ज़रूरी है। ईकेवाईसी है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना होगा। यदि हम सिंपल कीपैड वाला फ़ोन चलाते हैं तो ओटीपी हमारे नंबर पर आएगा, हमें वो ओटीपी किसी को भी शेयर नहीं करना है।

0: हमें अपनी गोपनीय जानकारी, चाहे बात OTP की हो, पिन की हो, ATM कार्ड के डेबिट कार्ड नंबर की हो या CVV की हो, ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। किसी भी लिंक पर क्लिक करके हमें KYC अपडेट नहीं करना है। KYC अपडेट का मैसेज यदि हमें आता है तो हम ये ना देखें कि भाई ये मैसेज आया, फटाक से हमने KYC कर ली। हमें ये देखना है कि भाई ये मैसेज कहाँ से आया है। KYC के लिए आप बैंक में जाकर ही KYC करें। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि हम कहीं सार्वजनिक स्थल पर हैं तो जो वाईफाई है या कुछ इस तरह के नेटवर्क का हमें यूज़ नहीं करना है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम जिस भी नेटवर्क का यूज़ करें अपने फ़ोन पर बैंकिंग प्रक्रिया को करते समय, तो हम अपने ही नेटवर्क का यूज़ करें या सुरक्षित नेटवर्क हो। किसी भी अनचाही ऐप को डाउनलोड नहीं करना है कि उसमें कुछ भी आया और हमने देखा अरे ये शायद हो सकता है फ़ायदेमंद हो, या हम उसके लुभावने ऐड में आके हम उसको अपने फ़ोन में डाल लें, तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। साथ ही हमें जो लेन देन है वो हमें बहुत ही सोच समझ के करना होगा, क्योंकि ये जितनी सुविधाएं हमें देता है इससे यदि हम थोड़ी सी भी लापरवाही अपनाते हैं तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। हमें किसी के साथ भी स्क्रीन शेयर नहीं करना है। यदि कोई ऐप ऐसी आपने डाली है जो आपके फ़ोन की स्क्रीन को शेयर करने की आपसे परमिशन मांगती है, तो बिल्कुल सतर्क रहिए। अपने फ़ोन की स्क्रीन किसी भी ऐप के थ्रू किसी दूसरी जगह पर शेयर नहीं कीजिए। और भी बातें हम आपसे करेंगे, पर उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से, इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

साथियों, इंदौर में आयोजित UTT प्रथम मध्य प्रदेश राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस स्पर्धा में ग्वालियर की होनहार खिलाड़ी नव्या चतुर्वेदी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 15 बालिका वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में नव्या ने इंदौर की अनिका महेश्वरी को 3-1 से पराजित कर स्वर्णिम सफलता हासिल की है। इसी के साथ ही देवास में आयोजित मध्य प्रदेश स्टेट अंडर 11 सिलेक्शन शतरंज चैंपियनशिप में ग्वालियर की होनहार फेडरेटेड खिलाड़ी आर्यांश तिवारी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शुरुआती 3 मुकाबलों में 2.5 अंक अर्जित किए हैं। आर्यांश ने पहले 2 मुकाबलों में नारायण हरी और शौर्य लाहौटी को पराजित किया। तीसरे दौर में उनका सामना एरेना कैंडिडेट मास्टर एवं 1698 फिडे रेटिंग वाले दक्षिण सूडानी से हुआ। दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ जो 30 चालों के बाद ड्रॉ में समाप्त हुआ। साथियों, इसी के साथ सेकंड बटालियन कंपू के सेनानियों के निर्देशन में लर्निंग सेंटर में विद्यार्थियों को मादक पदार्थों से दूर रहने के प्रति जागरूक अभियान चलाया। साथ ही मादक पदार्थ एक राष्ट्रीय आपदा है या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता भी की गई। इस अवसर पर सेनानी विदिता डागर, उप सेनानी परवेज खान, सहायक सेनानी पूनम थापा, निरीक्षक रवि भान तोमर, सहायक निरीक्षक पदम सिंह भूपेंद्र, बटालियन मेजर नरेंद्र बाथम उपस्थित रहे। साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों को लंबित हर्जाना संबंधी मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 योजना शुरू की है। ये योजना 29 जून 2026 से अगले 6 माह तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत पात्र प्रतिष्ठानों को जो उनकी रियायत दर है उस पर लंबित हर्जाने के मामलों का निपटारा करने का अवसर मिलेगा। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सत्यवर्धन ने बताया, योजना धारा

14 बी के तहत लंबित मामलों, जारी हर्जाना आदेशों और नोटिस वाले प्रकरणों पर लागू होगी। ये राहत केवल हर्जाने तक सीमित रहेगी। भविष्य निधि अंशदान और ब्याज का भुगतान नियमानुसार करना अनिवार्य होगा और कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभ पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। ईपीएफओ ने सभी पात्र नियोक्ताओं से योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान करने की अपील की है। इसके साथ ही साथियों, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में शनिवार को टूरिज्म कैरियर 2035 बिल्डिंग ग्लोबल प्रोफेशनल्स इन द एज ऑफ एआई विषय पर अतिथि व्याख्यान आयोजित हुआ। पर्यटन विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष दहिया ने कहा कि वर्ष 2035 तक एआई, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, स्मार्ट टूरिज्म और डिजिटल मार्केटिंग पर्यटन उद्योग की दिशा तय करेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में डिग्री के साथ तकनीकी दक्षता, संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक दृष्टिकोण भी जरूरी होगा। प्रभारी निदेशक प्रोफेसर मोनिका प्रकाश और नोडल अधिकारी डॉक्टर सौरभ दीक्षित ने विद्यार्थियों को डिजिटल कौशल और व्यावहारिक अनुभव विकसित करने पर जोर दिया। और भी बात हम आपसे करेंगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

साथियों, हमें जब भी अपने पैसे को बचाना होता है, उसको सेव करना होता है, या फिर हम किसी संस्था से जुड़ के कुछ काम करते हैं, तो उसका जब हमें भुगतान होता है, जो भी भुगतान मिलता है वो हमें अब बैंक में ही मिलता है। इसके लिए हमें बैंक में खाते खुलवाने रहते हैं। कई बार ऐसा होता है साथियों कि हम कभी कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी बैंक में खाता खोल लिया, कभी कहीं किसी में खोल लिया, इस तरह से हमारे कई सारे बैंक में मल्टीपल अकाउंट्स हो जाते हैं। इस केस में हम जो भी हमारा करंट में अकाउंट है, हम उस पर ध्यान देते हैं, और एक दो अकाउंट ऐसा रहता है कई बार कि हम उसमें कोई भी लेन देन नहीं करते, कुछ राशि हमारी उसमें शेष रह जाती है। तो ऐसी राशि को हम किस पोर्टल की मदद से ले सकते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। साथियों, देश में ऐसे लाखों बैंक खाते हैं जिनका कई वर्षों से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो फिर हमारी वो राशि जाती कहाँ है, ये हमें देखना है। जब उन खातों का इस्तेमाल नहीं होता है, या हम किसी भी जानकारी के भूल जाने से हम उसका उस खाते को उपयोग नहीं करते और फिर दूसरा खाता खुलवा लेते हैं, ऐसी स्थिति में खातों में जमा रकम लंबे समय तक बिना किसी लेन देन के पड़ी रहती है। यदि किसी बैंक खाते में 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं होता है, तो उसमें मौजूद दावा ना की गई राशि भारतीय रिजर्व बैंक के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में भेज दी जाती है। खाता धारक का उस राशि पर अधिकार तो बना रहता है और वह तय प्रक्रिया अपनाकर अपना पैसा वापस भी ले सकता है। अगर हमारा या हमारे परिवार के किसी सदस्य का कोई बैंक खाता 10 साल या उससे अधिक समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो उसमें जमा रकम हमारी खोई नहीं है, हम उसको ले सकते हैं। ऐसी राशि को RBI की डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में से हम ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें सीधे किसी दफ्तर में या बैंक में नहीं जाना, इसके लिए हम ऐसे मामलों में हम लोगों की मदद के लिए RBI ने एक उद्यम करके अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति ये पता लगा सकता है कि उसके नाम से किसी भी बैंक में दावा ना की गई राशि मौजूद है या नहीं। दावा ना की गई राशि वही राशि कहलाती है जिस खाते का हमने पिछले 10 सालों से उपयोग नहीं किया है। इसके लिए पोर्टल पर जाकर अपना मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होती है। इसके बाद अलग अलग बैंकों में अपने नाम से मौजूद दावा ना की गई राशि की जानकारी देखी जा सकती है। साथियों, अगर पोर्टल पर हमारे नाम से किसी बैंक में दावा ना की गई राशि दिखाई देती है, तो अगला कदम संबंधित बैंक से संपर्क करना होता है। इसके लिए उसी बैंक की किसी भी शाखा में जाकर दावा करने का आवेदन हमें देना होगा। बैंक अधिकारी पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में हमें बताएंगे। साथियों, दावा करने के लिए बैंक में पहचान, हमारी पहचान और पते की पहचान के लिए हमें KYC करना होगा। उसके लिए हम आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनका उपयोग कर सकते हैं। बैंक सभी दस्तावेजों का मिलान करने के बाद यह सुनिश्चित करता है कि दावा सही व्यक्ति द्वारा किया गया है। सत्यापन पूरा होने पर बैंक राशि लौटाने की प्रक्रिया शुरू करता है। यदि नियमों के अनुसार उस राशि का ब्याज देय होता है, तो ब्याज सहित भुगतान किया जाता है। मतलब यदि हमारी कोई राशि 10 साल से अधिक समय तक किसी भी बैंक में रुकी हुई है, तो हम उसको ले सकते हैं और वो भी ब्याज के साथ ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, और भी बात हम आपसे करना चाहते हैं, और भी जानकारी आपसे साझा करना चाहते हैं, पर ये जो हमारी स्टूडियो की घड़ी है ना, ये हमें इससे ज़्यादा आपसे जुड़ने की अनुमति नहीं देती। तो इसी के साथ सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर से अपनी साथी अर्चना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी ग्वालियर है। सुबह के 9:30 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सिंधी कार्यक्रम भोपाल केंद्र से सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी भोपाल है। अब सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण।

जय झूलेलाल दोस्तों, सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम में मां तवांजी दोस्त तवांजी होस्ट जानवी भावना ने तवां सबनी जो तहे दिल सां स्वागत कया। दोस्तों मां ढाढ़ी वडी शुक्रगुजार आया हिन रेडियो जी कि हर बार वांगुर अज भी वरी मां तवां सां रूबरू थी सकां थी। रेडियो एक मनोरंजन जो अहिड़ो जरियो आहे जेको घणे वक्त खां हलंदो पियो अचे। असांजा वॾा ॿुधाईंदा हुआ कि सुबुह जी चांहि रेडियो सां ई शुरू थींदी हुई। केतिरो सुकून भरियो वक़्तु हो। अॼु त ॾींहं जी शुरूआति मोबाइल जी नोटिफिकेशन सां थींदी आहे। रेडियो जी ॻाल्हि कयूं पिया त भारतीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई ते मल्हायो वेंदो आहे। हिन ॾींहुं 1927 में भारत में पहिरियों दफ़ो रेडियो प्रसारण जी शुरूआति थी। इहो ॾींहुं भारत जे संचार इतिहास में हिकु मील जो पत्थर साबित थियो। दोस्तो, प्रसारण सेवा न केवल मनोरंजन जो साधन आहे, उन सां गॾु ज्ञान, शिक्षा ऐं जन जागरूकता फैलाइण जो मज़बूत ज़रियो बि आहे। रेडियो जे ज़रिए लख ई माण्हू देश दुनिया जी ख़बर रखी सघंदा आहिनि। उन सां गॾु घणेई सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, खेतनि जे बारे में, स्वास्थ्य जे बारे में ऐं शिक्षा कार्यक्रम सां बि असांखे रेडियो जोड़ींदो आहे। अॼु जे नए ज़माने में टीवी, इंटरनेट ऐं सोशल मीडिया जॻहि वठी छॾी आहे, पर रेडियो जी ॻाल्हि अॼु बि अलॻि ही आहे। भूकंप या कोई बि आपातकालीन परिस्थितीअ जे बारे में जानकारी रेडियो असांखे तेज़ीअ सां ॾींदो आहे। भारतीय प्रसारण सेवा देश जी एकता, अखंडता ऐं संस्कृतीअ सां जोड़े रखण में पंहिंजी अहम भूमिका निभाए थी। ॾिसो कीअं सभु तरह जूं भाषाऊं, संस्कृति ऐं परंपरा खे हिकु मंच ते आणे देशवासियुनि में भाईचारे ऐं राष्ट्रीय भावना खे मजबूत करे थी। भारतीय प्रसारण सां जुड़ियल हर हिकु मेंबर खे मुंहिंजी तरफ़ सां घणी घणी महिरबानी कि युगनि खां हलंदी हिन परंपरा खे अञा ताईं जीअरो रखियो आहे ऐं शल युगनि ताईं जीअरो रखंदा। मां पाण खे बि घणी भाग्यवान सम्झंदी आहियां कि मां हिन प्रसारण सेवा जो हिकु नंढो सो हिसो आहियां। दोस्तों, इन्हीअ खां पोइ ॿुधूं था भगवंती नावाणीअ जो ही सुहिणो गीत।

0: दोस्तों आज असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं कवियत्री भारती आसुदानी जी। दोस्तों कविताओं सिर्फ कागरन ते लिखल अखर ना हैं बल्कि भाव हैं जेके बोलिए सा तो झलकना हैं पर चेहरे जी सुंदरता के भी भया कना हैं। एड़ी आहे असांजी मन मोहिनी भारती आसुदानी जी जिन जो कविताओं तो सुंदर हैं पर उन्हें जी कविताओं जा भाव पूरे दिल ताई पहुंचना हैं। त अचो ॿुधो था उन्हनि जूं सुहिणियूं कविताऊं।
1: मुंहिंजी पहिरीं कविता जीअं सावण जो आगाज़ थी चुकियो आहे त मां शुरू थी कयां हीअ कविता। अंदरि मींहुं ॿाहिरि मींहुं छा राति ऐं छा ॾींहुं। अंदरि मींहुं ॿाहिरि मींहुं छा राति ऐं छा ॾींहुं। घुग जी चादर में अखड़िन खे घुग जी चादर में अखड़िन खे बकरी भी ॾिसजे थी शींहं। बकरी भी ॾिसजे थी शींहं। अंदरि मींहुं ॿाहिरि मींहुं छा राति ऐं छा ॾींहुं। गप चिक घर घिटियुनि में गप चिक घर घिटियुनि में तिरकन पेर किथे वञी बीह। तिरकन पेर किथे वञी बीहु ऐं अंदरि मींहुं ऐं ॿाहिरि मींहुं। वण टण थिया सभु सावा सावा। वण टण थिया सभु सावा सावा। कोयल कुहिके ॻाए पपीहो पीहु पीहु। कोयल कुहिके ॻाए पपीहो पीहु पीहु।

सचो नातो रुगो रूह जो रबस आहे। सचो नातो रुगो रूह जो रबस आहे। भारती लॻाए बस उन सां नीह, बस उन सां नीह, अंदर मींहं ऐं ॿाहिरि मींहं। इन तारतम्य में मुंहिंजी ॿी कविता जो शीर्षक आहे विश्वास, जेके सिंधीअ में चई सघूं आहे वेसव। त माण्हूअ जो माण्हूअ ते मथां वेसव घटियो, माण्हूअ जो माण्हूअ जे मथां वेसव घटियो, तॾहिं त दर पैदा थिया, तॾहिं त दर पैदा थिया। पर वेसाव जे ॻोड़नि खे अञा शह मिली, पर वेसाव जे ॻोड़नि खे अञा शह मिली, तॾहिं त कुर्फ़ ऐं कुंजियूं पैदा थिया, तॾहिं त कुर्फ़ ऐं कुंजियूं पैदा थिया। उन्हीअ खां पोइ बि वेसव भॻीअ भर ते, उन्हीअ खां पोइ बि वेसव भॻीअ भर ते, तॾहिं त CCTV ऐं कैमरा पैदा थिया, तॾहिं त CCTV ऐं कैमरा पैदा थिया। जॾहिं पंहिंजनि खे पंहिंजनि सां ॻाल्हियूं लिकाइणियूं पवंदियूं आहिनि, तॾहिं त मोबाइल जा पासवर्ड पैदा थिया। जेतिरियूं शयूं ईज़ाद थियूं आहिनि, तेतिरो वेसव घटिजंदो वियो अथव, तेतिरो वेसव घटिजंदो वियो अथव। ऐं मुंहिंजी ॿी कविता जो शीर्षक आहे नारी। नारी सशक्तिकरण हली रहियो आहे, त उन ते मां पंहिंजी इहा नई रचना आहे पेश थी कयां। नारी कुदरत जी प्यारी रचना, नारी कुदरत जी प्यारी रचना, सच हक़ीक़त न समझो सपना, सच हक़ीक़त न समझो सपना। मुरादनि जी झोली आहे नारी, मुरादनि जी झोली आहे नारी, अविरल मिठड़ी ॿोली आहे नारी। मुरादनि जी झोली आहे नारी, अविरल मिठड़ी ॿोली आहे नारी। महराब जो विच जो पथर, महराब जो विच जो पथर, न थके न बीहे सदा हले निरंतर, न थके न बीहे सदा हले निरंतर। प्यार जो दर्पण आहे नारी, प्यार जो दर्पण आहे नारी, पंहिंजो ॾे थी समर्पण नारी, पंहिंजो ॾे थी समर्पण नारी। ऐं भावनाउनि जो भंडार आहे नारी, भावनाउनि जो भंडार आहे नारी, आदर ममता किथे प्यार आहे नारी, आदर ममता किथे प्यार आहे नारी। कर्तव्यनि जी कमान आहे नारी, कर्तव्यनि जी कमान आहे नारी, सर्व सुखनि जी खान आहे नारी, सर्व सुखनि जी खान आहे नारी। हाणे मां पीउ जे मथां हिकु रचना, इन सां कुझु धीउ जी मतिलबु भावनाऊं गॾिलाइनि पेश थी कयां। पीउ पथर जहिड़ो मज़बूत, पीउ पथर जहिड़ो मज़बूत, मुंहिंजा जज़्बात नरम ऐं कोमल, मुंहिंजा जज़्बात नरम ऐं कोमल, मुंहिंजे हथनि में तुंहिंजो ॿलु, मुंहिंजे हथनि में तुंहिंजो ॿलु। मुसीबत कॾहिं न ईंदी ओरे, मुसीबत कॾहिं न ईंदी ओरे, पारखी नज़र सुञाणी कपट ऐं छल, पारखी नज़र सुञाणी कपट ऐं छल। रग रग में वहे दरिया हिमत जो, रग रग में वहे दरिया हिमत जो, जीअं वहे झरनो कल कल, जीअं वहे झरनो कल कल। औखा पंध, औखा पंध न सहिजी मंज़िल, औखा पंध न सहिजी मंज़िल, तुंहिंजो वजूद ठहियो मुंहिंजो संभल, तुंहिंजो वजूद ठहियो मुंहिंजो संभल। ॾींहं रातियूं ॻणितियुनि में कटिजनि, हिकिड़े पीउ जी भावना। ॾींहं रातियूं ॻणितियुनि में कटिजनि, ख़ुशीअ जी ख़ोराक लाइ घोरे पल पल, ख़ुशीअ जी ख़ोराक लाइ घोरे पल पल। कुझु हथनि जूं लकीरियूं उन जे मथां मुंहिंजा भाव आहिनि, चंद पंक्तियुनि जे मथां। इन खे कंहिं बि रूप में तव्हां खणी था सघो। लकीरूं, लकीरनि खे सहिजो न सम्झो, लकीरुनि खे सहिजो न सम्झो। जे निरण जी लकीर त कंहिं चिंता में वेठो आहे, जे निरण जी लकीर त कंहिं चिंता में वेठो आहे।

0: हथनि जी लकीरनि सां भाॻु केतिरो थो वरे, हथनि जी लकीरनि सां भाॻु केतिरो थो वरे इहो पतो थो पए। ऐं पट जी लकीर त धुर खां धार थी करे छॾे, पट जी लकीर त धुर खां धार थी करे छॾे, ऐं दिलि जी लकीर त माना रिश्ता ई फिटाए थी छॾे, माना रिश्ता ई फिटाए थी छॾे। इश्क ॾाढी सुहिणी रचना आहे। मोकिलियो गुलाब तूं किताब में लिकाए, मोकिलियो गुलाब तूं किताब में लिकाए, सांढे रखियो मूं ख़्वाबनि ऐं ख़्यालनि में, सांढे रखियो मूं ख़्वाबनि ऐं ख़्यालनि में। दीवानगीअ जी हद ताईं चाहे कोई, दीवानगीअ जी हद ताईं चाहे कोई, ख़ुशबूअ खे समेटियो हेल ताईं रुमाल में, ख़ुशबूअ खे समेटियो हेल ताईं रुमाल में। जवाब था घुरनि ताना ॾेई ॾेई, जवाब था घुरनि ताना ॾेई ॾेई, मुंहिंजी आहे दिलि हाणे कहिड़े सुवाल में, मुंहिंजी आहे दिलि हाणे कहिड़े सुवाल में। दिलि जी दरिया खां ॿाहिरि वञी बीठे, दिलि जी दरिया खां ॿाहिरि वञी बीठे, छा बिगाड़ींदो ज़मानो हाल ॿुधाइण में, छा बिगाड़ींदो ज़मानो हाल ॿुधाइण में। दिलि जो सुकून हो चपन ते हिकु मुश्क, दिलि जो सुकून हो चपन ते हिकु मुश्क, जीअं तरकश में तीर देर कहिड़ी हलाइण में, देर कहिड़ी हलाइण में। ऐं ॿ पंक्तियूं आख़िरी ध्यानु चाहींदमि। लहरुनि सां दोस्ती साहिल भले करे, लहरुनि सां दोस्ती साहिल भले करे, पर मूंखे रहण ॾे भारती पंहिंजे ई हाल में, पर मूंखे रहण ॾे भारती पंहिंजे ई हाल में, पंहिंजे ई हाल में। ऐं मुंहिंजी हिकिड़ी प्यारी कविता जेका मां हींअर तरो ताज़ा लिखी आहे, अकेलो हल। भई साण त सभु हलंदा आहिनि न, कॾहिं चइबो आहे न जीअं बंगालीअ में एकला चलो रे, कोशिशि कई आहे। अकेलो हल काफ़िलो न ॻोल, अकेलो हल काफ़िलो न ॻोल, भीड़ में दुश्मन बेशुमार हूंदा, भीड़ में दुश्मन बेशुमार हूंदा, वक़्तु सुठो हुजे त रिश्ता हज़ार हूंदा, वक़्तु सुठो हुजे त रिश्ता हज़ार हूंदा, ॿिनि चइनि खे छॾ माण्हू क़तार हूंदा, ॿिनि चइनि खे त छॾ माण्हू क़तार हूंदा। भरम भोला न पाल, भरम भोला न पाल, सभु पंहिंजा ई आहिनि, भरम भोला न पाल, सभु पंहिंजा ई आहिनि, काईअ खे बि अॻियां कंधा चार ई हूंदा, काईअ खे बि अॻियां कंधा चार हूंदा। मौका परस्त माण्हू ज़माने जी रीति आहे, मौका परस्त माण्हू ज़माने जी रीति आहे, हर ॻाल्हि ॿुधण वारा मथे जा बुखार हूंदा, हर ॻाल्हि ॿुधण वारा मथे जा बुखार हूंदा। ऐं आख़िरी बलाइना, शर्म हया जी चादर कीअं बचाए भारती, शर्म हया जी चादर कीअं बचाए भारती, गुरबत में तन जा कपिड़ा ई तार तार हूंदा, तार तार हूंदा। महिरबानी,
1: घणी घणी महिरबानी तव्हांजी भारती जी, तव्हां असांखे हेॾियूं सुहिणियूं कविताऊं ॿुधायूं। जीअं मां स्टूडियो में तव्हांजो कविताऊं ॿुधी हेतिरो गदगद थी आहियां, मां उमेद थी कयां त असांजा श्रोता बि ॿुधी करे ओतिरा ही गदगद थींदा। घणी घणी महिरबानी तव्हांजी। दोस्तो, हाणे हिकु अहिड़े देशभक्त ऐं महान क्रांतिकारीअ जी ॻाल्हि कंदासीं जिन असांखे आज़ादी ॾियारण में सभिनी खां वॾो योगदान ॾिनो आहे। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन जो जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश जे भावरा गांव में थियो। नंढपण खां ही हुननि में देश प्रेम, साहस ऐं अन्याय जे ख़िलाफ़ लड़ण जी भावना मौजूदु हुई। महात्मा गांधी पारां हलायल असहयोग आंदोलन में भाग वठण जे दौरान उन्हनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। जज जॾहिं उन्हनि जो नालो पुछो त जवाबु ॾिनो आज़ाद, पिता जो नालो स्वतंत्रता ऐं घर जो पतो जेल खानो ॿुधायो। इन्हीअ खां पोइ ई उन्हनि जो नालो पयो चंद्रशेखर आज़ाद। हुननि इहो संकल्प कयो त कॾहिं बि अंग्रेज़नि जे हथ

0: जिंदो न लगंदा। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन जे मुख्य क्रांतिकारियों में शामिल हुआ। उन्हें भगत सिंह, राजगुरु ए सुखदेव सां गजी मिली देश जी आजादी लाय संघर्ष कयो। उन्हें पेंजी बहादुरी, नेतृत्व, त्याग सां घणन युवाओं के देशभक्ति जे रस्ते ते हलण जी प्रेरणा दिनी। 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद जे अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज पुलिस उन्हें घेरियो। वीर आजाद आखिरी गोली पेंजे मथे ते हणी पेंजो वचन निभायो ए अंग्रेजन जे हथ जिंदो न आया। हुनन जो कयल बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो अमर अध्याय आहे। चंद्रशेखर आजाद जी जयंती असां के देश प्रेम, साहस, त्याग ए पेंजी मातृभूमि लाय कुर्बान थियण जी प्रेरणा दे थी। असां के भी उनन जे आदर्शन ते हलण जो संकल्प वठण घुर्जे ए देश जी एकता लाय ईमानदारी से कम करण घुर्जे। दोस्तों, इन्हीं खा पोए बुधु तो एक सुहणो गीत ए पेशकश कई आहे लतिका सेन, सतराम रोहिड़ा ए साथी।
1: Dumpty, said Donovan, Dumpty, had the great fall.
2: Dumpty, Dumpty, said Dumpty.

दोस्तों असा पेंजे भारत देश जी गाल कयो तहते वीर जाबाज जी कमी काने अहड़ा जाबाज थी गुजरा आहन जिन शहीद थी कर पेंजे देश के आजादी त दिनी पर देश के खुशहाली भी दिनी किए बहके तो असा जो देश अड भी उन्हें शहादत के ओतरो ही याद तो कयो वने। इन शहीदन में एक बियो नालो आहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिनजो जन्म 23 जुलाई 1856 ते महाराष्ट्र जे रत्नागिरी शहर में थियो। हिंदुस्तान जे आज़ादी आंदोलन में हुनन जी खास

भूमिका रही। उन्हनि खे भारतीय असंतोष जो जनक ऐं लोकमान्य यानी जनता पारां मान्य नेता जो सम्मान मिलियो। उन्हनि जो नारो हो, स्वराज मुंहिंजो जन्म सिद्ध अधिकार आहे ऐं हिन खे हासिल कंदासीं। अॼु बि हर कोने में गूंजजंदो आहे। हर देशवासीअ खे उन्हनि जे नारे खे चवंदे अॼु बि उहो जज़्बो जाॻंदो आहे। उहे हिकु महान पत्रकार बि हुआ। उन्हनि केसरी ऐं द मराठा नाले जा समाचार पत्र बि शुरू कया। लोकमान्य शिक्षा, समाज सुधार ऐं राष्ट्रभक्ति जी प्रेरणा ॾिनी। उन्हनि गणेश उत्सव ऐं शिवाजी उत्सव खे सार्वजनिक रूप ॾेई देशवासियुनि में एकता ऐं देश प्रेम जो भाव जगायो। उन्हनि जो विश्वास हो त शिक्षा ई समाज ऐं राष्ट्र खे अॻियां वधाइण जो हिकु आधार आहे। हुननि खे अंग्रेज़ सरकार जेल में बि विधो, पर उन्हनि कॾहिं बि पंहिंजी देशभक्ति ऐं संघर्ष खे न छॾियो। जेल में रहंदे बि उन्हनि प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य लिखियो, जंहिं कर्म, कर्तव्य ऐं राष्ट्र सेवा जो संदेश ॾिनो। अॼु जे युवाउनि खे बि उन्हनि जे आदर्शनि ते ज़रूरु हलणु घुरिजे ऐं देश जी सेवा में हरदम अॻियां रहणु घुरिजे। त दोस्तो, इन्हीअ खां पोइ ॿुधूं था महेश चंदर जो ॻायल ही सुहिणो ऐं प्यारो गीतु।

दोस्तों हाणे वक्त थियो आहे अॼ जे कार्यक्रम खे पूरो करण जी। ॾींदा इजाज़त पंहिंजी रेडियो साथी जानवी भावनानीअ खे। उमेद आहे त तव्हां खे इहो कार्यक्रम वणियो हूंदो। तव्हां पंहिंजा राया पंहिंजे ख़तनि ज़रिए असांखे आकाशवाणीअ ते मोकिलींदा या असांजे फेसबुक पेज ते बि पोस्ट कंदा। मिलूं था हिकु नई ख़ुशीअ सां, हिकु नई उमेद सां, हिकु नए कार्यक्रम सां। सभ जो भलो।

0: सिंधी कार्यक्रम सिंधिया दिजी सुरहाण का प्रसारण अभी आपने सुना आकाशवाणी भोपाल से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
4: योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रति पल उसका बेनिफिट देता रहता है।
3: आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।
5: आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण सुनिए अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से और सुनते रहिए आकाशवाणी भोपाल कहीं भी कभी भी।
0: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा, ये आकाशवाणी है। आप सुनिए जिले की चिट्ठी।
6: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है झाबुआ जिले की चिट्ठी। आलेख हरीश यादव का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। झाबुआ जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े हजारों हितग्राहियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीते दिनों सिंगल क्लिक के जरिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में अंतरित की, जिसके तहत झाबुआ जिले के 23,000 से अधिक वृद्धजन, दिव्यांगजन और कल्याणी पेंशन के हितग्राहियों के खातों में लगभग 1,38,00,000 रुपये की राशि DBT के माध्यम से पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर बीते दिनों झाबुआ में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर नशा मुक्त समाज का संदेश दिया गया। कलाकारों ने भीली भाषा में गीत, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। नागरिकों ने नशा मुक्ति की शपथ लेकर स्वस्थ, सुरक्षित और जागरूक समाज के निर्माण का संकल्प दोहराया। झाबुआ जिले में आम नागरिकों की राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 17 जुलाई को आयोजित विशेष जनसुनवाई में जिले की सभी तहसीलों से कुल 220 आवेदन प्राप्त हुए। झाबुआ जिले के पेटलावद में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने लगभग 2,75,00,000 रुपये की लागत से निर्मित 50 सीटर वीरांगना रानी दुर्गावती अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंत्री ने लगभग 8,00,00,000 रुपये की लागत से विभिन्न निर्माण और जनहितकारी कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। वर्षा ऋतु के दौरान मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए झाबुआ जिले में स्वास्थ्य विभाग का विशेष अभियान जारी है। इस वर्ष जनवरी से जून तक जिले में 1,06,000 से अधिक घरों और लगभग 4,00,000 पानी संग्रहित करने के पात्रों की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि सप्ताह में एक दिन अपने घर और आसपास पानी जमा होने वाले सभी स्थानों की जांच अवश्य करें। झाबुआ जिले में शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने मेघनगर और थानला विकासखंड के कई विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं का संचालन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था और विद्यालयों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। झाबुआ जिले में शिशुओं और छोटे बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत हो गई है। 31 अगस्त तक इस अभियान के दौरान ANM, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम घर घर जाकर जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। झाबुआ जिले ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड की जून 2026 की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में जिले को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च स्थान दिया गया है। झाबुआ में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी की परंपरा पर आधारित इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। झाबुआ में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बीते दिन उत्साह के साथ मनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। वहीं कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने योग को स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन की आधारशिला बताया। झाबुआ जिले के पेटलावद में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सखी वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने किया। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में भी झाबुआ जिले ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले ने 102.8% कवरेज के साथ पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

28 से 30 जून तक चले इस अभियान में निर्धारित लक्ष्य से अधिक 2,19,550 बच्चों को पोलियोरोधी दवा की खुराक पिलाई गई। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने बीते दिनों जिले में पदस्थापित 20 नवनियुक्त मेडिकल ऑफिसर से संवाद किया। झाबुआ में जलगंगा संवर्धन अभियान का समापन जनभागीदारी और जल संरक्षण के संकल्प के साथ हुआ। आजीविका भवन में बीते दिनों आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। झाबुआ जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: झाबुआ ज़िले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था हरीश यादव का और वाचन किया था अभिषेक कटियार ने।
1: ये आकाशवाणी का शिव ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। साथियों, स्वागत है आप सभी का व्हाट्सएप फरमाइश कार्यक्रम में। लेकर हाजिर हैं आपके ढेर सारे फरमाइशी गीत आपके लिए। शुरुआत करते हैं पहले इस फरमाइशी गीत से।

ये गीत आपने सुना फिल्म जॉनी मेरा नाम से। बोल राजेंद्र कृष्ण के थे, संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, आवाज़ थी किशोर कुमार और उषा खन्ना की। और इस खूबसूरत से गीत के लिए फरमाइश हमें मिली थी रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे और समस्त सिंधे परिवार की। साथियों आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, अगली फरमाइश आप तक।

साथियों, ये गीत आपने सुना अरिजीत सिंह के स्वर में, संगीत साजिद वाजिद का था और बोल थे कौसर मुनीर के। फिल्म थी मैं तेरा हीरो और इसके लिए फरमाइश हमें मिली थी ग्राम पंचायत बठेना पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजनी चित्रेखा वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, उमेश धनेश्वरी वर्मा और समस्त वर्मा परिवार की। आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, अगली फरमाइश आई है हमें बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और समस्त ढींगिया परिवार की। इनकी फरमाइश फिल्म शादी में ज़रूर आना से है। लीजिए सुनिए ये फरमाइशी गीत।

साथियों, अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान और समस्त चौहान परिवार की। इनकी फरमाइश फिल्म बॉम्बे से। आवाज़ है हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की, बोल महबूब के हैं और संगीत दिया है AR रहमान ने।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: आरबीआई कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
4: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
3: मतलब?
4: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
3: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: साथियों आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, अगली फरमाइश हमें मिली है श्री गणेश अविका आर्ट श्री रामपुर से। श्री अशोक कुम्हार, अविका जीविका, सानू कुम्हार, अर्चना कुम्हार और समस्त कुम्हार परिवार की। इसी फरमाइश पर एक और हमें व्हाट्सएप फरमाइश मिली है कोयते वस्ती पुनावले से अजय सोनवड़े, करिश्मा सोनवड़े, अविका सोनवड़े, साहिशा सोनवड़े की। तो लीजिए श्रोताओं आपकी फरमाइश पर फिल्म सिर्फ तुमसे ये गीत। आवाज़ है उदित नारायण,

साथियों, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। अगली फरमाइश हमें मिली है फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ के लिए। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और साथियों की, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से। इसी गीत के लिए एक और फरमाइश हमें मिली है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमसुल कमर राही और साथियों की। तो लीजिए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर आपके लिए ये गीत।

साथियों, अगली फरमाइश हमें मिली है मुक्कम पोस्ट फुलचिंचोली तालुका पंडरपुर से। साथियों के नाम हैं जाकिर मुलाड़ी, सुमैया मुलाड़ी, सुबान मुलाड़ी, समीर मुलाड़ी, सलमा मुलाड़ी, मुमताज मुलाड़ी, दिलशाद नसीर और उनके चाचा चाची। बड़ी ही प्यारी सी फरमाइश है फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए से। गीत के बोल लिखे हैं सुधाकर शर्मा ने, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने, आवाज़ें हैं कुमार सानू, सोनू निगम और अलका याग्निक की।

साथियों, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश। जी हाँ, अगली फरमाइश हमें मिली है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन, रचिता मस्कीन, आशीष राजा और साथियों की। इनकी फरमाइश फिल्म साजन से। आवाज़ है अलका याग्निक की।

0: साथियों, अभी आपकी और भी फरमाइश हमारे पास हैं और दिल चाहता है कि हम आप तक उन फरमाइशी गीतों को पहुंचाएं, लेकिन ये जो स्टूडियो की घड़ी है ये हमें अब इससे ज़्यादा अनुमति नहीं देती आपसे जुड़ने की। लेकिन इसी वादे के साथ कि आपके हर फरमाइशी गीत को आप तक पहुंचाया जाएगा, इसी तरह से आप हमें फरमाइश भेजते रहिए और कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश से अपनी दोस्त अर्चना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें भोपाल से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: में आज जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक होगी जिसमें समान नागरिक संहिता यूसीसी के मसौदे को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 10,54,000 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 1,460 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। स्वास्थ्य कर्मियों ने देशभर में 15,000 से अधिक स्थानों पर आज 82वें संडे ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। नई दिल्ली में इस अभियान में शामिल हुए खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने नागरिकों से साइकिल चलाने को अपनी जीवन शैली का नियमित हिस्सा बनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने छात्रों और अभिभावकों के लिए जारी निर्देश में कहा है कि OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करें। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 24 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर कम बारिश से उपजे कृषि संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रभावित जिलों में सर्वे कराकर वास्तविक फसल क्षति का आकलन कराने और नुकसान की क्षतिपूर्ति की मांग की है। और शिक्षा मंत्रालय ने भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से संबद्ध 3 BEd कॉलेजों में गंभीर अनियमितताओं की TV जांच रिपोर्ट के बाद तत्काल कार्रवाई की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दिन के 11 बजे हैं। आप सुनिए फोन इन कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। स्वागत है आपका कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। हर बात होती है अधूरी, हर ख्याल होता है अधूरा। जब हम बैठते हैं आपको ख्याल करके, शायद अब बात हो पूरी और मुकम्मल हो हर ख्याल। इतने में ही मुलाकात हो जाती है आपसे। चलिए इसी सिलसिले को शुरू करते हैं आज हम कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र श्वेता, तो सभी को मेरा नमस्कार। आप अपने पसंदीदा गीत सुन सकते हैं हमें इन नंबरों पर फोन करके। हमारा नंबर है 2660902, भोपाल के बाहर श्रोता साथी एसटीडी कोड 0755 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो इंतजार है हमें आपसे, आपके फोन कॉल का। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
2: जी दीदी नमस्ते।
1: हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी हम तक बहुत कम में, लो साउंड में पहुंच रही है। थोड़ा सा आप नेटवर्क में आकर बोलिए प्रॉपर रूप से।
2: जी एक मिनट। हेलो। जी दीदी नमस्ते।
1: जी नमस्ते
2: दीदी, मैं ग्राम परसेठा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, आपका नाम फिर से बताएंगे। बेटा सिंह यादव।
2: वही दीदी, वो तो फिलहाल नेटवर्क तो मेरे गाँव में ही गाड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नेटवर्क नहीं होना चाहिए।
1: अच्छा चलिए, कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
2: जी दीदी राजा फिल्म का सुनना चाह रहे हैं। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के शहर में चला जाऊंगा।
1: जी बड़ा प्यारा सा गीत है ये। बताइए आप क्या करते हैं?
2: जी दीदी वैसे तो फिलहाल खेती किसानी का काम करता हूँ, धान की फसल लग रही है। तो इस समय मान लो कि वही में बिजी है और मौसम भी अच्छा है और बारिश भी हो रही है, तो धान की फसल लग रही है।
1: अच्छा जी, और ये जो मौसम चल रहा है आपको लगता है अनुकूल है अभी आप जो फसल लगाएंगे उसके लिए?
2: सही है मौसम जो भी है, थोड़ा उमस भरी, जब बारिश निकल जाती है तो गर्मी थोड़ा उमस भरी जाती
1: है। वही वही वही बिल्कुल। अभी कौन सी फसल आप लगा रहे हैं? अभी कौन सी फसल आप लगाएंगे खेत में?
2: देखो धान की फसल तो लग रही है और जी, उसके बाद में तिली बोते हैं, बाजरा बोते हैं, ज्वार बोते हैं और
1: जी,
2: अरहर की जो भी है वो भी लगाते हैं।
1: जी जी जी बहुत बढ़िया है ना, और हम यही कामना करेंगे कि बारिश अच्छी हो और मौसम अनुकूल रहे जो आप अपनी फसल उगा रहे हैं उसके लिए, क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं हम सभी देशवासियों के लिए, है ना? जी इसके लिए हम आभार रहेंगे आपके, क्योंकि आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं हम सभी के लिए। तो आपने फ़ोन किया इस कार्यक्रम में, हमें खुशी हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते

0: हेलो, हाँ जी नमस्कार
1: जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, हेलो
1: जी, नमस्ते,
0: बताएं।
1: मैं मंदसौर से बोल रही हूँ, अंजुम परवीन।
0: अंजुम परवीन, आप बात कर रही हैं मंदसौर से?
1: जी।
0: तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बताइए कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, फिल्मों का नाम है सूर्या,
0: हाँ,
1: मैंने तुझसे प्यार किया है, इसमें मेरी फता नहीं, ये वाला।
0: अच्छा, और एक और मूवी का नाम बता दीजिए आप, जो आपकी पसंद के हो।
1: जी, एक और है वक्त की आवाज़ है ना।
0: हाँ जी,
1: वक्त की आवाज़।
0: हाँ,
1: विवेक और विवेक और
0: कौन सी फिल्म का गाना है ये? अच्छा, वक्त की आवाज़। तो बताइए आप क्या देखती हैं, फिल्मों का शौक है, गीत संगीत का शौक है आपको?
1: फिल्मों का भी है, गाने सुनने का भी है।
0: आप गा रही हैं, उसे से मुझे लग रहा है।
1: हाँ,
0: और मतलब पुरानी फिल्मों का शौक है या नई फिल्में भी देखती हैं?
1: नई का तो नहीं, पुरानी देखती।
0: अच्छा, अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ चलिए,
0: तो आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। नमस्ते
1: जी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार।
0: हाँ जी, आपका नाम बताएं।
1: मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल चंदेल जी है ना
1: जी।
0: आप हमारे
1: बहन जी, आपका शुभ नाम।
0: मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: और
0: जी जी जी, और आप तो हमारे जाने पहचाने श्रोता हैं।
1: हाँ बहन जी बिल्कुल, मैंने भी आपको पहचान लिया
0: जी। आपकी जगह का नाम एक बार फिर से बता दीजिए।
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना
0: जी,
1: मध्य प्रदेश से हमारी का भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन
0: जी। तो स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कौन से फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे
1: बहन जी? फिल्म का नाम रहेगा फागुन।
0: फागुन का जी।
1: और गाने के बोल रहेंगे बरसो रे बैरी बदरवा बरसो रे
0: जी। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आपने पसंद किया है। ये पुरानी फिल्म फागुन का गीत है ना?
1: हाँ पुरानी फागुन है बहन।
0: और क्या करते हैं आप?
1: बहन जी हम किसान हैं, तो अभी हमने मक्का सोयाबीन मतलब खरीफ की फसल है लगाई हुई है, और 10-12 रोज से बारिश नहीं हो रही, तो ये मान लीजिए हमारी फसलें बिल्कुल मुरझा रही है काम के मारे। हाँ। बारिश का इंतजार है हमको ना फसल को। हाँ। और हमको क्या, वो तो सभी को है बारिश का
0: सभी का इंतजार। सही बात है, क्योंकि अभी अगर भरपूर पानी बरसेगा तो फसल भी अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो जाहिर से बात है हम जो खाना खाते हैं हम अपनी थाली में, तो हमें अच्छा खाना मिलेगा, भरपूर खाना मिलेगा। हाँ, तो ये तो बहुत जरूरी है, और हम आशा यही करते हैं भगवान से भी कि बहुत अच्छे से पानी बरसे।
1: सभी को आशा लगी हुई है कि कब बारिश हो।
0: हाँ जी, तो खेती किसानी के साथ साथ आप हमारे गाने भी सुनते हैं?
1: हाँ बहन जी, खेती किसानी के साथ साथ मैं रेडियो भी सुनता हूँ, और आप जो मान लीजिए मैं रेडियो को कब से सुन रहा हूँ, 1980 से सुनता आ रहा हूँ। बहुत पुराना लिसनर हूँ।
0: हाँ।
1: और मुझे सबसे ज्यादा ये तो प्रोग्राम क्या है, ठीक है फोन इन है, इसमें क्या है अपने सुन हमको अपने मन पसंद गाने सुनने को मिल जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि मैं खेती किसानी से यो आकाश अपनी भोपाल भाई इंदौर जबलपुर कहीं से भी मैं उसको वो ज्यादा सुनता हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं उसी आधार से खेती करता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, तो आपने फोन किया और आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा।

0: जी, कुछ दो चार मित्रों को याद कर सकता?
1: बिल्कुल बिल्कुल बताएं।
0: मनकारी से हमारे मित्र फूलचंद पाल जी, दिनकर सिंह जी है चित्रकूट धाम से, बेटा सिंह यादव जी है, प्रेमदास बाबा जी हैं
1: जी,
0: और हमारे मित्र केसरी सिंह राजपूत जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, गजराज सिंह लोधी जी हैं, इन सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा मैं
1: जी। बिल्कुल, तो देखिए आपने फोन किया और अपने सारे मित्रों का नाम भी बताया
2: जी,
1: तो उन सभी को मेरा नमस्कार, और आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार,
2: धन्यवाद आपको।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। नमस्कार, बताएं नाम आपका।
1: मैं रानू बोल रही हूँ।
0: हाँ जी,
1: हाँ रानू बात कर रही हूँ, देवास से।
0: आप गुप्ता, तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और
1: गाना सुना है, मूवी का नाम है
0: बताएं।
1: मूवी का नाम है मुस्कान और गाने के बोल हैं जाने वन
0: सिक्योर। मुस्कान ना
1: वाला सॉन्ग चलाइएगा, मिल गया हम सॉन्ग चुपके चुपके।
0: हाँ ठीक है। और रानू जी, आप हमारी पुरानी श्रोता हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। और बहुत सारे, सुनिए ना, बहुत सारे श्रोता हैं, उनसे भी बात करके हमें बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानिए। बस हम आपसे ये कहेंगे कि थोड़ा सा 10 दिनों का अंतराल रखें फोन कॉल करने में, तो हमें बहुत खुशी होगी आपसे बात करके, है ना। आप ही नहीं बहुत सारे श्रोता हैं जो हमारे लिए बहुत अनमोल है। बिल्कुल, लेकिन देखिए आपने फोन किया आज, हमें बहुत अच्छा लगा हमें, है ना। इसके लिए

0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानू जी,
1: नमस्कार।
2: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

0: कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में स्वागत है आपका। नमस्कार
1: जी। नमस्कार मैडम जी, मैं रामबाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से
0: जी। तो आपका स्वागत है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में। तो
1: मैं एक छोटी सी एक निवेदन करना चाहता हूँ, मतलब बोलना चाहता हूँ कि मैंने अभी 15-20 दिन पहले लगाया था, उसके बाद मैंने गुरुवार को लगाया था, तो मेरे आया था कार्ड। ऐसा क्यों, अगर नहीं करना हो तो मना कर दिया करो का नहीं
0: जी
1: करो।
0: जी जी, मतलब क्या हुआ मैं समझ नहीं पाई। आपने फोन लगाया था
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: फिर आपका फोन शामिल नहीं हो पाया।
1: नहीं नहीं, कल शामिल नहीं हुआ था, मैंने परसों के दिन यानी कि गुरुवार को लगाया था।
0: अच्छा अच्छा, कई बार क्या हो जाता है ना जी, देखिए हम सारे कॉल आप हमारे लिए बहुत खास हैं, सभी श्रोता साथी है ना।
1: जी, जी, जी,
0: तो कई बार क्या हो जाता है कि जैसे कि हमने 8 कॉल ले लिए या 8 गाने हो गए, तो हमारी एक समय सीमा रहती है इस वजह से। लेकिन देखिए आज तो आपका कॉल भी शामिल हो गया और बिल्कुल कल आप सुनेंगे इस, है ना।
1: और आप कैसे हो मैम, और आकाशवाणी टीम कैसी क्या है?
0: बहुत अच्छी हूँ मैं, आप कैसे हैं बताएं?
1: बस एकदम बढ़िया है, बस अब तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से एक बारिश हो जाए, अब तो बहुत दिन हो गए, एक हफ्ता हो जाएगा लगभग।
0: काफी थोड़ी उमस भी बढ़ रही है ना।
1: बिल्कुल, वही तो किसान भाइयों के लिए अभी वो मतलब नुकसान है ना, अभी फसल उगी हुई है, वो मुरझा रही है अभी, मतलब है ना
0: बिल्कुल
1: पानी के बिना।
0: सही, कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे
1: जी? फिल्म वो मिल जाएगी, सब कुशल मंगल है।
0: हाँ जी, सब
1: फिल्म है,
0: हाँ?
1: कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल है।
0: अच्छा, एक और मूवी का नाम बता दीजिए जो आप सुनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ? माशूक मिल जाएगी, माशूक।
0: हाँ जी मिल जाएगी
1: माशूक।
0: बिल्कुल, तो आपने देखिए फोन किया, हमें बात करके अच्छा लगा, और कल दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे हमारा
1: गाना तो बता सकता हूँ।
0: हाँ बिल्कुल, माशूक फिल्म का गाना बताएं।
1: कौन है जो दिल में समाया जाता है, पहली नजर में अपना बनाया जाता है, इसमें का एक गाना है उसी में, माशूक में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनवाएंगे हम आपको, है ना
1: जी, जी।
0: तो आपने फोन किया हमें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका, नाम बताएं।
1: बिल्कुल, मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ छतरपुर जिले के मनकारी गांव से।
0: कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: हेलो,
0: हाँ जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन से फिल्म का गीत?
1: बहुत धन्यवाद, आपका शुभ नाम।
0: मैं आपके रेडियो मित्र श्वेता बोल रही हूँ।
1: हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा था कि श्वेता सिंह बोल रही हूँ।
0: जी जी, तो कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: बिल्कुल श्वेता जी, कैसा है, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं बताएं?
1: हम बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। और आपका मौसम भोपाल में कैसा है, पानी यानी गिर रहा
0: है? नहीं नहीं गिर रहा है यहाँ पर पानी।
1: हाँ हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में छतरपुर जिले में पानी गिर रहा है, अभी कल गिर रहा है, आज भी गिर रहा है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है, वो बारिश इधर भी आ जाए।
1: जी जी जी
0: बिल्कुल। और कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: श्वेता जी, फिल्म का नाम है प्यार भरा दिल, और गीत के बोल हैं कि बन के किताब तेरी तेरे।
0: आप ऐसे ही हमें फोन करते रहिए।
1: जी, तो जी जी
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और

0: कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने का स्वागत है आपका। जी
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, आपका नाम बताएं।
1: मैं ग्राम गुरुजी कला से राजकुमार नखेरा बोल रहा हूँ।
0: राजकुमार
1: जी,
0: पूरा नाम बताएं। राजकुमार नखेरा।
1: राजकुमार नखेरा गुरुजी कला।
0: जी, तो कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है दीदी।
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे बताएं।
1: फिल्म?
0: हाँ जी,
1: आया सावन झूम के।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं सिलाई काम करता हूँ दीदी।
0: अच्छा, तो काम के साथ साथ आप रेडियो भी सुनते हैं?
1: जी मैडम जी, रेडियो तो सुनते ही रहते, अब लगा ही रहता दिन भर।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें कौन सा गाना सुनना है आपको आया सावन झूम के में?
1: इसमें कोई जो सावन से संबंधित।
0: हाँ बिल्कुल, और इसी तरह आप हमारी कार्यक्रमों को सुनते रहिए। आपने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। तो अब मुझे दीजिए इजाजत आपकी रेडियो दोस्त श्वेता को। नमस्कार।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। संग्रहालय से कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे 12:30 पर। दिन में 1 बजे महिला कार्यक्रम होगा, 1:30 पर लोक संगीत, सुगम संगीत आप तक पहुंचाएंगे 1:45 तक। सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज भोपाल के जगदीशपुर में हो रही है, जिसमें समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी मिल सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा के मानसून सत्र में इसे पारित करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मंगल पांडे की देशभक्ति और वीरता की गाथा देश की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि महान क्रांतिकारी मंगल पांडे का त्याग और राष्ट्रप्रेम प्रत्येक भारतीय को मातृभूमि के प्रति समर्पण और स्वाभिमान का संदेश देता है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर नीट पीजी 2026 परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र चयन प्रक्रिया में बदलाव की मांग करते हुए आग्रह किया है कि परीक्षा केंद्र चयन के लिए राज्य के बजाय पसंदीदा शहर चुनने का विकल्प पुनः उपलब्ध कराया जाए। मौसम विभाग की तरफ से जारी खराब मौसम की चेतावनी के बीच अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ और श्री माता वैष्णो देवी यात्राओं को कुछ समय के लिए रोक दिया है। और फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज रात 12:30 से अर्जेंटीना और स्पेन के न्यूयॉर्क के बीच न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं इंग्लैंड ने तीसरे स्थान के मुकाबले में फ्रांस को 6-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी पसंद के फिल्मी गाने लेकर हम हाजिर हैं और सबसे पहले इन श्रोताओं की पसंद आप तक पहुंचाते हैं। आंबेडकर चौक खुरई से हमारे श्रोता हैं राम सखी, परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन, छोटू, डुंडन और उनके परिवार के सदस्य। सिंगापुर बड़ा के हमारे श्रोता हैं राजेश नेमा,

इसके साथ ही एक और श्रोता की चिट्ठी हमारे पास है, और ये हैं राजपुर से घिसु दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अजिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे। इन सब की पसंद पर हम आप तक पहुंचाते हैं उदित नारायण और चित्रा की मिलीजुली आवाज़ों में रंगीला फिल्म का गाना। इस गीत को लिखा है महबूब ने और संगीत ए आर रहमान का है।

A.R. रहमान का संगीतबद्ध किया हुआ एक और गीत आप तक पहुंचाते हैं। फिल्म का नाम है बॉम्बे, आवाजें हैं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत को सुनना चाहते हैं भड़भूंजी जिला आगर मध्य प्रदेश के श्रोता रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, आयुष और ओम प्रकाश, योगेश कुमार चौरसिया, श्रीमती संगीता चौरसिया। आप हमें पत्र लिखते हैं इसी गीत को सुनने के लिए गोटेगांव से। और गौरीनगर इंदौर के हमारे श्रोता हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर हम आप तक पहुंचाते हैं बॉम्बे फिल्म का ये गाना।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। नवाब आरजू ने इसे लिखा है, बप्पी लाहिड़ी की धुन है, फिल्म का नाम हम सब चोर हैं। गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, बेरडी से हमारे श्रोता हैं हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमकर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब।

पंजाब से हमें चिट्ठी लिखी है हरदेव मीका, बलविंदर बिरख, जयतेग बिरख और मीका बिरख ने, और इसी गीत को पसंद किया है। घंटाघर चौक खंडवा के हमारे श्रोता संजय पंचोलिया।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम पेश कर रहे हैं इन सभी श्रोताओं की पसंद कमर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य।

अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं नया बाजार बिछिया से राजेश केसरी, पंकज केसरी और रोहन केसरी। तो आइए इन सभी श्रोताओं की पसंद पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं साजन की बाहों में फिल्म का गीत, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं नदीम श्रवण का संगीत।

साजन की बाहों में फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे धारावाहिक कामिनी काय कांतारे।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का चौथा भाग।

0: अभी तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महल छोड़कर चले जाते हैं। वृक वन में एक अपरिचित उनसे उनके प्रिय अश्व नीलमणि को लेकर चला जाता है। नीलमणि घायल अवस्था में आचार्य नागदत्त के सेवाश्रम में पहुंच जाता है, जहां उसका उपचार होने लगता है। राजा गांव पैठार पहुंचते हैं, जहां के भोले भाले ग्रामीण उनसे महादेव शंकर के किरात रूप की कथा सुनाने का आग्रह करते हैं।
1: अवंती की कड़वी मीठी स्मृतियों के साथ राजा भर्तृहरि अभी राजधानी से 30 कोस दूर वनांचल के उसी गांव में है, जहां वो भटकते हुए पिछली रात पहुंचे थे। कोई भी ये नहीं चिन्हता कि वो अवंती नरेश राजा भर्तृहरि हैं। वनवासियों ने पहले उन्हें प्रेत समझा, और जब ये जाना कि वो एक रात भयानक वृकवन में व्यतीत करके यहां तक पहुंचे हैं, तो भोले भाले ग्रामीण जनों ने उन्हें एक दिव्य पुरुष देवता की प्रतिष्ठा दे दी। गूढ़ छद्मवेशी नरेश ग्रामीणों के आराध्य बन गए थे। वही मान सम्मान, उसी तरह उनसे शुभ की अपेक्षा और उनकी अभ्यर्थना। बालक वृंद गांव में मुनादी करता है कि देवता किरात कथा कहेंगे। तभी वृंदा वीरभद्र का परिचय कराती हैं कि ये वीरभद्र हैं, इस ग्राम के ग्रामीणी और सभी के पितृतुल्य, संरक्षक और अभिभावक।
2: प्रणाम करता हूं देव।
3: महाकाल आपकी रक्षा करे।
2: हमारे पूर्वजों का पुण्य उदय हुआ महाराज, कि आपने अपनी चरण धूलि से इस गांव को पवित्र किया है। हम वनवासी आपके सत्कार के योग्य नहीं है महाराज, अकिंचन भला क्या कर पाएंगे आपकी सेवा।
3: मैं इसका पात्र नहीं हूं भद्र।
2: ऐसा न कहें आर्य, आपके शुभागमन से पूर्व अंचल में धाराधार वृष्टि हुई है। क्या ये आपके पधारने का संकेत नहीं था? समृद्धि और सुख का प्राकृतिक संकेत है प्रभु।
3: निष्कलुष भावनाएं अपनी मूर्तियां सहज ही गढ़ लेती हैं वीरभद्र।
2: वृंदा बहू ने बताया है कि आप महादेव शंकर के किरात रूप की कथा सुनाएंगे। हम इसीलिए यहाँ एकत्र हुए हैं। कथा श्रवण के पश्चात ही हम लोग आहार ग्रहण करेंगे। देव हमें कथा प्रसाद देने की कृपा करें।
1: भर्तृहरि असहाय से किसी अदृश्य के इंगित पर एक नई काया, नई भूमिका में प्रवेश करते जा रहे थे। पीछे कहीं छूट गई राजधानी अवंतिका के दैनिक क्रम में ये उनके आमोद प्रमोद का समय है। वो इसे काव्यशास्त्र के विनोद या नृत्य संगीत में व्यतीत करते हैं। कभी कभार इस क्रम में राजकीय कारणों से ही परिवर्तन होता है, जैसे किसी सामान्य अतिथि का आगमन, राज्य दायित्व के लिए उत्पन्न कोई आकस्मिक परिस्थिति, दस्युदल का उत्पात या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान में नरेश की उपस्थिति। महामात्य वो प्राचीर हैं ही जो किसी भी झंझावात को नरेश तक पहुंचने के पूर्व रोक लें। भर्तृहरि ने नेत्र बंद कर देवाधिदेव का ध्यान किया।

0: चतवर पर स्तब्धता छा जाती है। मात्र लौ बनाए रखने के लिए जलती हुई वसा की चटपटाहट और वटपत्रों की पटपट ही मुखर हो रही है। भर्तृहरि की वाणी में जाने कहां से कोई पवित्र गंभीरता आ जाती है। वो कहते हैं,
1: देवियों और सज्जनों,

भगवान भूत भावन के प्रसाद से मैं उस कथा को कहने का साहस कर रहा हूं जिसमें यथोचित गति नहीं है मेरी। देवी वृंदा का आग्रह, आप सभी की उत्सुकता, अनुग्रह, तपस्थली सा ये वन प्रांतर और तीर्थ जैसा ये पवित्र चत्वर, सभी कुछ पुण्य कथा कहने और सुनने का संयोग उपस्थित करता है। कृपया श्रवण करें। ये उस समय की बात है जब पराक्रमी पांडव गंधमादन पर्वत पर स्वाध्याय में समय बिताते हुए श्वेत वाहन अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो इंद्र के आमंत्रण पर कई दिनों पूर्व इंद्रलोक गए हुए थे। तभी इंद्र के सारथी मातली द्वारा संचालित हरे रंग के अश्वों से जुता देवराज इंद्र का रथ प्रकट हुआ, जिसमें किरीटधारी अर्जुन स्पष्ट दिखाई दे रहे। अर्जुन को उतारकर अभिनंदित मातली स्वर्गलोक वापस हो गए। दूसरे दिवस प्रातःकाल अंतरिक्ष में देवों के वाद्यों की तुमल ध्वनि

0: उस समय रथ के पहियों की घरघराहट, घंटानाद, सूर्प मृग और पक्षियों के कोलाहल सब पृथक पृथक सुनाई दे रहे थे। थोड़ी ही देर में हरे रंगों के घोड़ों से जुते मेघ गर्जन करने वाले रथ पर आरूढ़ इंद्र वहां आ पहुंचे। उन्होंने विनयावनत खड़े युधिष्ठिर और अन्य पांडवों से कहा कि अर्जुन ने उनका अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न किया है, इसलिए देवराज ने प्रसन्न होकर वर दिया कि पांडव अपने प्राप्य का उपयोग करते हुए पृथ्वी पर शासन करेंगे। देवराज इंद्र के जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुमने देवराज का कौन सा प्रिय कार्य किया है? तो अर्जुन ने जो बताया वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। इंद्र की प्रेरणा से दिव्यास्त्र प्राप्त करने की कामना में अर्जुन तप करने के लिए काम्यक वन से चलकर भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे। मार्ग में उनकी भेंट एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण ने पूछा, कुंती नंदन सच सच बताओ तुम्हारे गमन का उद्देश्य क्या है?
1: अर्जुन ने बताया कि महादेव शिव से पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य है।
0: ब्राह्मण ने अर्जुन को तपस्या का आश्रय लेने का मार्ग बताया। मनोरथ सिद्ध करने का यही उचित मार्ग है। इस प्रकार विप्र के निर्देश को शिरोधार्य करके अर्जुन हिमालय पर्वत पर चढ़कर तपस्या में लीन हो गए। दिन पर दिन व्यतीत होने लगे। इस प्रकार 5 महीने निकल गए। एक दिन अर्जुन के निकट एक वन्य शूकर प्रकट हुआ जो अपने थूथन से पृथ्वी पर प्रहार करता और पैरों और दांतों से उसे खोद रहा था। शूकर के पीछे पीछे एक किरात वेशी महान दर्शनीय पुरुष भी आ रहा था जो शूकर पर लक्ष्य साधने की मुद्रा में था। उसके साथ अनेक स्त्रियां भी थीं। अर्जुन ने आक्रमण के लिए उद्यत पशु पर बाण से प्रहार किया, साथ ही किरात ने भी अपना तीर शूकर पर छोड़ा जो उसे भेद गया। किरात ने कहा,
2: वत्स यह शूकर मेरा लक्ष्य बन चुका था, फिर तुमने आखेट के नियमों को तोड़कर उस पर प्रहार क्यों किया? मुझे तुम्हारा दर्प तोड़ना ही पड़ेगा। बस
0: ये कहते हुए किरात ने बाणों की वर्षा करके अर्जुन को ढक दिया। अर्जुन ने भी अग्निमुखी अभिमंत्रित बाणों से सटीक प्रत्युत्तर दिया। किरात शास्त्र रूपों में प्रकट हुआ। अर्जुन ने सभी रूपों पर बाण बरसाए। फिर किरात के शास्त्र रूप मिलकर एक हो गए। अर्जुन ने उस पर भी बाण चलाए। अब किरात ने माया युद्ध आरंभ कर दिया। कभी उसका शरीर छोटा हो जाता, कभी विशाल, कभी लुप्त होकर प्रकट होता है।

0: तो कभी यहाँ वहां दृष्टिगोचर होने लगा। अर्जुन ने अपने प्रहार नहीं रोके। अंत में किरात अपने सहज शरीर में सामने था। तब कुंती पुत्र ने महान वायव्यास्त्र का संधान किया।
1: देखा बस, यह भी मुझ पर निष्प्रभावी रहा है।
0: अर्जुन ने क्षुब्ध होकर अपने सभी सुविख्यात शस्त्रों, तारुणास्त्र, शालभास्त्र, वर्षास्त्र आदि का भीषण प्रहार किरात पर किया।
1: हे अर्जुन, तेरे ये सभी शस्त्र मुझ पर अप्रभावित हैं।
0: अर्जुन का आत्माभिमान और दर्प छार छार हो रहा था। उनकी युक्तियां और अस्त्र दोनों ही उस अज्ञात किरात के सम्मुख व्यर्थ हो रहे थे। तब झुंझलाए हुए अर्जुन ने अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अपने तेज से दिशाओं को विदग्ध करता हुआ वो अस्त्र अत्यंत तीव्रता से प्रभु विष्णु किरात की ओर चला। आकाश प्रज्वलित हो उठा, हवाएं ठहर गई।
1: बिंदु अर्जुन, देख, मैंने तेरे इस महातेजस्वी ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया है।
0: अब उद्भट अर्जुन और किरात में मल्ल युद्ध होने लगा। कुंती पुत्र विवश था, थकान से निश्चेष्ट होकर वो गिर पड़ा और वो प्रबल किरात हंसकर देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गया।

0: देवियों और सज्जनों, वास्तव में वो भगवान शंकर थे। महेश्वर ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप ग्रहण किया था। नमोस्तु काल रुद्राय काल रूपाय ते नमः। अर्जुन ने जब चैतन्य होकर शीश उठाया तो उमा सहित साक्षात वृषभध्वज को सामने पाया। आश्चर्यचकित अर्जुन से वे कह रहे थे,
1: हे परमता, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हुआ। वास्तव में तुम दिव्यास्त्र प्राप्त करने के पात्र हो। अपनी इच्छा प्रकट करो बस। अमरत्व के अतिरिक्त जो भी चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा।
0: अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं देवों के दिव्यास्त्रों का ज्ञान पाने का अभिलाषी हूं।
1: हे पांडुपुत्र, मैं तुम्हें अपना महान पाशुपत अस्त्र प्रदान करता हूं। यह ऐसा विराट अस्त्र है वस्त्र कि देव, दानव या राक्षस किसी के लिए भी इसका वेग सहन कर पाना संभव नहीं। निकष्ट को घायल करने वाला वीर नहीं होता है बस, जिसका स्वामी अक्षत है, ऐसा अक्षत व्यक्ति भी अक्षत ही है। अत्यधिक घायल पर वार करने वाला भी दोषी होता है बस।
0: अर्जुन के देखते देखते भगवान शिव पाशुपत अस्त्र अर्जुन को देकर अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन ने उस दिशा में उन्हें नमन करके उनको विदाई दी। देवियों और सज्जनों, किरात कथा का यहां समापन होता है। बोलो भगवान महाकाल की जय।
2: महाराज, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, अनुमति है?
3: भर्तृहरि ने आंखें खोल प्रश्नकर्ता को देखा। भर्तृहरि ने शांत स्वर में पूछा,
0: बंधु वीरभद्र, क्या तुम मुझे सर्वज्ञाता मान बैठे हो? बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर मेरे पास भी नहीं।
2: आप तो देवता हैं महाराज।
0: मेरी ही भांति आप भी देवता हैं वीरभद्र। अच्छा, प्रश्न पूछो, यदि उत्तर जानता होऊंगा तो अवश्य अपना उत्तर दूंगा।
2: देवता, आपने अभी अभी बताया कि पाशुपत अस्त्र प्रदान करते समय किरात भगवान ने अर्जुन को वर्जित किया था कि वो इसका प्रयोग मनुष्यों पर ना करे, ठीक है ना देव?
0: वीरभद्र, कथा तो इसी प्रकार है।

0: हाँ देवता, ये अनिरुद्ध है। इस सांवले सलोने बालक को माता पिता ने यही नाम दिया था। तरुण होते होते ये गदा मुग्धर तीर कमान में प्रवीण होता गया। कथा में दुर्दांत शूकर की चर्चा हुई है। अनिरुद्ध उस तरह के शूकर को एक ही प्रहार में धराशायी कर सकता है।
1: काका, अब मुझे ही अपनी बात कहने दो। मैं ही हूं अनिरुद्ध। मैं कह रहा हूं कि हमारे ग्रामीण भी परंपरा से प्रबल धनुर्धर होते आए हैं, किंतु हमारी भी एक वर्जना है। एक ही तीर से शूकर या किसी हिंसक वृक या व्याघ्र को हम धराशायी कर देते हैं।
0: ये हमारी सामाजिक आन है प्रभु। पांडव ने तपस्या करके अस्त्र प्राप्त किए थे, उसी तप की परंपरा से हमें भी अपने शस्त्रास्त्र मिले थे। भील कोल किरात शबर हैं हम, वनवासी। ये धरती, ये खेत, ये वनस्पतियां हमें प्रकृति ने दी हैं। किसी नरेश महानरेश की कृपा से नहीं मिली हैं ये। किसी से कुछ मांगते नहीं हम,
1: राजा भर्तृहरि से भी नहीं। कभी कभी अचानक खेतों पर असंख्य टिड्डी दल उतर आता है। जीभ लप लपाते रक्त पिपासु भेड़िए हमें घेर लेते हैं। राजा के भट्ट और सैनिक आते हैं और गांव का सभी कुछ जीत जाता है। कुट मृण भांड गंदम छाछ लुट जाता है, भंडार रीत जाते हैं। क्या हमारे ग्रामजनों को अपने अस्त्र का प्रयोग हिंस्र पशुओं की तरह हिंस्र मनुष्यों पर भी नहीं करना चाहिए? भगवान शंकर के पाशुपत का विवेक और न्याय क्या कहता है देवता?
2: भर्तृहरि असहज हो रहे थे।
3: ओह, कितना कटु और दारुण है ये यथार्थ। भर्तृहरि, एक ओर राजधानी कनक श्रृंगा की सुरक्षा, सुविधा, व्यवस्था, व्यवसाय, ऐश्वर्य पूर्ण उत्सव, काव्य संगीत नृत्य की रंजन मनोरंजन, और इन दूरस्थ अंचलों में राजन्य राजकर्मियों की मर्यादा विहीन वंचकता, दुष्टता। किंतु राज्य तो व्यवस्था के लिए इन्हीं पर निर्भर है। जन असंगठित है, विभाजित, बिखरे हुए। तुम्हारा प्रश्न विचारणीय है अनिरुद्ध। मैं तुम्हारे क्षोभ का अनुभव कर पा रहा हूं। शास्त्र के साथ साथ लोकसम्मत निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, समस्या का भी और समाधान का भी।
1: उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं है। नहीं है ना, या फिर है तो किंतु उसे व्यक्त करने से डरते हो, करना नहीं चाहते। अनिरुद्ध, तू व्यर्थ ही भटक रहा है, जबकि तू जानता है कि तुझे क्या करना चाहिए। मैं चला तुम्हें इन वनवासियों की श्रद्धा के सिंहासन पर छोड़कर, भरमाते रहे इन्हें।

0: ये कहकर नशे में डूबा अनिरुद्ध चला जाता है। सभा समाप्त हो जाती है। राजा भर्तृहरि चिंता में डूब जाते हैं। भोजन के पश्चात भर्तृहरि के शयन के लिए खटोलना बिछा दिया जाता है। वीरभद्र विनम्र स्वर में निवेदन करता है,
1: देव, अनिरुद्ध की उद्दंडता से मन को बोझिल ना होने दें। उसकी दृष्टता के लिए मैं क्षमा मांगता हूं।
2: नहीं नहीं वीरभद्र, ऐसा कुछ नहीं है। उसका व्यवहार तो सहज ही था, उसकी प्रश्नाकुलता का आक्रोश था जो अवसर पाकर फूट पड़ा। समाधान तो होना ही चाहिए।
1: उचित है।

0: ही सोच रहे हैं आप। यथा समय मार्गदर्शन ना मिले तो शक्ति की कुंठा विध्वंसक अथवा आत्मविध्वंसक हो जाती है। उसमें नकारने और ध्वस्त करने का अंकुर जड़ पकड़ रहा है।
1: इसके लिए वो अकेला उत्तरदायी नहीं, परिवेश और परिस्थिति भी तो उन जड़ों को सींच रही है वीरभद्र। समय रहते यदि उपचार न हुआ तो ये अंकुर विषवृक्ष बनकर जीवन को आच्छादित कर लेगा।
0: हाँ, संतोष ही आक्रोश को जन्म देता है और ये आक्रोश मुक्ति के मार्ग में यहां वहां भटकता है। यथार्थ और वस्तु स्थिति से पलायन। महात्मन, आपने अभी देखा कि अनिरुद्ध सामान्य नहीं था। ये वो नहीं, उसके मुंह से मदिरा बोल रही थी।
1: किंतु ये तो हृदय में जमे हुए धुएं के निकालने का एक मार्ग था वीरभद्र।
0: मद सेवन हमारे समाज में वर्जित नहीं है देव, ये स्त्रियों में भी प्रचलन में है, किंतु पवित्र स्थलों और अनुष्ठानों में ये वर्जित है। अनिरुद्ध इस अनुशासन को तोड़ रहा था, अनजाने नहीं, जानबूझकर। वस्तुतः वो विद्रोही है।
1: वीरभद्र, अनिरुद्ध ने कहा कि राज्य के सैनिक यहां आकर लूटपाट करते हैं।
0: हाँ।
1: तुम ग्राम प्रमुख हो, ये बात राजा तक पहुंचा सकते हो, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया?
0: अवंती बहुत दूर है हम वनवासियों के लिए देवता।
1: इतनी दूर भी नहीं, 30 कोस ही तो है।
0: आप जैसे तपस्वियों की बात और है, आप करने की ठान ले तो राज्य क्या धरा उलट पुलट हो जाए। हमें तो भोगना है जैसे हमारे पूर्वजों ने भोगा, हमने भोगा, वृंदा और अनिरुद्ध ने भोगा।
1: क्या भोगा, क्या भोगा उन्होंने वीरभद्र, विस्तार से बताओ हमें।
0: महाराज, बीते वर्ष का वैशाख था देव, मेरे ही गांव पर दस्यु दल ने अन्य पशु के लिए आक्रमण किया। उसके प्रतिरोध में हमारे 2 युवक घायल हुए थे। तब यही अनिरुद्ध था जिसकी गदा का प्रहार न दस्यु झेल पा रहे थे ना उनके अश्व। अनिरुद्ध के कारण ही हम चौपाये बचावाने में सफल रहे थे महाराज।
1: निस्संदेह अनिरुद्ध की वीरता सराहने योग्य है।
0: हाँ महाराज, आहत दस्यु दल लौट तो गया, किंतु वो कभी भी अधिक वेग और अधिक क्रूरता पूर्वक टूट सकता था। हमने ग्राम त्यागने का विचार किया। घास, कांस, बांस की झोपड़ी, मिट्टी की मड़ियों और सूखे खेतों के सिवा हमारे पास था ही क्या आज छोड़ जाने को। किंतु इस सब के पश्चात भी ये राय बनी के पलायन से प्रतिरोध अधिक श्रेयस्कर है। प्रतिरोध कम से कम अगली पीढ़ियां हमें अपने पूर्वजों को कायर तो नहीं कहेंगी ना।
2: वीरभद्र का मुखमंडल आत्मदर्प से आलोकित हो रहा था।
1: हाँ हाँ मुखिया, कहते जाओ कहते जाओ, ताकि जान सकूं कि राजा भर्तृहरि किस किस संघर्ष पर असफल है।
0: नहीं महाराज, नहीं, राजा भर्तृहरि तो ये मान रहे हैं कि अवंती का पुण्य समृद्ध है, राजन्य राजसेवक संतुष्ट हैं। तो मैं अपने ग्राम के बारे में कह रहा था महाराज। दस्यु दल तो नहीं, तीसरे चौथे दिवस राज्य कर उगाने अश्वारोही राजकर्मी आ पहुंचे। हमने उन्हें राज प्रतिनिधि मानते हुए दुर्दिनों के लिए सहज कर रखा अन्न उनके सत्कार में लगाया, मदपान की इच्छा पूरी की और निवेदन किया कि अकाल की साल में जीवन बचाए रखना ही कठिन है, राज्य बलि भरने की सामर्थ्य ही कहाँ बचती है। मैंने अपने श्रम से और अपनी धरती माता के प्रसाद से घास, तृण, बांस, मिट्टी, पत्थर आदि लेकर यह ग्रह बनाया, तो इस पर कर दूं? क्यों क्या राजा इतने विशाल महलों व उसके राज

0: इतने बड़े सुविधापूर्ण भवनों का कर देते हैं?
1: वनवासियों से कभी अंबरसारी नहीं उगाही गई थी। वीरभद्र की असमर्थता जानकर भी राज्य दल अगले दिन के लिए गांव में रुक गया।
2: हम सब इस बड़े दल का आतिथ्य भार उठाने में भी असमर्थ थे। मैंने स्वयं ही उनसे अपनी विवशता व्यक्त की थी, तो कुछ अश्वरोही मृगादि के आखेट हेतु हाका लगाने गांव के युवकों को साथ ले वन की ओर चले गए। बस तभी राज सेवकों की अधमता प्रकट हुई। गर्भवती वृंदा के साथ कुछ किशोरियां शौच स्नान आदि के लिए पयस्विनी की ओर गई हुई थी कि कुछ अश्वारोहियों ने उन्हें घेर लिया। देव, वृंदा सात माह का गर्भ लिए कोस भर भागे महाराज, उसका गर्भ खंडित हो गया।
3: ओह, क्या क्या घटता है मेरे राज्य में। महेश्वर सब ठीक करेंगे वीरभद्र, और जो संभव होगा मैं भी प्रयास करूंगा। आप भी विश्राम करें वीरभद्र।
2: जी महाराज।
4: आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम कामिनी कायक कांतारे का चौथा भाग। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय 12:58 होने को हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
5: पेश है इस घंटे की खास खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि आधार ऐप को 4 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस ऐप के माध्यम से 11 लाख से अधिक पते और 39 लाख मोबाइल नंबर लोग अपडेट कर चुके हैं। भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साई रेड्डी ने कल भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिलने से गन्ना और मक्का उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर गाड़ियों के खराब होने की खबरें सही नहीं हैं। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होगा और 24 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध 3 बीएड कॉलेजों में गंभीर अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का निर्णायक तीसरा मुकाबला आज भारतीय समयानुसार 2:30 से लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
4: यह प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर सुनेंगे, गीत संगीत और खाना खजाना में जामुन के फायदे और कुछ व्यंजन बनाना सीखेंगे। बहनों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती उसके वित्तीय तंत्र पर निर्भर करती है। बैंक इस वित्तीय तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। वे लोगों की बचत को सुरक्षित रखते हैं और उसी धन को कृषि, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य विकास कार्यों के लिए ऋण के रूप में उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार बैंक बचत को निवेश में बदलकर आर्थिक विकास की गति को तेज करते हैं। सखियों, प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में याद किया जाता है। यह दिन हमें उस ऐतिहासिक निर्णय की याद दिलाता है जब वर्ष 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना था। राष्ट्रीयकरण से पहले बैंकिंग सुविधाएं मुख्य रूप से बड़े शहरों और उद्योगों तक सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, छोटे व्यापारी और सामान्य नागरिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित रह जाते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद देश भर में हजारों नई बैंक शाखाएं खुली और गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंची। इससे किसानों को फसल ऋण मिलने लगा, छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता मिली और स्वरोजगार के नए अवसर विकसित हुए। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। बैंक किसानों को बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र, सिंचाई और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। इससे कृषि उत्पादन बढ़ता है, किसानों की आय में वृद्धि होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। उद्योग और व्यापार के विकास में भी बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नए उद्योगों को स्थापना, छोटे और मध्यम उद्यमों के विस्तार तथा व्यापारिक गतिविधियों के लिए बैंक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। बहनों, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को ऋण देकर बैंक उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करते हैं। राष्ट्र के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करे, नियमित बचत की आदत अपनाए, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे और वित्तीय साक्षरता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सखियों, अब बात करते हैं उनकी जो हमारे आंगन को महकाते हैं। बरसात की रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं, तो घर का छोटा सा आंगन भी नई हरियाली और रंग बिरंगे फूलों से मुस्कुरा उठता है। खिले हुए फूल मन को सुकून देते हैं, वातावरण को महकाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा भर देते हैं। उसी तरह हमारे बच्चे भी हमारे घर आंगन के सबसे सुंदर और सबसे अनमोल फूल हैं। एक माली अपने पौधों की प्रतिदिन देखभाल करता है। वह समय पर पानी देता है, खाद डालता है, सूखी टहनियां हटाता है और पौधों को कीटों से बचाता है। उसकी मेहनत का परिणाम तब दिखाई देता है जब पौधे फूलों से लद जाते हैं। ठीक यही बात बच्चों पर भी लागू होती है। बच्चे जन्म से ही अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि उनका व्यक्तित्व परिवार के संस्कारों, माता पिता के व्यवहार और वातावरण से आकार लेता है। यदि उन्हें प्यार, अनुशासन, सम्मान और सही मार्गदर्शन मिले तो वे जीवन में सफल और संवेदनशील नागरिक बनते हैं। बरसात का मौसम बगिया के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही बच्चों के लिए भी। इस मौसम में पौधों को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। जल भराव से बचाना, समय पर खाद देना और पौधों को सहारा देना आवश्यक होता है। उसी प्रकार बच्चों की सेहत, स्वच्छता, संतुलित भोजन और नियमित दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बहनों, आज के समय में बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मोबाइल और टीवी का बढ़ता आकर्षण। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्रकृति से जुड़े, तो हमें उन्हें बगिया से जोड़ना होगा। उन्हें पौधे लगाने दें, पानी देने दें और फूल खिलते हुए देखने का आनंद लेने दें। इससे उनके भीतर धैर्य, जिम्मेदारी,
और पर्यावरण के प्रति प्रेम का विकास होगा।

एक माँ अपने बच्चे की पहली शिक्षिका होती है। उसकी बोली, उसका व्यवहार और उसके संस्कार बच्चे के व्यक्तित्व की नींव बनते हैं। जिस घर में प्रेम, सम्मान, सहयोग और अच्छे संस्कारों का वातावरण होता है, वहाँ बच्चे भी सुगंधित फूलों की तरह खिलते हैं और अपने गुणों से पूरे समाज को महकाते हैं। बहनों, इस वर्षा ऋतु में हम एक संकल्प लें, अपने आंगन की बगिया को भी सहेजेंगे और अपने बच्चों के व्यक्तित्व रूपी बगीचे को भी प्रेम, समय और संस्कारों से सींचेंगे, क्योंकि जब आंगन में फूल खिलते हैं और घर में मुस्कुराते बच्चे होते हैं, तभी जीवन सचमुच सुंदर और आनंदमय बनता है।

सखियों, अब बात करते हैं घरेलू कार्यों में नवाचारों की भूमिका। बहनों, हमारा घर केवल रहने का स्थान नहीं होता, बल्कि यह हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है। घर की सुव्यवस्था, स्वच्छता और सुख शांति बनाए रखने में घरेलू कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बदलते समय के साथ इन कार्यों को आसान, सुरक्षित और समय की बचत करने वाला बनाने के लिए अनेक नवाचार हुए हैं। हम बात करने जा रहे हैं घरेलू कार्यों में नवाचारों की भूमिका। पहले घर के अधिकांश काम हाथों से किए जाते थे। कपड़े धोने से लेकर मसाले पीसने, अनाज साफ करने और भोजन बनाने तक हर काम में बहुत समय लगता था और मेहनत भी लगती थी। लेकिन विज्ञान और तकनीक के विकास ने घरेलू जीवन को काफी सरल बना दिया है। आज मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, प्रेशर कुकर जैसे अनेक उपकरण घर के कामों को तेज और सुविधाजनक बना रहे हैं। इनकी मदद से समय और श्रम दोनों की बचत होती है, जिससे परिवार के सदस्य अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य रचनात्मक कार्यों के लिए अधिक समय निकाल पाते हैं। बहनों, नवाचार केवल मशीनों तक ही सीमित नहीं है। रसोई में भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के नए तरीके, कम तेल में स्वादिष्ट भोजन बनाने की तकनीक, वर्षा जल संचयन, रसोई के जैविक कचरे से खाद तैयार करना भी उपयोगी नवाचार है। ये उपाय न केवल खर्च कम करते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान देते हैं। सखियों, आज डिजिटल तकनीक ने भी घरेलू जीवन को नई दिशा दी है। मोबाइल ऐप के माध्यम से बिजली, पानी और गैस के बिल जमा करना, ऑनलाइन राशन मंगाना, डिजिटल भुगतान करना और घरेलू बजट का हिसाब रखना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गया है। हालांकि नवाचार तभी सार्थक हैं जब उनका उपयोग समझदारी से किया जाए। बिजली और पानी की बचत, उपकरणों का सुरक्षित उपयोग और बच्चों को भी संसाधनों के सही उपयोग की आदत सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। सखियों, छोटे छोटे नवाचार हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। यदि नई तकनीकों को अपनाते हुए अपनी पारंपरिक समझ और संसाधनों का संतुलित उपयोग करें तो घर का काम बोझ नहीं बल्कि एक व्यवस्थित और आनंददायक अनुभव बन सकता है। तो घरेलू कार्यों में उपयोगी नवाचारों को अपनाएं, समय और संसाधनों की बचत करना, पर्यावरण का संरक्षण करना और अपने घर को अधिक सुंदर, सुव्यवस्थित तथा खुशहाल बनाना यह हमारी ही जिम्मेदारी है। सखियों, नवाचार केवल सुविधा तक सीमित नहीं है बल्कि आय का माध्यम भी बन रहे हैं। अनेक महिलाएं घर से ही ऑनलाइन कुकिंग क्लास, सिलाई, हस्तशिल्प, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने गृहिणियों को आत्मनिर्भर बनने का नया अवसर दिया है। आने वाले समय में स्मार्ट होम तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, वॉइस कंट्रोल उपकरण और ऊर्जा बचाने वाली मशीनें घरेलू कार्यों को और अधिक सरल बनाएंगी। लेकिन यह भी आवश्यक है कि तकनीक का उपयोग समझदारी,

आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ही किया जाए। सखियों, अब बात उसकी जहां हमारा सबसे ज्यादा समय निकलता है, वो है हमारी किचन। सखियों, बरसात की फुहार के साथ मन आनंद से

अभी गया है कि स्वस्थ परिवार की शुरुआत स्वच्छ रसोई से होती है, इसलिए बरसात के दिनों में रसोई की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले रसोई को सूखा और हवादार रखें। सिंक, गैस चूल्हा और रसोई का प्लेटफॉर्म प्रतिदिन अच्छी तरह साफ करें। जहां नमी रहती है वहां फफूंदी और बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं, इसलिए सफाई के बाद सूखे कपड़े से सतहों को पोंछना भी अच्छी आदत है। अनाज, दालें, मसाले और आटा हमेशा साफ और एयरटाइट डिब्बों में रखें। बरसात में इनमें नमी आ सकती है जिससे उनमें कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाती है। समय समय पर डिब्बों की जांच करें। पुराने समय में हमारी दादी नानी नीम की सूखी पत्तियां, तेज पत्ता या साबुत लाल मिर्च अनाज के डिब्बों में रखती थीं। ये पारंपरिक उपाय आज भी उतने ही उपयोगी हैं। सखियों, फल और सब्जियां ताजी ही खरीदें, उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धोकर ही उपयोग करें। पत्तेदार सब्जियों को विशेष सावधानी से साफ करें क्योंकि बरसात में उन पर मिट्टी और सूक्ष्म जीव अधिक हो सकते हैं। रसोई घर के कूड़ेदान को प्रतिदिन खाली करें और हमेशा ढक्कन लगाकर रखें। बरसात में स्वच्छ पानी का महत्व और भी बढ़ जाता है। पानी को उबालकर या शुद्ध करके पीना बेहतर होता है। यदि घर में वाटर फिल्टर है तो उसकी नियमित सफाई भी आवश्यक है। बहनों, फ्रिज की नियमित सफाई करें। सप्ताह में एक बार फ्रिज साफ करें और खराब या बासी खाद्य पदार्थ तुरंत निकाल दें। दूध और दूध से बने पदार्थ लंबे समय तक बाहर न रखें, उपयोग के बाद तुरंत फ्रिज में रख दें। सब्जी काटने वाले बोर्ड और चाकू हर इस्तेमाल के बाद गर्म पानी से धोकर अच्छी तरह सुखाएं। किचन टॉवल को धूप या खुली हवा में सुखाएं। गीले कपड़ों में बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं। बर्तनों को धोने के बाद पूरी तरह सुखाकर ही अलमारी में रखें ताकि उनमें सीलन न लगे। मच्छरों और मक्खियों से बचाव के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाएं। बहनों, रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है, यह परिवार के स्वास्थ्य, प्रेम और अपनत्व का केंद्र है। जब रसोई स्वच्छ होती है, भोजन पौष्टिक होता है और उसमें स्नेह का स्वाद होता है, तब परिवार भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। तो इस बारिश इन छोटी छोटी सावधानियों को अपनाकर आप अपने रसोई घर को स्वच्छ और सुरक्षित रखें।

सखियों अब बात करते हैं मानसून का सुपर फूड। सुपर फूड है जामुन। बरसात का मौसम आते ही बाजार में जामुन की बहार आ जाती है। गहरे बैंगनी रंग का यह छोटा सा फल स्वाद के साथ साथ पोषण का भी खजाना है। आयुर्वेद में जामुन को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। वहीं आधुनिक शोध भी इसके कई स्वास्थ्य लाभों की पुष्टि करते हैं। जामुन में विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं और कई प्रकार की सूजन को कम करने में भी सहायक होते हैं। जामुन रक्त शर्करा नियंत्रण में सहायक है। मधुमेह के मरीजों के लिए यह रामबाण से कम नहीं है। पाचन को बेहतर बनाता है, दिल की सेहत के लिए अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो सखियों, जब तक यह फल आता है तब तक सभी को इसका सेवन करना चाहिए। सखियों, जामुन से बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं। आज खाना खजाना में हम आपको बता रहे हैं जामुन के व्यंजन। तो पहले बनाते हैं जामुन का खट्टा मीठा शरबत। इसके लिए हमें चाहिए पके हुए जामुन 1 कप, चीनी 2 छोटी चम्मच, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, पानी आवश्यकता अनुसार। जामुन का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले जामुन को अच्छे से धो लें। अब जामुन से गुठलियां निकाल लें और सिर्फ पल्प रख लें। जामुन के पल्प में चीनी, काला नमक, नींबू का रस और थोड़े से पानी को मिक्सी के जार में डालें। इसे अच्छे से पीसकर पेस्ट बना लें और बचे हुए पानी को भी इसमें मिला लें और फिर इसको छान लें। ऊपर से बर्फ के टुकड़े डालें और ठंडा ठंडा जामुन का खट्टा मीठा शरबत सर्व करें। सखियों, अब बनाते हैं चटपटी जामुन की चाट। अगर आपको तीखा और खट्टा स्वाद पसंद है तो यह बहुत अच्छी लगेगी। तो हमें चाहिए जामुन 1 कप, काला नमक स्वाद अनुसार, भुना जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चुटकी, नींबू का रस 1/2 चम्मच। जामुन को धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक कटोरे में जामुन डालें। इसके अंदर काला नमक, जीरा पाउडर, लाल मिर्च और नींबू का रस मिला लें। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। लीजिए, जामुन की चटपटी चाट तैयार है। सखियों, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के लिए 100 से 150 ग्राम जामुन प्रतिदिन पर्याप्त हैं। तो जब तक इस मौसम में जामुन आ रहे हैं तब तक आप उनका भरपूर स्वाद लें और जामुन की व्यंजन विधियां बनाएं। और अब कार्यक्रम से विदा लेने का समय हो चुका है, तो अपनी कार्यक्रम सखी वंदना को दे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:30 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। कलाकार हैं मोहन सिंह यादव और साथी। इनके गाए लोकगीत आपको सुनवाते हैं।

0: लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मोहन सिंह यादव के गाए बुंदेली गीत।
1: कुल उजियारा कुल बगिया को और फूल

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए बुंदेली गीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के सहयोग से प्रसारित किया गया। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे कल्पना झोकर करके गाए भजन और गीत। आइए शुरुआत करते हैं इनकी गाई भक्ति रचना से।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार थी कल्पना झोकरकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

बार होता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: मम्मी और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है, कहानी जब बिन टोल्ड, जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये प्रसारण आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। इस समय दोपहर के 2 बजे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

अरिजीत सिंह और एकलव्य की आवाज़ में अभी आपने मनोज मुंतशिर का लिखा गीत सुना। संगीतकार थे रोचक कोहली। फिल्म का नाम था थैंक गॉड। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत में आवाज़ें हैं देव नेगी, श्रुति राणे और साथियों की। कुमार ने लिखा है, गौरव दास गुप्ता का संगीत है और फिल्म का नाम निकम्मा।

कविता सेठ और कनिष्क सेठ की मिली जुली आवाज़ों में हम आपको जुग जुग जियो फिल्म का गीत सुनवाते हैं।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव रहा है।
2: ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है। ऋग्वेद में भी कहा गया है, हमारे संकल्प समान हो, हमारी सोच समान हो, हमारी संवेदना समान हो, ताकि हम सब एकता, समरसता और सद्भाव के प्रतिमान स्थापित करें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. यादव जगदीशपुर में बैठक के दौरान 10.54 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि 1460 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुई। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की यह मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की

0: राष्ट्रपति माया सानू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। वे मोल्दोवा की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक आज संसद परिसर में शुरू हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद हैं। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री रिजिजू ने कहा,
1: पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वह पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को लगातार सेटों में 21-17, 21-17 से हराया। इससे पहले उन्होंने 2024 में सैयद मोरी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती थी। पीवी सिंधु जापान ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन में लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल सुंदर के स्थान पर ऑलराउंडर हर्ष दुबे की टीम को शामिल किया गया है। भारत ने साउथहैम्पटन में श्रृंखला का पहला मैच जीता था, जबकि इंग्लैंड के कार्डिफ में दूसरा मैच जीतकर श्रृंखला बराबर कर ली। भारतीय टीम आज का मैच जीतकर एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला अपने नाम करना चाहेगी। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हैं। अगले 24 घंटों के लिए छतरपुर पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर संभाग सहित प्रदेश के 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल इंदौर उज्जैन समेत कई जिलों में मौसम सामान्य और साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के आसपास 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक टर्फ सिस्टम सक्रिय है। इसी कारण शनिवार को भोपाल नर्मदापुरम सहित कई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग का अनुमान है कि आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में एनसीपीआई को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत, संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया रवाना हुई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा। महिला सिंगल्स फाइनल में जापान की अकाने यामागुची को हराया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज संसद भवन एनेक्सी में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हमारे संवाददाता ने बताया कि बैठक में संसदीय कार्य

0: पीआई को बैठक में आमंत्रित किए जाने के विरोध में प्रतीकात्मक बहिष्कार था। एनसीपीआई हाल ही में गठित एक नया राजनीतिक दल है जिसमें तृणमूल कांग्रेस के कई बागी सांसद शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मॉनसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मॉनसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। उन्होंने कहा कि संसद सभी की है और इस दौरान सरकार विभिन्न विधायी कार्य करेगी और विधेयक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य रचनात्मक रूप से इसमें भाग लेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि ये बार बार साबित हो चुका है कि संसद में व्यवधान डालने से कोई राजनैतिक लाभ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनने को तैयार है और उसे उम्मीद है कि विपक्ष भी सरकार की बात को सुनेगा। उन्होंने कहा कि सदन में व्यवधान डालने से सभी का समय बर्बाद होता है और करदाताओं का पैसा भी व्यर्थ हो जाता है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में रात भर हुई लगातार बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। आज बाढ़ का पानी सवेरे बेला कॉलोनी के नए बस स्टैंड सहित निचले इलाकों में भर जाने के कारण सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों का जलस्तर बढ़ने और उनके किनारों के टूट जाने के कारण दर्जनों वाहन बह गए या डूब गए, जिससे भारी अव्यवस्था फैली। स्थानीय प्रशासन की मदद से बचाव और राहत टीमें प्रभावित परिवारों को सुरक्षित निकालने में जुटी रहीं। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मध्यम से तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में कटरा उपमंडल प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए मॉनसून आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। किसी भी जानकारी के लिए नियंत्रण कक्ष के नंबर 01-991-295-681 पर संपर्क किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आज सवेरे तेज वर्षा के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ आई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। सभी मौतें सबसे ज्यादा प्रभावित सूरनकोट तहसील में हुई हैं। लोअर मुर्रा गांव में एक मकान पर चट्टाने गिरने से मकान मालिक और परिवार के 5 अन्य सदस्य लापता हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी और पुंछ में बचाव और राहत के कामों की समीक्षा की। उपराज्यपाल स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुई दुखद मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बात कर रात में हुई तेज बारिश के बाद राजौरी जिले में आई बाढ़ की हालत का जायजा लिया। श्री शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता करेगी। जम्मू और कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। हमारे संवाददाता के अनुसार खराब मौसम के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। लद्दाख में शनिवार को करगिल जिले में सांकू सब डिवीजन के

0: अंतर्गत आने वाले संग्रह गांव में अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। इस बाढ़ के कारण करगिल जंस्कार राष्ट्रीय राजमार्ग 301 बंद हो गया है। आरंभिक खबरों के अनुसार बाढ़ के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, हालांकि निजी संपत्ति को नुकसान होने और मवेशियों के मरने की खबर जरूर है। प्रशासन ने यात्रियों, निवासियों और पर्यटकों को सड़क खुलने की आधिकारिक घोषणा होने तक प्रभावित मार्गों पर यात्रा को टालने की सलाह दी है। आपातकालीन सहायता के लिए जिला आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र करगिल से फोन नंबर 8082743220 या 01985259052 से संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
1: यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्दोवा की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान वे मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। इस दौरान वे मैसेडोनिया के राष्ट्रपति सिल्या नोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। यात्रा के अंतिम में राष्ट्रपति मुर्मू 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया की यात्रा करेंगी। दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश की किसी भारतीय राष्ट्रपति की 3 दशक से अधिक समय बाद ये पहली यात्रा होगी। समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: जंजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर हुसैन अली मुविने ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जंजीबार तंजानिया का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मुविनी से भेंट की। राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुविनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ उनकी पत्नी तथा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। ये खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को हराया। सिंधु ने 2 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के बाद किसी सुपर 750 स्तर की प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उधर भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर ऑलराउंड हर्ष दुबे को टीम में शामिल किया गया है। वहीं फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल रात मियामी में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर 3रा स्थान हासिल किया।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने पर पीवी सिंधु को बधाई दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर सिंधु ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा देश गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मंगल पांडे मातृभूमि के गर्व और सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर उन्होंने कर दिए थे। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है।

0: छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर के रिजल्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परिणाम के आधार पर इस वर्ष कुल 96.78% छात्र सफल रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने विद्यार्थियों और अभिभावकों को ऑप्टिकल अंक प्रमाणन पत्र OMR शीट की जांच के लिए केवल असली OMR ही जमा करने का परामर्श दिया है। फर्जी या AI से बनाई गई OMR शीट देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे जांच के लिए सिर्फ असली OMR शीट ही जमा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन का एक लेख साझा किया। ये लेख इस बात को दर्शाता है कि कैसे नवाचार और वैश्विक साझेदारी के जरिए परंपरागत भारतीय शिल्पकला आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद पहल स्थानीय शिल्पकला को बाजार पहुंच प्राप्त कराने, सतत आजीविका सृजित करने और देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने तथा विरासत को संरक्षित करने में सहायता दे रही है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस सप्ताह अपनी पहली अमरीकी यात्रा पर व्हाइट हाउस में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर राष्ट्रपति आउन कल वॉशिंगटन के लिए रवाना हुए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक आयोजित की। बैठक में NCPI को बुलाए जाने के विरोध में विपक्ष ने सांकेतिक वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के सुचारू कामकाज के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर अचानक बाढ़ और भूस्खलन से कई लोगों की मौत हुई और संपत्ति को नुकसान पहुंचा। बचाव कार्य जोरों पर, केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा पर मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया रवाना हो गई। और फीफा विश्व कप फुटबॉल के फाइनल में आज अर्जेंटीना का सामना स्पेन से। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब बच्चों के लिए प्रस्तुत है उनका अपना कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

मुस्कान एक ऐसी जादुई चाबी है जो हर ताले को आसानी से खोल सकती है, इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी प्रेरक सुविचार के साथ बाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम बाल सभा में। कार्यक्रम का ये अंक लेकर आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी मधु दीदी। बाल मित्रों, हम प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 1927 में इस दिन भारतीय प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो जनता को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करने के लिए सेवा कर रहा है। ये शुरुआत से ही अपने उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का अनुसरण कर रहा है। बाल साथियों, 24 दिसंबर वर्ष 1906 की शाम कनाडाई वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेंडेसन ने जब अपना वायलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना, वो दुनिया में रेडियो प्रसारण की शुरुआत थी। इससे पहले बाल मित्रों, जगदीश चंद्र वसु ने भारत तथा मार्कोनी ने वर्ष 1900 में इंग्लैंड से अमेरिका बेतार संदेश भेजकर व्यक्तिगत रेडियो संदेश भेजने की शुरुआत कर दी थी, किंतु एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ मैसेज भेजने की शुरुआत वर्ष 1906 में ही हुई। भारत में बाल साथियों, रेडियो प्रसारण की शुरुआत वर्ष 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम वर्ष 1923 को मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया। इसके बाद वर्ष 1927 में मुंबई और कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले दो ट्रांसमीटर

0: योजनाओं से प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। वर्ष 1930 में सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से इसे परिचालित करना शुरू कर दिया। वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया और वर्ष 1957 में आकाशवाणी नाम से इसे पुकारा जाने लगा। आपको पता है बाल मित्रों, वर्ष 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी ने रेडियो जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित किया था। स्वतंत्रता के समय भारत में सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन हुआ करते थे, लेकिन 80 के दशक तक रेडियो का नेटवर्क पूरे भारत में फैल चुका था और इसका प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में होता है। विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो की सबसे अच्छी सेवाओं में से एक है। इसे व्यावसायिक सेवा भी कहा जाता है। ये समाचार, फिल्म संगीत और कॉमेडी कार्यक्रमों सहित कई कार्यक्रमों की पेशकश करती है। हम ये कह सकते हैं बाल मित्रों कि रेडियो के आगमन के बाद एक नए युग का सूत्रपात हुआ। आज के समय भी रेडियो लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। इसके चलते मन की बात कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के वचनों को सुनते हैं। बाल मित्रों, आकाशवाणी आज भी एक बड़े नेटवर्क के रूप में पूरी पृथ्वी पर छाया हुआ है। ये तो थी बाल साथियों एक छोटी सी चर्चा राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर। और अब चलते हैं बाल मन से क्रम की ओर। बाल मन से क्रम के अंतर्गत अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान से की गई बातचीत। बाल मन से क्रम के अंतर्गत बाल साथियों आज हमारे स्टूडियो में एक प्यारा सा बालक आया हुआ है, तो चलिए करते हैं उससे थोड़ी सी बातचीत और देखते हैं कि आज वो हमारे बाल साथियों को क्या क्या सुनाने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं इनका नाम। क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अयान रजक है।
0: अयान, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: मैं थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ।
0: थर्ड क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: यस।
0: आप आज हमारे बाल साथियों को क्या सुनाएंगे?
1: मैं कविता सुनाने वाला हूँ।
0: चलिए सुनाइए।
1: पिता तुल्य है देश हमारा, हम सबका यह पालनहार, सुख हर देता दुख हर लेता, अमन देश को सत सत बार, पकड़ो उंगलियां चाल सिखाए, पग पग पर है देता साथ, विघ्न कभी जो डगमग कर दे, तुरंत बढ़ाए अपना हाथ, चुन चुन कलियां बरसाता है, दिखलाता है मंजिल का द्वार, अपने हर सुत को देता है जीवन जीने का आधार, नन्हे पग चढ़ जाए पर्वत निस्तिन देता है आशीष, आओ हम भी मान बढ़ाकर ऊंचा कर दें इसका शीश।
0: पिता तुल्य ये देश हमारा, बहुत ही प्यारी देशभक्ति पूर्ण कविता आपने हमारे बाल साथियों को सुनाई। अच्छा अयान, ये बताओ आपको कौन कौन से गेम्स खेलते हैं आप?
1: यस।
0: कौन कौन से गेम्स खेलना आपको पसंद है?
1: टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल।
0: इतने सारे गेम्स खेलते हो आप, और किस चीज का शौक है आपको?
1: गिटार बजाना।
0: गिटार बजाते आप? आपको गिटार बजाने का शौक है? गिटार में आप क्या बजाते हो?
1: धुन बजाते हैं।
0: अच्छा, कोई भी धुन बजाते हैं आप गिटार से? Yes. आप लाए नहीं अपनी गिटार? नहीं लाए? चलिए कोई बात नहीं। आप हमारे बाल साथियों को और क्या सुनाएंगे?
1: मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ।
0: चलिए सुनाइए।
1: जब की आंखों का तारा था, वो नीसू भाई हमारा था, यारों का भी वो यार था, पर किस्मत का थोड़ा मारा था, डारी गी छब्बीसो काली, जब हम सबको तू छोड़ गया, आप ही रोवे तेरा भाई भी, सबसे क्यों मोड़ गया, गरीब घर का बालक था, कुछ इच्छा थी गढ़ करने की, प्यारा उसका जोंडियर था, उस मोटी भाई करने की, सबका तूने भूत उतारा, जिसने फंसाया तो दूसरे सिंह टोचन कर, इस दुनिया में होया कर, पर तू कहलाया टोचन किंग, गरीब घर का बालक था, ट्रैक्टरों से तू करता था प्यार, भोलेनाथ का भगत पड़ा था, अमर ले ले जय है हरिद्वार, जिस उम्र में बच्चे खेला करते मिट्टी और खिलौनों से, उस उम्र में छोटा ट्रैक्टर लावे मेले और दुकानों से, बच्चे से भी पूछ लो किसका ट्रैक्टर है सबका किंग, यीशु भाई का नाम लेवे और ट्रैक्टर बोले टोचन किंग, ट्रैक्टर में डाले कार के टायर, अब उसको कौन चलाएगा, यीशु तो था हम सब की जान, पर रोहित उसे चलाएगा, छोटी सी उम्र में तूने ऐसा नाम बनाया था, ट्रैक्टर तो 40 भगा करे, तूने 110 भगाया था, टोचन किंग को जब देखे हैं तेरी याद हमेशा आती है,

0: बहुत ही प्यारा गीत अयान आपने हमारे बाल साथियों को सुनाया। अच्छा अयान, ये बताइए आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे?
1: आर्मी में कर्नल ऑफिसर।
0: आप आर्मी में कर्नल ऑफिसर बनना चाहते हैं?
1: यस।
0: इसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप करेंगे इतनी मेहनत?
1: यस।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे कि आप बड़े होकर अपना लक्ष्य पूरा करें, एक सफल कर्नल ऑफिसर बने, है ना?
1: यस।
0: अयान आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें इतना प्यारा गीत सुनाया, इतनी देशभक्ति पूर्ण रचना सुनाई, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: बाल साथियों, बाल मन से क्रम के अंतर्गत अभी आपने हमारे स्टूडियो में आए हुए नन्हे मेहमान से की गई बातचीत को सुना। बाल मित्रों, इसी हफ्ते 23 जुलाई के दिन हम एक नहीं बल्कि दो दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जयंती मनाएंगे। एक हैं चंद्रशेखर आजाद तो दूसरे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। तो पहले बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी की। बाल साथियों, चंद्रशेखर जी के नाम से तो हम सभी भली भांति परिचित हैं। उनका नाम भारतीय इतिहास में एक अमर नाम है। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे। उनकी वीरता, साहस और त्याग की कहानी आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। बाल मित्रों, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगदानी देवी था। उनके पिता ईमानदार, स्वामी भक्त, साहसी और वचन के पक्के थे और यही गुण चंद्रशेखर को अपने पिता से विरासत में मिले थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। वे बेहद कम उम्र में देश की स्वतंत्रता की लड़ाई का हिस्सा बने थे। बाल साथियों, जब वर्ष 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो चंद्रशेखर का कांग्रेस से मोह भंग हो गया और वे वर्ष 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और वर्ष 1925 में उन्होंने पहली बार रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद बाल मित्रों, चंद्रशेखर ने वर्ष 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर SP सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। उनका ये मानना था कि ये धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। आपको पता है बाल मित्रों कि चंद्रशेखर जी को आजाद क्यों बुलाया जाता है? तो इसके पीछे भी एक खास वजह है। वे जब मात्र 15 वर्ष के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरे घर का पता जेल है। ये सुनने के बाद जज भड़क गए और उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। हर कोड़े के वार के साथ उन्होंने वंदे मातरम का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आजाद कहलाए। बस यहीं से उनका नाम आजाद पड़ा। चंद्रशेखर पूरी जिंदगी अपने नाम को आजाद रखना चाहते थे। बाल मित्रों, अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर आगामी योजना बना रहे थे। ये जानकारी अंग्रेजों को पहले से ही मिल गई थी जिसके कारण अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और वे अकेले अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। इस लड़ाई में वे बुरी तरह घायल हो गए किंतु उन्होंने संकल्प लिया था कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। अपने इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बाल साथियों अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। तो बाल साथियों, ऐसे थे महान देशभक्त चंद्रशेखर आजाद। और बाल साथियों, अब बात करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन है बाल साथियों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सिपाहियों में से एक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का। ये वाक्य जब तक देश की स्वतंत्रता का इतिहास रहेगा तब तक स्वर्णिम अक्षरों में तिलक जी के साथ जुड़ा रहेगा। तिलक जी का जन्म बाल साथियों 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उनका बचपन का नाम केशव बाल गंगाधर तिलक था। बचपन से ही उनमें देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी थी। प्रारंभिक शिक्षा मराठी में प्राप्त करने के बाद गंगाधर को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए पूना भेजा गया। इसके बाद केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र उनकी आवाज के पर्याय बन गए। तिलक जी को भारतीय क्रांति का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया।

बाल साथियों, तिलक जी, लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर लाल बाल पाल की टिकड़ी का हिस्सा बने। वे एक विद्वान लेखक, गणितज्ञ और दार्शनिक थे। उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा लोकमान्य अर्थात प्रिय नेता की उपाधि दी गई। मालमित्र, गणेश उत्सव की शुरुआत तिलक जी ने राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने के लिए और लोगों को एकत्रित करने के उद्देश्य से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में की थी। तिलक जी का व्यक्तित्व, उनका काम, उनके विचार और उनके द्वारा शुरू की गई परंपराएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। उनका व्यक्तित्व अपने आप में बहुआयामी था। ढेर सारी उपलब्धियों के बावजूद भी कोई व्यक्ति जमीन से कैसे जुड़ा रह सकता है, सादगी को कैसे अपने जीवन का अंग बना सकता है, अगर वो देखना है तो तिलक जी के जीवन से ही हम देख सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पर उनको हमारा शत शत नमन। इस चर्चा के बाद बाल साथियों, अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म सन ऑफ इंडिया से। आवाजें हैं शांति माथुर और साथियों की। शकील वदायूनी के गीत को संगीत से सवारा है नौशाद ने।

0: ತನ್ನೆ ಬಾಯ ತನ್ನೆ ಬಾಯ ಥಮ್ ನನ್ನ ಮುನ್ನ ರಹಿ ದೇಶ ಕಾ ಸಿಪಾಹಿ ಬೋಲೋ ಮೇರೆ ಸಂಗ ಜೈ
1: और बाल मित्रों देखिए बारिश का मौसम है और ये मौसम बड़ा ही सुहावना होता है। बरसात का ये मौसम जहां एक ओर चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाता है तो वही दूसरी ओर वातावरण को भी खुशनुमा बनाता है। बारिश के पानी से सूखी धरती पेड़ पौधे और घास फिर से हरे भरे हो जाते हैं। इस मौसम में चारों ओर हरियाली और मिट्टी की मनमोहक खुशबू फैल जाती है जो हम सभी के मन को बड़ा सुकून देती है। बाल साथियों बारिश का ये मौसम हमें आनंद से भर देता है। इस मौसम में मौज मस्ती के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आइए जानते हैं कि कैसे हम फिट और सेहतमंद रह सकते हैं। सबसे पहले तो बाल साथियों गीले कपड़ों से बचें। बारिश में यदि आप भीग गए हैं तो तुरंत नहा लें और अपने शरीर को सूखा करें क्योंकि गीले कपड़े पहनने से त्वचा में इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा घर में कुछ भी खाने से पहले या बाहर से आने पर साबुन से हाथ जरूर धोएं। इस मौसम में बाहर का तला भुना और खुला खाना खाने

से पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। हमेशा ही घर का बना ताजा और सुपाच्य भोजन करें। बरसातियों बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इन सब्जियों में कीड़े और मिट्टी छिपी हुई होती है जो हमें बीमार कर सकती है। ऐसा नहीं है बाल मित्रों कि बारिश का मौसम है तो हमें प्यास कम लगती है और पानी न पिए। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खूब पानी पिए, लेकिन ध्यान रखें कि पानी शुद्ध हो। इस मौसम में यदि हम उबला हुआ पानी ठंडा करके पियेंगे तो बीमार होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इस मौसम में बाल मित्रों मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, तो मच्छरों से बचने के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें। शाम के समय खिड़की दरवाजे बंद रखें और मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करें। बाल साथियों, मॉनसून का मौसम प्रकृति से पुनः जुड़ने और शरीर की प्राकृतिक लय को बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है, तो आप भी सेहत से जुड़ी इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर मॉनसून का पूरा मजा ले सकते हैं। इसी के साथ बाल साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, और अब चलने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए अपनी मधु दीदी को।

बच्चों के लिए अभी बाल सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं चित्रपट संगीत।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुना। संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम था राजहट। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की मिलीजुली आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीतकार हेमंत कुमार और फिल्म का नाम एक ही रास्ता।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर इसे गाया है किशोर कुमार और साथियों ने। फिल्म का नाम है न्यू दिल्ली।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल के जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस दौरान प्रदेश के 10.54 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 1460 करोड़ से अधिक की राशि भी अंतरित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 देश मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की यह पहली यात्रा होगी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा आज संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए बैठक से वॉकआउट किया। विरोध दर्ज कराने के लिए बाद विपक्ष के कई प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो गए। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए छतरपुर और पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। यह खिताब जीतने वाली वे पहली भारतीय हैं। फाइनल में सिंधु ने 3 बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को लगातार सेटों में 21-17 से हराया। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन में लॉर्ड्स में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। आकाशवाणी भोपाल से मीडियम वेव पर हमारा प्रसारण अब कुछ समय के लिए बंद होता है। शाम 5 बजे से आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण लगातार जारी है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। आइए आपको सुनवाते हैं लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोहन सिंह यादव और साथियों के गाए बुंदेली गीत।
2: अरे दो दो न धरियो गगरिया,

मोहन सिंह यादव की आवाज़ में आप सुन रहे थे बुंदेली लोकगीत। इसके साथ ही लोक संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी भोपाल से अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं कल्पना झोकरकर, इनकी गाई भक्ति रचना पहले आपको सुनवाते हैं।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कल्पना झोकरकर की गाई रचनाएं। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से डीटीएच के ऑडियो चैनल पर।
1: सूचना हो, समाचार हो या हो सुरताल, सबकी पहली पसंद आकाशवाणी

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आकाशवाणी भोपाल से आज शाम 7:30 से 8 के बीच सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। आज का विषय होगा बागवानी फसलों में वर्तमान कृषि कार्य माला। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं, वे शाम 7:30 से 8 के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समय याद रखिए, आज शाम 7:30। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अब आपको सुनवाते हैं चित्रपट संगीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने शराबी फिल्म का गीत सुना। अनजान ने इसे लिखा था, संगीत बप्पी लहरी का था। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं बदला और बलिदान फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की मिलीजुली आवाज़ें हैं। KL शर्मा ने गीत को लिखा है, संगीतकार हैं सोनिक ओमी।

0: रूप चुराया गोरिये मेरी फसलों से।
1: राजा मेरा रूप चुराया सजना,

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक और गीत आपको सुनवाते हैं। वर्मा मलिक ने इसे लिखा है, सोने कोमी की धुन है और फिल्म का नाम खून की टक्कर।

कार्यक्रम के अंत में आशा भोसले और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपको शान फिल्म का गाना सुनवाते हैं। आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत आरटी बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। यह आकाशवाणी भोपाल है, आइए आपको सुनवाते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल के जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता बिल को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस दौरान प्रदेश के 10.54 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 1460 करोड़ से अधिक की राशि भी अंतरित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 देश मोलदोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति मुर्मू मोलदोवा पहुंचेंगी। किसी भारतीय राष्ट्रपति के मोल्दोवा की यह पहली यात्रा होगी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा आज संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। विरोध दर्ज कराने के बाद विभिन्न दलों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मानसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए छतरपुर और पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। और भारत और इंग्लैंड के बीच तीन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: इस घंटे की खास खबरें अभी आपने सुनी। ये प्रसारण आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं DTH के ऑडियो चैनल पर। इस समय शाम के 4 बजे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाणा।

जय झूलेलाल दोस्तों, सिंधियत जी सुरहाण कार्यक्रम में मां तव्हां जी दोस्त तव्हां जी होस्ट जानवी भावना ने तव्हां सभिनी जो तहे दिल सां स्वागत थी कयां। दोस्तों, मां ॾाढी वॾी शुक्रगुजार आहियां हिन रेडियो जी कि हर बार वांगुर अॼु बि वरी मां तव्हां सां रूबरू थी सघां थी। रेडियो हिकु मनोरंजन जो अहिड़ो ज़रियो आहे जेको घणे वक़्त खां हलंदो पियो अचे। असांजा वॾा ॿुधाईंदा हुआ कि सुबुह जी चांहि रेडियो सां ई शुरू थींदी हुई। केतिरो सुकून भरियो वक़्तु हो। अॼु त ॾींहं जी शुरूआति मोबाइल जी नोटिफिकेशन सां थींदी आहे। रेडियो जी ॻाल्हि कयूं पिया त भारतीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई ते मल्हायो वेंदो आहे। हिन ॾींहुं 1927 में भारत में पहिरियों दफ़ो रेडियो प्रसारण जी शुरूआति थी। इहो ॾींहुं भारत जे संचार इतिहास में हिकु मील जो पत्थर साबित थियो। दोस्तो, प्रसारण सेवा न केवल मनोरंजन जो साधन आहे, उन सां गॾु ज्ञान, शिक्षा ऐं जन जागरूकता फैलाइण जो मज़बूत ज़रियो बि आहे। रेडियो जे ज़रिए लखई माण्हू देश दुनिया जी ख़बर रखी सघंदा आहिनि। उन सां गॾु घणेई सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, खेतनि जे बारे में, स्वास्थ्य जे बारे में ऐं शिक्षा कार्यक्रम सां बि असांखे रेडियो जोड़ींदो आहे। अॼु जे नए ज़माने में टीवी, इंटरनेट ऐं सोशल मीडिया जॻहि वठी छॾी आहे, पर रेडियो जी ॻाल्हि अॼु बि अलॻि ही आहे। भूकंप या कोई बि आपातकालीन परिस्थितीअ जे बारे में जानकारी रेडियो असांखे तेज़ीअ सां ॾींदो आहे। भारतीय प्रसारण सेवा देश जी एकता, अखंडता ऐं संस्कृतीअ सां जोड़े रखण में पंहिंजी अहम भूमिका निभाए थी। ॾिसो कीअं सभु तरह जूं भाषाऊं, संस्कृति ऐं परंपरा खे हिकु मंच ते आणे देशवासियुनि में भाईचारे ऐं राष्ट्रीय भावना खे मज़बूत करे थी। भारतीय प्रसारण सां जुड़ियल हर हिकु मेंबर खे मुंहिंजी तरफ़ सां घणी घणी महिरबानी कि युगनि खां हलंदी हिन परंपरा खे अञा ताईं ज़ीअरो रखियो आहे।

चल युगन ताईं जीअरो रखंदा। मां पाण खे बि घणी भाग्यवान समझंदी आहियां कि मां हिन प्रसारण सेवा जो हिकु नंढो सो हिसो आहियां। दोस्तों, इन्हीअ खां पोइ ॿुधूं था भगवंती नावाणीअ जो ही सुहिणो गीतु।

0: दोस्तों आज असांजे आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद आहेन कवियत्री भारती आसदानी जी। दोस्तों कविताऊं सिर्फ कागरन ते लिखियल अखर न आहेन बल्कि भाव आहेन जेके बोलिए सा त झलकंदा आहेन पर चेहरे जी सुंदरता खे भी बयां कंदा आहेन। अहिड़ी आहे असांजी मन मोहिनी भारती आसदानी जी, जिन जो कविताऊं त सुंदर आहेन पर उन्हनि जी कविताउनि जा भाव पूरे दिल ताईं पहुचंदा आहिनि। त अचो ॿुधो था उन्हनि जूं सुहिणियूं कविताऊं।
1: मुंहिंजी पहिरीं कविता, जीअं सावण जो आगाज़ थी चुकियो आहे त मां शुरू थी कयां हीअ कविता। अंदरि मींहुं ॿाहिरि मींहुं, छा राति ऐं छा ॾींहुं। अंदरि मींहुं ॿाहिरि मींहुं, छा राति ऐं छा ॾींहुं। घुग जी चादर में अखड़ियुनि खे, घुग जी चादर में अखड़ियुनि खे बकरी बि ॾिसिजे थी शींहुं, बकरी बि ॾिसिजे थी शींहुं। अंदरि मींहुं ॿाहिरि मींहुं, छा राति ऐं छा ॾींहुं। गप चिक घर घिटियुनि में, गप चिक घर घिटियुनि में, तिरकनि पेर किथे वञी बीह, तिरकनि पेर किथे वञी बीह। ऐं अंदरि मींहुं ऐं ॿाहिरि मींहुं, वण टण थिया सभु सावा सावा, वण टण थिया सभु सावा सावा। कोयल कुहिके ॻाए पपीहो पीह पीह, कोयल कुहिके ॻाए पपीहो पीह पीह। सचो नातो रुगो रूह जो रब सां, सचो नातो रुगो रूह जो रब सां। भारती लॻाए बस उन सां नीहु, बस उन सां नीहु। अंदरि मींहुं ऐं ॿाहिरि मींहुं। इन तारतम्य में मुंहिंजी ॿी कविता जो शीर्षक आहे विश्वास, जेके सिंधीअ में चई सघबो आहे वेसव। त माण्हूअ जो माण्हूअ ते मथां वेसव घटियो, माण्हूअ जो माण्हूअ जे मथां वेसव घटियो, तॾहिं त दर पैदा थिया, तॾहिं त दर पैदा थिया। पर वेसाव जे ॻोड़नि खे अञा शह मिली, पर वेसाव जे ॻोड़नि खे अञा शह मिली। तॾहिं त कुर्फ ऐं कुंजियूं पैदा थिया, तॾहिं त कुर्फ ऐं कुंजियूं पैदा थिया। उन्हीअ खां पोइ बि वेसव भगीअ भर ते, उन्हीअ खां पोइ बि वेसव भगीअ भर ते। तॾहिं त सीसीटीवी ऐं कैमरा पैदा थिया, तॾहिं त सीसीटीवी ऐं कैमरा पैदा थिया। जॾहिं पंहिंजनि खे पंहिंजनि सां ॻाल्हियूं लिकाइणियूं पवंदियूं आहिनि, तॾहिं त मोबाइल जा पासवर्ड पैदा थिया। जेतिरियूं शयूं ईज़ाद थियूं आहिनि, तेतिरो वेसव घटिजंदो वियो अथव, तेतिरो वेसव घटिजंदो वियो अथव। ऐं मुंहिंजी ॿी कविता जो शीर्षक आहे नारी, नारी सशक्तिकरण हली रहियो आहे त उन ते मां पंहिंजी नई रचना आहे पेश थी कयां। नारी कुदरत जी प्यारी रचना, नारी कुदरत जी प्यारी रचना। सच हक़ीक़त न समझो सपना, सच हक़ीक़त न समझो सपना। मुरादनि जी झोली आहे नारी, मुरादनि जी झोली आहे नारी। अविरल मिठड़ी ॿोली आहे नारी, मुरादनि जी झोली आहे नारी। अविरल मिठड़ी ॿोली आहे नारी। महराब जो विच जो पथर, महराब जो विच जो पथर। न थके न बीहे सदा हले निरंतर, न थके न बीहे सदा हले निरंतर। प्यार जो दर्पण आहे नारी, प्यार जो दर्पण आहे नारी। पंहिंजो ॾे थी समर्पण नारी, पंहिंजो ॾे थी समर्पण नारी। ऐं भावनाउनि जो भंडार आहे नारी, भावनाउनि जो भंडार आहे नारी। आदर ममता किथे प्यार आहे नारी, आदर ममता किथे प्यार आहे नारी। कर्तव्यनि जी कमान आहे नारी, कर्तव्यनि जी कमान आहे नारी। सर्व सुखनि जी खान आहे नारी, सर्व सुखनि जी खान आहे नारी। हाणे मां पीउ जे मथां हिकु रचना, इन सां कुझु धीउ जी मतिलबु भावनाऊं गॾु लाइन पेश थी कयां। पीव पत्थर जहड़ो मजबूत, पीव पत्थर जहड़ो मजबूत, मुंजा जज्बात नरम ए कोमल, मुंजा जज्बात नरम ए कोमल, मुझे हथन में तुझो बल, मुझे हथन में तुझो बल। मुसीबत कदें न इंदी ओरे, मुसीबत कदें न इंदी ओरे, पारखी नजर सुनाणी कपट ए छल, पारखी नजर सुनाणी कपट ए छल। रग रग में वहे दरिया हिम्मत जो, रग रग में वहे दरिया हिम्मत जो, जिए वहे झरनो कल कल, जिए वहे झरनो कल कल। औखा पंध न सहजी मंजिल, औखा पंध न सहजी मंजिल, तुझो वजूद ठयो मुझो संभल, तुझो वजूद ठयो मुझो संभल। डीह रातियों गणतिन में कटजन, एकड़े पीव जी भावना। डीह रातियों गणतिन में कटजन, खुशी जी खोराक लाए घोरे पल पल, खुशी

0: जी खोराक लाए घोरे पल पल कुछ हथन जो लकीरियों उन जे मथा मुझा भाव आइन चंद पंक्तिन जे मथा इन के कें भी रूप में ता खणी ता सगो लकीरू लकीरन के सहजो न समझो लकीरन के सहजो न समझो जे निरड़ जी लकीर त कें चिंता में वेठो आ जे निरड़ जी लकीर त कें चिंता में वेठो आ हथन जी लकीरन सा भाग केतरो थो वरे हथन जी लकीरन सा भाग केतरो थो वरे यो पतो थो पए ए पट जी लकीर त धुर खां धार थी करे छॾे पट जी लकीर त धुर खां धार थी करे छॾे ऐं दिलि जी लकीर त माना रिश्ता ई फिटाए थी छॾे माना रिश्ता ई फिटाए थी छॾे इश्क ॾाढी सुहिणी रचना आहे मोकिलियो गुलाब तूं किताब में लिकाए मोकिलियो गुलाब तूं किताब में लिकाए सांढे रखियो मूं ख़्वाबनि ऐं ख़्यालनि में सांढे रखियो मूं ख़्वाबनि ऐं ख़्यालनि में दीवानगीअ जी हद ताईं चाहे कोई दीवानगीअ जी हद ताईं चाहे कोई ख़ुशबूअ खे समेटियो हेल ताईं रुमाल में ख़ुशबूअ खे समेटियो हेल ताईं रुमाल में जवाब था घुरनि ताना ॾेई ॾेई जवाब था घुरनि ताना ॾेई ॾेई मुंहिंजी आहे दिलि हाणे कहिड़े सुवाल में मुंहिंजी आहे दिलि हाणे कहिड़े सुवाल में दिलि जी दरिया खां ॿाहिरि वञी बीठे दिलि जी दरिया खां ॿाहिरि वञी बीठे छा बिगाड़ींदो ज़मानो हाल ॿुधाइण में छा बिगाड़ींदो ज़मानो हाल ॿुधाइण में दिलि जो सुकून हो चपन ते हिकु मुश्क दिलि जो सुकून हो चपन ते हिकु मुश्क जीअं तरकश में तीर देरि कहिड़ी हलाइण में देरि कहिड़ी हलाइण में ऐं ॿ पंक्तियूं आख़िरी ध्यानु चाहींदमि लहरुनि सां दोस्ती साहिल भले करे लहरुनि सां दोस्ती साहिल भले करे पर मूंखे रहणु ॾे भारती पंहिंजे ई हाल में पर मूंखे रहणु ॾे भारती पंहिंजे ई हाल में पंहिंजे ई हाल में ऐं मुंहिंजी हिकिड़ी प्यारी कविता जेका मां हींअर तरोताज़ा लिखी आहे अकेलो हल भई साण त सभु हलंदा आहिनि न कॾहिं चइबो आहे न जीअं बंगालीअ में एकला चलो रे कोशिशि कई आहे अकेलो हल काफ़िलो न ॻोल अकेलो हल काफ़िलो न ॻोल भीड़ में दुश्मन बेशुमार हूंदा भीड़ में दुश्मन बेशुमार हूंदा वक़्तु सुठो हुजे त रिश्ता हज़ार हूंदा वक़्तु सुठो हुजे त रिश्ता हज़ार हूंदा ॿिनि चइन खे छॾ माण्हू क़तार हूंदा ॿिनि चइन खे त छॾ माण्हू क़तार हूंदा भरम भोला न पाल भरम भोला न पाल सभु पंहिंजा ई आहिनि भरम भोला न पाल सभु पंहिंजा ई आहिनि काईअ खे बि अॻियां कंधा चार ई हूंदा काईअ खे बि अॻियां कंधा चार हूंदा मौका परस्त माण्हू ज़माने जी रीति आहे मौका परस्त माण्हू ज़माने जी रीति आहे हर ॻाल्हि ॿुधण वारा मथे जा बुखार हूंदा हर ॻाल्हि ॿुधण वारा मथे जा बुखार हूंदा ऐं आख़िरी ॿलाइ न शर्म हया जी चादर कीअं बचाए भारती शर्म हया जी चादर कीअं बचाए भारती गुरबत में तन जा कपिड़ा ई तार तार हूंदा तार तार हूंदा
1: घणी घणी महिरबानी तव्हांजी भारती जी तव्हां असांखे हेॾियूं सुहिणियूं कविताऊं ॿुधायूं जीअं मां स्टूडियो में तव्हांजो कविताऊं ॿुधी हेतिरो गदगद थी आहियां मां उमेद थी कयां त असांजा श्रोता बि ॿुधी करे ओतिरा ही गदगद थींदा घणी घणी महिरबानी तव्हांजी दोस्तो हाणे हिकु अहिड़े देशभक्त ऐं महान क्रांतिकारीअ जी ॻाल्हि कंदासीं जिन असांखे आज़ादी ॾियारण में सभिनी खां वॾो योगदान ॾिनो आहे चंद्रशेखर आज़ाद जिन जो जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश जे भावरा गांव में थियो नंढपण खां ई हुननि में देश प्रेम।

0: जी आजादी लाए संघर्ष कयो। हुनन पेंजी बहादुरी नेतृत्व त्याग सा घणन युवाओं के देशभक्ति जे रस्ते ते हलण जी प्रेरणा दिनी। 27 फरवरी 1931 ते इलाहाबाद जे अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज पुलिस उनन के घेरियो। वीर आजाद आखिरी गोली पेंजे मथे ते हणी पेंजो वचन निभायो ए अंग्रेजन जे हथ जिंदो न आया। हुनन जो कयल बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो अमर अध्याय आहे। चंद्रशेखर आजाद जी जयंती असां के देश प्रेम साहस त्याग ए पेंजी मातृभूमि लाए कुर्बान थियण जी प्रेरणा दे थी। असा के भी उन्हें आदर्शन ते हलण जो संकल्प वठन घुर्जे ए देश जी एकता लाए ईमानदारी से कम करण घुर्जे। दोस्तों इन्हीं खां पोए बुधु तो एक सुहणो गीत ए पेशकश कई आहे लतिका सेन सतराम रोहिड़ा ए साथी।
1: मिले कदम सा कदम।

दोस्तों असां पंहिंजे भारत देश जी ॻाल्हि कयूं त हिते वीर जांबाज जी कमी कान्हे। अहिड़ा जांबाज थी गुज़रा आहिनि जिन शहीद थी करे पंहिंजे देश खे आज़ादी त ॾिनी पर देश खे खुशहाली बि ॾिनी। कीअं बहके थो असांजो देश, अॼु बि उन्हनि जी शहादत खे ओतिरो ई यादि थो कयो वञे। इन शहीदनि में हिकु ॿियो नालो आहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जंहिंजो जनम 23 जुलाई 1856 ते महाराष्ट्र जे रत्नागिरी शहर में थियो। हिंदुस्तान जे आज़ादी आंदोलन में हुननि जी ख़ासि भूमिका रही। हुननि खे भारतीय असंतोष जो जनक ऐं लोकमान्य यानी जनता पारां मान्य नेता जो सम्मान मिलियो। हुननि जो नारो हो स्वराज मुंहिंजो जन्म सिद्ध अधिकार आहे ऐं हिन खे हासिलु कंदासीं।

अॼु बि हर कोने में गूंजजंदो आहे। हर देशवासीअ खे उन्हनि जे नारे खे चवंदे अॼु बि उहो जज़्बो जाॻंदो आहे। उहे हिकु महान पत्रकार बि हुआ। उन्हनि केसरी ऐं द मराठा नाले जा समाचार पत्र बि शुरू कया। लोकमान्य शिक्षा, समाज सुधार ऐं राष्ट्रभक्ति जी प्रेरणा ॾिनी। उन्हनि गणेश उत्सव ऐं शिवाजी उत्सव खे सार्वजनिक रूप ॾेई देशवासियुनि में एकता ऐं देश प्रेम जो भाव जॻायो। उन्हनि जो विश्वास हो त शिक्षा ही समाज ऐं राष्ट्र खे अॻियां वधाइण जो हिकु आधार आहे। हुननि खे अंग्रेज़ सरकार जेल में बि विधो, पर उन्हनि कॾहिं बि पंहिंजी देशभक्ति ऐं संघर्ष खे न छॾियो। जेल में रहंदे बि उन्हनि प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य लिखियो, जंहिं कर्म, कर्तव्य ऐं राष्ट्र सेवा जो संदेश ॾिनो। अॼु जे युवाउनि खे बि उन्हनि जे आदर्शनि ते ज़रूरु हलणु घुरिजे ऐं देश जी सेवा में हरदम अॻियां रहणु घुरिजे। त दोस्तो, इन्हीअ खां पोइ ॿुधूं था महेश चंदर जो ॻायल ही सुहिणो ऐं प्यारो गीतु।

दोस्तों हाने वक्त थियो आए अज जे कार्यक्रम के पूरो करण जी दींदा इजाजत पेंजी रेडियो साथी जानवी भावनानी के उम्मीद आए तो तमा के यो कार्यक्रम वण्यो होंदो तमा पेंजा राया पेंजे खतन जरिए असा के आकाशवाणी ते मोकलिंदा या असा जे फेसबुक पेज ते भी पोस्ट कंदा मिलू था एक नई खुशी सा एक नई उम्मीद सा एक नए कार्यक्रम सा सब जो भलो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है, डीटीएच के ऑडियो चैनल पर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मुंशी प्रेमचंद ने कहा, जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं, आपका कोई राष्ट्र भी नहीं।
2: पानी की हर बूंद है अनमोल,
3: बहने ना दें इसे बेमोल।
2: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
3: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।
4: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे हैं DTH पर हमारा प्रसारण। शाम के 4:30 हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं संग्रहालय से कार्यक्रम कामिनी काय कांतारे।
5: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का चौथा भाग।

0: अभी तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महल छोड़कर चले जाते हैं। वृक वन में एक अपरिचित उनसे उनके प्रिय अश्व नीलमणि को लेकर चला जाता है। नीलमणि घायल अवस्था में आचार्य नागदत्त के सेवाश्रम में पहुंच जाता है, जहां उसका उपचार होने लगता है। राजा गांव पैठार पहुंचते हैं, जहां के भोले भाले ग्रामीण उनसे महादेव शंकर के किरात रूप की कथा सुनाने का आग्रह करते हैं।
1: अवंती की कड़वी मीठी स्मृतियों के साथ राजा भर्तृहरि अभी राजधानी से 30 कोस दूर वनांचल के उसी गांव में हैं, जहां वो भटकते हुए पिछली रात पहुंचे थे। कोई भी ये नहीं चिन्हता कि वो अवंती नरेश राजा भर्तृहरि हैं। वनवासियों ने पहले उन्हें प्रेत समझा, और जब ये जाना कि वो एक रात भयानक वृकवन में व्यतीत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो भोले भाले ग्रामीण जनों ने उन्हें एक दिव्य पुरुष देवता की प्रतिष्ठा दे दी। गूढ़ छद्मवेशी नरेश ग्रामीणों के आराध्य बन गए थे। वही मान सम्मान, उसी तरह उनसे शुभ की अपेक्षा और उनकी अभ्यर्थना। बालक वृंद गांव में मुनादी करता है कि देवता किरात कथा कहेंगे। तभी वृंदा वीरभद्र का परिचय कराती हैं कि ये वीरभद्र हैं, इस ग्राम के ग्रामीणी और सभी के पितृतुल्य, संरक्षक और अभिभावक।
2: प्रणाम करता हूं देव।
3: महाकाल आपकी रक्षा करे।
2: हमारे पूर्वजों का पुण्य उदय हुआ महाराज, कि आपने अपनी चरण धूलि से इस गांव को पवित्र किया है। हम वनवासी आपके सत्कार के योग्य नहीं है महाराज, अकिंचन भला क्या कर पाएंगे आपकी सेवा।
3: मैं इसका पात्र नहीं हूं भद्र।
2: ऐसा न कहें आर्य, आपके शुभागमन से पूर्व अंचल में धाराधार वृष्टि हुई है। क्या ये आपके पधारने का संकेत नहीं था? समृद्धि और सुख का प्राकृतिक संकेत है प्रभु।
3: निष्कलुष भावनाएं अपनी मूर्तियां सहज ही गढ़ लेती हैं वीरभद्र।
2: वृंदा बहू ने बताया है कि आप महादेव शंकर के किरात रूप की कथा सुनाएंगे। हम इसीलिए यहाँ एकत्र हुए हैं। कथा श्रवण के पश्चात ही हम लोग आहार ग्रहण करेंगे। देव हमें कथा प्रसाद देने की कृपा करें।
1: भर्तृहरि असहाय से किसी अदृश्य के इंगित पर एक नई काया, नई भूमिका में प्रवेश करते जा रहे थे। पीछे कहीं छूट गई राजधानी अवंतिका के दैनिक क्रम में ये उनके आमोद प्रमोद का समय है। वो इसे काव्यशास्त्र के विनोद या नृत्य संगीत में व्यतीत करते हैं। कभी कभार इस क्रम में राजकीय कारणों से ही परिवर्तन होता है, जैसे किसी सामान्य अतिथि का आगमन, राज्य दायित्व के लिए उत्पन्न कोई आकस्मिक परिस्थिति, दस्युदल का उत्पात या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान में नरेश की उपस्थिति। महामात्य वो प्राचीर हैं ही जो किसी भी झंझावात को नरेश तक पहुंचने के पूर्व रोक लें। भर्तृहरि ने नेत्र बंद कर देवाधिदेव का ध्यान किया।

0: चतवर पर स्तब्धता छा जाती है। मात्र लौ बनाए रखने के लिए जलती हुई वसा की चटपटाहट और वटपत्रों की पटपट ही मुखर हो रही है। भर्तृहरि की वाणी में जाने कहां से कोई पवित्र गंभीरता आ जाती है। वो कहते हैं,
1: देवियों और सज्जनों, भगवान भूत भावन के प्रसाद से मैं उस कथा को कहने का साहस कर रहा हूं जिसमें यथोचित गति नहीं है मेरी। देवी वृंदा का आग्रह, आप सभी की उत्सुकता, अनुग्रह, तपस्थली सा ये वन प्रांतर और तीर्थ जैसा ये पवित्र चत्वर, सभी कुछ पुण्य कथा कहने और सुनने का संयोग उपस्थित करता है। कृपया श्रवण करें। ये उस समय की बात है जब पराक्रमी पांडव गंधमादन पर्वत पर स्वाध्याय में समय बिताते हुए श्वेत वाहन अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो इंद्र के आमंत्रण पर कई दिनों पूर्व इंद्रलोक गए हुए थे। तभी इंद्र के सारथी मातली द्वारा संचालित हरे रंग के अश्वों से जुता देवराज इंद्र का रथ प्रकट हुआ, जिसमें किरीटधारी अर्जुन स्पष्ट दिखाई दे रहे। अर्जुन को उतारकर अभिनंदित मातली स्वर्गलोक वापस हो गए। दूसरे दिवस प्रातःकाल अंतरिक्ष में देवों के वाद्यों की तुमल ध्वनि गूंज।

0: प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य है।
1: ब्राह्मण ने अर्जुन को तपस्या का आश्रय लेने का मार्ग बताया। मनोरथ सिद्ध करने का यही उचित मार्ग है। इस प्रकार विप्र के निर्देश को शिरोधार्य करके अर्जुन हिमालय पर्वत पर चढ़कर तपस्या में लीन हो गए। दिन पर दिन व्यतीत होने लगे। इस प्रकार 5 महीने निकल गए। एक दिन अर्जुन के निकट एक वन्य शूकर प्रकट हुआ, जो अपने थूथन से पृथ्वी पर प्रहार करता और पैरों और दांतों से उसे खोद रहा था। शूकर के पीछे पीछे एक किरात वेशी महान दर्शनीय पुरुष भी आ रहा था, जो शूकर पर लक्ष्य साधने की मुद्रा में था। उसके साथ अनेक स्त्रियां भी थीं। अर्जुन ने आक्रमण के लिए उद्यत पशु पर बाण से प्रहार किया, साथ ही किरात ने भी अपना तीर शूकर पर छोड़ा, जो उसे भेद गया। किरात ने कहा,
2: वत्स, यह शूकर मेरा लक्ष्य बन चुका था, फिर तुमने आखेट के नियमों को तोड़कर उस पर प्रहार क्यों किया? मुझे तुम्हारा दर्प तोड़ना ही पड़ेगा। बस
1: ये कहते हुए किरात ने बाणों की वर्षा करके अर्जुन को ढक दिया। अर्जुन ने भी अग्निमुखी अभिमंत्रित बाणों से सटीक प्रत्युत्तर दिया। किरात शास्त्र रूपों में प्रकट हुआ। अर्जुन ने सभी रूपों पर बाण बरसाए। फिर किरात के शास्त्र रूप मिलकर एक हो गए। अर्जुन ने उस पर भी बाण चलाए। अब किरात ने माया युद्ध आरंभ कर दिया। कभी उसका शरीर छोटा हो जाता, कभी विशाल, कभी लुप्त होकर प्रकट होता, तो कभी यहां वहां दृष्टिगोचर होने लगता। अर्जुन ने अपने प्रहार नहीं रोके। अंत में किरात अपने सहज शरीर में सामने था। तब कुंती पुत्र ने महान वायव्यास्त्र का संधान किया।
2: देखा बस, यह भी मुझ पर निष्प्रभावी रहा है।
1: अर्जुन ने क्षुब्ध होकर अपने सभी सुविख्यात शस्त्रों, तारुणास्त्र, शालभास्त्र, वर्षास्त्र आदि का भीषण प्रहार किरात पर किया।
2: हे अर्जुन, तेरे ये सभी शस्त्र मुझ पर अप्रभावित हैं।
1: अर्जुन का आत्माभिमान और दर्प छार छार हो रहा था। उनकी युक्तियां और अस्त्र दोनों ही उस अज्ञात किरात के सम्मुख व्यर्थ हो रहे थे। तब झुंझलाए हुए अर्जुन ने अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अपने तेज से दिशाओं को विदग्ध करता हुआ वो अस्त्र अत्यंत तीव्रता से प्रभु विष्णु किरात की ओर चला। आकाश प्रज्वलित हो उठा, हवाएं ठहर गई।
2: किंतु अर्जुन, देख, मैंने तेरे इस महातेजस्वी ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया है।
1: अब उद्भट अर्जुन और किरात में मल्ल युद्ध होने लगा। कुंती पुत्र विवश था, थकान से निश्चेष्ट होकर वो गिर पड़ा और वो प्रबल किरात हंसकर देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो

0: देवियों और सज्जनों, वास्तव में वो भगवान शंकर थे। माहेश्वर ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप ग्रहण किया था। नमोस्तु काल रुद्राय काल रूपाय ते नमः। अर्जुन ने जब चैतन्य होकर शीश उठाया तो उमा सहित साक्षात वृषभध्वज को सामने पाया। आश्चर्यचकित अर्जुन से वे कह रहे थे,
1: हे परमता, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से प्रसन्न हुआ। वास्तव में तुम दिव्यास्त्र प्राप्त करने के पात्र हो। अपनी इच्छा प्रकट करो, बस अमरत्व के अतिरिक्त

0: जो भी चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा।
1: अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं देवों के दिव्यास्त्रों का ज्ञान पाने का अभिलाषी हूं।
0: हे पांडुपुत्र, मैं तुम्हें अपना महान पाशुपत अस्त्र प्रदान करता हूं। यह ऐसा विराट अस्त्र है वस्त्र कि देव दानव या राक्षस किसी के लिए भी इसका वेग सहन कर पाना संभव नहीं। निकष्ट को घायल करने वाला वीर नहीं होता है बस, जिसका स्वामी अक्षत है ऐसा अक्षत व्यक्ति भी अक्षत ही है। अत्यधिक घायल पर वार करने वाला भी दोषी होता है बस।
1: अर्जुन के देखते देखते भगवान शिव पाशुपत अस्त्र अर्जुन को देकर अंतर ध्यान हो गए।

0: हमने ग्राम त्यागने का विचार किया। घास कांस बांस की झोपड़ी मिट्टी की मड़ियों और सूखे खेतों के सिवा हमारे पास था ही क्या आज छोड़ जाने को। किंतु इस सब के पश्चात भी ये राय बनी कि पलायन से प्रतिरोध अधिक श्रेयस्कर है। प्रतिरोध कम से कम अगली पीढ़ियां हमें अपने पूर्वजों को कायर तो नहीं कहेंगी ना।
1: वीरभद्र का मुखमंडल आत्मदर्प से आलोकित हो रहा था।
2: हाँ हाँ मुखिया, कहते जाओ ताकि जान सकूं कि राजा भर्तृहरि किस किस संग्रह पर असफल है।
0: नहीं महाराज, नहीं, राजा भर्तृहरि तो ये मान रहे हैं कि अवंती का पुण्य समृद्ध है, राजन्य राजसेवक संतुष्ट हैं। तो मैं अपने ग्राम के बारे में कह रहा था महाराज। दस्यु दल तो नहीं, तीसरे चौथे दिवस राज्य कर उगाने अश्वारोही राजकर्मी आ पहुंचे। हमने उन्हें राज प्रतिनिधि मानते हुए दुर्दिनों के लिए सहज कर रखा अन्न उनके सत्कार में लगाया, मदपान की इच्छा पूरी की और निवेदन किया कि अकाल की साल में जीवन बचाए रखना ही कठिन है, राज्य बलि भरने की सामर्थ्य ही कहाँ बचती है। मैंने अपने श्रम से और अपनी धरती माता के प्रसाद से घास तृण बांस मिट्टी पत्थर आदि लेकर यह ग्रह बनाया, तो इस पर कर दूं।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल जिले के जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। अब सोमवार से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में इसे सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। सदन का मानसून सत्र कल से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा आज संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। विरोध दर्ज कराने के बाद विभिन्न दलों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मानसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए छतरपुर और पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। योगदान है आकाशवाणी शिवपुरी का।

कार्यक्रम युवानी में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मानवी श्रीवास्तव। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे बेहद रोचक बातें। हमारी आज की बात का विषय रहेगा बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस पर जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही जीवन आलोक में हमारा आज का विषय रहेगा ज्ञान की प्रथम कुंजी है हमारा समाज। क्रम वार्ता के अंतर्गत सुनेंगे कुछ जरूरी बातें। इस वार्ता का विषय रहेगा प्रफुल्लित मन स्वस्थ तन। वार्ताकार होंगी कुमारी जया जैन। साथ ही कार्यक्रम में सुनेंगे मनोरंजन के लिए कुछ मधुर गीत। दोस्तों, भारत के आर्थिक इतिहास में 19 जुलाई का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन वर्ष 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस निर्णय ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को एक नई दिशा दी और बैंकिंग सेवाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके पश्चात 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य केवल बैंकों का स्वामित्व सरकार के हाथों में लेना नहीं था, बल्कि देश के आर्थिक संसाधनों का उपयोग जन कल्याण, ग्रामीण विकास, कृषि, लघु उद्योग, शिक्षा तथा सामाजिक न्याय के लिए करना था। इसी ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। बैंक राष्ट्रीयकरण के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई गईं। सरकार चाहती थी कि देश की जनता की बचत सुरक्षित रहे और उसी बचत का उपयोग राष्ट्र के विकास कार्यों में किया जाए। इसके साथ ही आर्थिक असमानता को कम करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी इसके प्रमुख उद्देश्य थे। आज के आधुनिक युग में बैंक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं। डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI, ATM तथा ऑनलाइन भुगतान जैसी सुविधाओं ने बैंकिंग को अत्यंत सरल और सुविधाजनक बना दिया है।

जिनके माध्यम से आम जनता के लिए ट्रांजैक्शन करना या किसी योजना का लाभ उठाना बेहद सरल और सुविधाजनक हो गया है। वर्तमान समय में बैंकिंग क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। वर्तमान समय में हमें बैंकिंग क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बढ़ते साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी इत्यादि वित्तीय जोखिमों से हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। बैंक राष्ट्रीयकरण भारतीय आर्थिक इतिहास का एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय था, जिसे बैंकिंग सेवाओं को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने, आर्थिक समानता स्थापित करने तथा देश के विकास को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। आज जब भारत डिजिटल और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तब बैंकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हमें बैंकिंग सेवाओं का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, डिजिटल लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए तथा बचत और निवेश की आदत अपनाकर राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस हमें यही प्रेरणा देता है कि आर्थिक विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के प्रत्येक नागरिक तक समान रूप से पहुंचे। साथियों, चर्चा आगे जारी रहेगी, अभी सुनते हैं ये गीत। यह गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम पुजारी से। इस गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने।

0: दोस्तों, अभी आपने यह प्यारा सा गीत सुना फिल्म प्रेम पुजारी से। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस पर। खेल किसी भी राष्ट्र के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। इन्हीं खेलों में फुटबॉल विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। भारत में भी फुटबॉल के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। इसी खेल के महत्व को समझने, युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने तथा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस खिलाड़ियों के संघर्ष, अनुशासन, टीम भावना और खेल भावना का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है। साथियों, फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसे दो टीमों के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और उनका उद्देश्य गेंद को विरोधी टीम के गोल पोस्ट में पहुंचाकर अधिक से अधिक गोल करना होता है। यह खेल तेज गति, रणनीति, सहयोग और शारीरिक क्षमता का अद्भुत संगम है। भारत में क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, मणिपुर, मिजोरम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में फुटबॉल को विशेष महत्व प्राप्त है। स्कूलों, महाविद्यालयों और खेल अकादमियों में युवाओं को फुटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, फुटबॉल युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क की भावना विकसित करता है। फुटबॉल खेलने से शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है और शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। यह खेल हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाता है, सहन शक्ति बढ़ाता है तथा मानसिक तनाव को कम करता है। फुटबॉल खिलाड़ियों में आत्मविश्वास, अनुशासन, समय का महत्व, निर्णय लेने की क्षमता और नेतृत्व के गुण विकसित करता है। टीम के साथ खेलते समय सहयोग, आपसी विश्वास और जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होती है। यही गुण जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता दिलाने में सहायक होते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी जैसे फेमस फुटबॉलर के नाम तो आपने सुने होंगे। हमारे देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर जैसे सुनील छेत्री ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। आज इस विशेष राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक जरूरी वार्ता जिसका विषय है प्रफुल्लित मन, स्वस्थ तन। इसकी वार्ताकार है कुमारी जया जैन।
1: सुन के आवाज लगाती है तुझे, नींद से कब से जगाती है तुझे, दे रही राह पर दस्तक कब से, जिंदगी कब से बुलाती है तुझे। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत अनमोल है और इस अनमोल जीवन को हम सही दिशा देकर अपने देश की प्रगति में समर्पित करें तो हम अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में कुछ योगदान दे सकते हैं। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश की गौरव गाथा के पन्नों को पलटें तो हम युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना को जागृत कर सकते हैं। स्वतंत्रता के मिलने के बाद बहुत कुछ बदला, मगर दिलों में देश के प्रति समर्पण भावनाएं ना बदली और ना बदल सकती हैं। एक नए भारत के निर्माण की तैयारी में हम युवा अपने पूरे जोश में हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी इच्छा शक्ति के साथ साथ आगे बढ़ने पर जोर जारी है। नए विचारों, नए इंसानी रिश्तों, नए सामाजिक संगठनों, नए रीति रिवाजों और जिंदगी की नए हवाओं के साथ आज़ाद मुल्क की ऐसी गाथा लिखी जा रही है जिससे राष्ट्र मजबूत होने लगा है। इस नव निर्माण में हम युवा अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित

करवा रहे हैं, पर इस दिशा में हमें पहले अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाना होगा। प्रफुल्लित मन स्वस्थ तन। आज के संदर्भ में हम अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा केंद्रित हैं और इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखने की इस दौड़ में हम अपने मन में एक भय, एक डर को भी जगह दे रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम हर हाल में स्वस्थ रहें, तो हमें अपने मन को, अपने सोच को भी स्वस्थ रखना होगा। दोस्तों, हम अपने इस व्यवहार से किसी के लिए रोल मॉडल भी बन सकते हैं और अपना भविष्य भी सुधार सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए शरीर को स्वस्थ और मन को प्रफुल्लित रखना बहुत आवश्यक है। स्वस्थ रहने का अर्थ रोग रहित तन का होना ही नहीं, बल्कि तनाव मुक्त मन का भी होना है। यदि आपका मन अस्वस्थ है, यहाँ मन का अस्वस्थ होने का मतलब तनाव, चिंता, बेवजह की परेशानी से है, यानी आपका मन चिंताओं से घिरा है, तो यह आपके शरीर को भी अस्वस्थ करता है। इस चिंतित मन की दशा में आप कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे। मन की यह उथल पुथल आपको दिनचर्या को भी प्रभावित कर सकती है। किसी कार्य में मन ना लगने से कार्य भी समय पर नहीं हो पाता है। आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप चिंतित होते हैं तो आपका मन विचलित रहता है, ना तो आप समय पर भोजन करते हैं, ना समय पर सोते हैं, और आपकी पूरी दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। मानसिक तनाव धीरे धीरे शारीरिक स्वास्थ्य को भी कमजोर कर देता है। ऐसे में ज़रूरी है जितना हम अपने तन के

करते हैं, ना समय पे सोते हैं और आपकी पूरी दिनचर्या प्रभावित हो जाती है। मानसिक तनाव धीरे धीरे शारीरिक स्वास्थ्य को भी कमजोर कर देता है। ऐसे में जरूरी है जितना हम अपने तन के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं उतना ही मन के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर रहें। तो इसके लिए क्या करें कि

वार्ता आपने सुनी, जिसका विषय था प्रफुल्लित मन स्वस्तन। इसकी वार्ताकार थी कुमारी जया जैन। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले विषय की। मनुष्य प्रकृति ने सोचने, समझने और सीखने की अद्भुत क्षमता प्रदान की है। जन्म के समय वह ना तो भाषा जानता है, न व्यवहार, और ना ही जीवन जीने की कला। धीरे धीरे वह अपने परिवार, पड़ोस, विद्यालय और समाज के संपर्क में आकर ज्ञान अर्जित करता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल उचित है कि ज्ञान की प्रथम कुंजी है हमारा समाज। समाज ही वह आधार है जहाँ व्यक्ति जीवन के प्रथम संस्कार प्राप्त करता है और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है।

दोस्तों, आशा भोसले का गाया हुआ ये गीत अभी आपने सुना। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए अपनी दोस्त मानवी श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: छोटे से अंतराल का।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पापा लाइए 3,000।
5: क्यों भाई?
4: मेरी पॉकेट मनी।
5: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
4: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो, डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
5: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ, अपने 1,000 ले जाओ,
4: अपना मोबाइल लाओ,
5: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति थी आकाशवाणी शिवपुरी की। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है

अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला और ये बहुत प्यारा संगीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सिलसिला से, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन ने। शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत निर्देशन है शिवहरी का।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म सुराग का ये बहुत प्यारा संगीत, जिसमें स्वर हैं लता मंगेशकर के। कैफी आजमी के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है बापी लहरी ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म कुर्बानी से। सुमधुर आवाजें कंचन, मनहर और आनंद की। गीत लिखा है इंदीवर ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब समय है अंतराल का।

0: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्लीज सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल जिले के जगदीशपुर में हुई कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। अब सोमवार से शुरू हो रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में इसे सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र कल से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा आज संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने वॉकआउट किया। विरोध दर्ज कराने के बाद विभिन्न दलों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया है कि वे संसद के आगामी मानसून सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए छतरपुर और पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 3रा और निर्णायक मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में खेला जा रहा है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है पॉडकास्ट श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनते हैं पद्मश्री से सम्मानित सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक आर माधवन के साथ विशेष बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रही है जया सिन्हा।
2: नमस्कार। कभी एले पैदे के मोहब्बत बने, कभी मिनले की मासूमियत, कभी रंग दे बसंती का जुनून दिखाया, तो कभी थ्री इडियट्स का सपना। तनुमेद्स मनु के मनु से लेकर रॉकेट्री के नंबी नारायणन और शैतान के रहस्यमी किरदार तक और उसके बाद धुरंधर, इनका सफर मानो हर दौर में एक नई कहानी लिखता रहा है। भारतीय सिनेमा के बहुमुखी कलाकार, अभिनेता, लेखक, निर्देशक आर माधवन को वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। स्वागत करते हैं आर माधवन का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल यही कि पद्मश्री मिला, काफी बधाइयां आई, लेकिन सबसे पहला विचार क्या आया? और आपने कहा कि ये सपनों से परे एक सम्मान आपको मिला है, ऐसा क्या है जो इस सम्मान को इतना विशेष, इतना खास बनाता है?
3: इस अवार्ड से रियलाइज किया कि एक प्रतिष्ठा तो है ही, साथ में एक जिम्मेदारी है कि भाई जो काम आप करते आ रहे हो ये तो इसकी शुरुआत है और आपसे ज्यादा उम्मीद की जाएगी, और फिर जिस मर्यादा के साथ आप आज तक रहे हो उससे ज्यादा आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट।
2: ये सम्मान एक किरदार के लिए, एक फिल्म के लिए नहीं है, ये आपके पूरे सफर के लिए है। तो जब ये खबर मिली तो ऐसे में कोई किरदार याद आया कि ये किरदार मेरा सच में बेहद खास था? और साथ ही जिस जिम्मेदारी की बात की आपने, तो अब असर आया है कुछ जब फिल्म चुनाव करते हैं या कुछ सेलेक्ट करते हैं कि अब मैं पद्मश्री हूँ, थोड़ा सा अच्छे से मुझे सेलेक्ट करना होगा क्योंकि एक जिम्मेदारी है?
3: बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, क्यों है कि सबसे पहले तो मुझे इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और कलाकार की जो जिम्मेदारी है वो सबसे सर्वोत्तम आ जाता है जब मैं कहानी सेलेक्ट करता हूँ। तो एज अ एक्टर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे पर्सनालिटी के साथ मैच करता है, मेरे बॉडी ऑफ वर्क के साथ मैच करता है। और फिर एक और फैक्टर हो जाता है कि क्या एक पद्मश्री को ऐसा एक्टिंग करना चाहिए, पर दैट्स वेरी लेट इन दी प्रोसेस। जहाँ तक सम्मान का सवाल है, ये सिर्फ जैसे कि आपने कहा बहुत फिल्मों के साथ जुड़ा हुआ ये सम्मान है, चाहे वो तमिल हो जाए या इंग्लिश हो जाए या हिंदी। मैं सिर्फ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ही ग्रेटफुल फील करता हूँ मेरे सारे लोगों के लिए जिन्होंने एक तो मुझे ब्रेक दिया और फिर इंडस्ट्री में इतने सारे रोल, एंड समाज की और मेरे ऑडियंस की जो इतने प्यार से मुझे आज तक देखते आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है, जो भी आप करते आ रहे हो उससे अच्छा ही करना होगा।
2: माधवन की एक खासियत है कि हर एक दशक में एक किरदार इनका सुपरहिट हुआ, थ्री इडियट्स एंड फिर आपने धुरंधर, वनराज। ये जो हर कोई आपसे ये सवाल पूछता है कि कैसे आप इतना रेलेवेंट रहने, हर दशक पीढ़ी को आप जोड़ा अपने से, क्या इसके पीछे का सीक्रेट क्या है?
3: हाँ, सीक्रेट तो है ही ना। देखिए, चाहे वो नंबे नारायण हो जाए या फिर आप धुरंधर ही ले लीजिए जहाँ पे अजीत डोभाल साहब का किरदार है, उस फिल्म में अगर आप देखेंगे तो संजय दत्त साहब हैं, अर्जुन रामपाल जी हैं, अपने रणवीर सिंह हैं, अक्षय खन्ना जी, ये लोग जो असली किरदार हैं उसकी तरह दिखते तो थे, थोड़ी बहुत सेम्बलेंस थी। पर अगर आप फिल्म के डायरेक्टर होते और अगर आपसे कहा जाता कि अजीत डोभाल के लिए हम माधवन को कास्ट करें, जाहिर है कि आप मना कर देती क्योंकि कोई सेम्बलेंस नहीं है। फिजिकल रिजेंबलेंस होगी तो आप एग्री करोगे ना।
2: ये माधवन की खासियत है ना, हर किरदार में
3: वो विजन है आदित्य धर की। और मैं जो कहने की मतलब ये है कि चाहे वो कास्टिंग डायरेक्टर हो मुकेश या आदित्य धर, उनका एक विजन होता है कि हाँ माधवन ये कर पाएंगे। जब उनको कॉन्फिडेंस होता है और वो ऑफर करते हैं तभी मैं ये रोल कर पाऊंगा। अगर ये रोल मेरे पास आता ही नहीं तो मैं करूंगा कैसे? तो चाहे कोई भी रोल हो जाए, वो एक जो क्रिएटिव टीम है, जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो लोग, वनराज ले लीजिए इन शैतान, बहुत मुश्किल है ना कि माधवन जैसे कैरेक्टर को कोई ये नेगेटिव कैरेक्टर दे, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कोई नेगेटिव कैरेक्टर इस खतरनाक लेवल पे किया ही नहीं था।
2: और आपने एक्सेप्ट किया, ये भी एक बड़ी बात है।
3: जो मेरे पास मौका आता है वो निडर होकर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो मेरी खासियत है बस। बट ये मौका मिलना ऊपर वाले की देना।
2: किस तरह से आपको लगता है कि इस समय जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज हैं, कंटेंट है, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, ओटीटी, आपको लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन समय है? पिछले एक दशक में आप देखते हैं एक बड़ा बदलाव मिला है।
3: जी हाँ, ओटीटी की वजह से और रील्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से हमें ऐसे नए स्टार्स मिले हैं जो पहले हमें सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से आया करते थे, उनके लिए हमें वेट करना पड़ता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई किरदार आए जिसको हम स्टार मानने लगे। पर ओटीटी की वजह से इतने कमाल के एक्टर्स आए हैं, इतने कमाल के टैलेंट हमें देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हॉलीवुड में ले लीजिए, हाल ही में रिलीज हुए दो बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म के एक्चुअल डायरेक्टर जो है वो यूट्यूब के डायरेक्टर।

0: तो वहाँ के रॉयल्टी नहीं कर पा रहे, जो चीज़ जो आजकल के यंग जनरेशन जो है वो बड़ी बड़ी फिल्में बनाने लगे हैं. इट इज़ अ फैबुलस मूव. कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है.
1: आप FDI से जुड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं युवाओं के लिए, क्योंकि एक ऑरेंज इकोनॉमी का उदय इस वक्त हम देख रहे हैं. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विजन रहा इंडस्ट्री को, अगर हम बात करें सब्सिडीज की बात करें या फिर हम बात करें ऐतिहासिक आयोजन हुआ वेव समिट का, किस तरह से देखते हैं ये जो एक सर्ज है ऑरेंज इकोनॉमी, उस लिहाज से भारतीय सिनेमा को आप कैसे देखा?
0: मुझे लगता है कि हॉलीवुड जो है वो हमेशा बहुत ही दूरदर्शक था. जो वो देश की खासियत थी, वो होने वाली जो संभावना है, जो होने वाली क्षमता है, उसके बारे में फिल्म बनाया करता था. और इस वजह से अगर हमें लगता है कि इस धरती पे कोई एलियन का अटैक हो जाए तो सिर्फ एक अमेरिकन ही जाके हमें बचा सकता है, या उनके पास ये टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं, तो उन्होंने वो पहले से प्रोजेक्ट करना शुरू किया, एक सॉफ्ट पावर को यूज़ करना शुरू किया. मुझे लगता है कि हम इस इंडस्ट्री में अभी तक अपना सॉफ्ट पावर और अपना जो हक है, जो हमने आज तक बाकी फील्ड्स में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो IT हो, चाहे वो AI हो, चाहे वो साइंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, हर्बल मेडिसिन हो, योगा हो, हर चीज में जो हमने अपने आप को मशहूर साबित किया है पूरे दुनिया में, उस जगह को हमने अभी तक क्लेम नहीं किया एज फार एज आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज कंसर्न. मुझे लगता है कि वो दिशा में हमें जाना बहुत जरूरी है. एक प्रोग्रेसिव इंडिया की जो कहानी है, एक एकम्प्लिश्ड इंडिया की, एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है, वो हमें दिखाना चाहिए, बनाना चाहिए, वो हमारे फिल्म मेकर्स को समझना चाहिए. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. हमारे किरदारों में कभी हम पहले से ही जयशंकर साहब जैसे कोई किरदार को नहीं दिखा पाए. वो आए, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, वो पूरे दुनिया में हमारे जिस तरीके से वो प्रेस वालों के साथ डील करते हैं, और वो किरदार क्यों नहीं हम पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में सोच पाए. मैं इसकी छोटी छोटी जो है बातें कर रहा हूँ. सो आई थिंक जो प्रधानमंत्री जी और ये जो नया इनका एंडेवर है बहुत ही जरूरी है. एंड जब आप ये करोगे होगा ये कि हमारे यंग जनरेशन जो है उनके लिए जो नंबर ऑफ हीरोज हैं, जो नंबर ऑफ आइडल्स हैं, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे फील्ड्स में हमें इन्वॉल्व होने का प्रोत्साहन मिलेगा.
1: एक ऐसी फिल्म है जो आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव रही, रॉकेटरी, द नाम ऑफ द इफेक्ट. कितना चुनौतीपूर्ण था निर्देशन की कमान संभालना, और ये फिल्म आपके लिए कितनी एक लाइफ चेंजिंग थी. साथ में आपने फिल्म बनाई, लेकिन आपके अंदर क्या कुछ बदल दिया है?
0: बहुत अच्छा सवाल. इस फिल्म ने मुझे जो कुछ सिखाया है वो मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं, मैंने अपने निजी जिंदगी में भी अपनाया है, क्योंकि इसके सारे जो मार्गदर्शक थे वो है मिस्टर नंबे नारायण जी, पद्म भूषण है, और उनकी कहानी इतनी कमाल की थी, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं था और वो खुद उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहे थे. ये हमारी खासियत है इंडियन की, ना, जो अपने अचीवमेंट के बारे में बात ही नहीं करना उनको ठीक लगता है. वो अपने दर्दनाक कहानी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे थे. उनसे जो मुझे 5 साल सीखने को मिला, और जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि जब आपका मन वाकई में किसी चीज़ पर लगता है, पहले आपको एक सपना आता है, फिर उसके बाद दूसरी बार जब आता है तो वो आपके लिए एक पैशन बन जाता है, और तीसरी बार तो एकदम आप उसके पीछे ही लग जाते हो और वो आपके लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है. रॉकेटरी मेरे लिए एक ऑब्सेशन बन गया था. मैंने ना आएं दिखा या बाएं, मुझे लगा था कि ये कहानी बताना ज़रूरी है, इस इंसान के बारे में बताना ज़रूरी है, और इस देश को इस इंसान के बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि हम अपने हीरोज़ को कम से कम सेलिब्रेट तो कर पाएं. तो उस दौरान मैं उस माधवन को फिर से कभी देख नहीं पाया, उस सेट पे जो एक डायरेक्टर बनकर जो इंसान था, क्योंकि मैं सिर्फ ना ही एक्टर था, मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सब कुछ था उस सेट पर, और हम 3 लैंग्वेज में शूट कर रहे थे, हर एक शॉट को 3 लैंग्वेज में करना था. तो मुझे लगता है कि जब आपका दिल किसी चीज़ पे बैठ जाता है ना, तो फिर आप सामने में जितने चैलेंजेस हैं सब छोटे लगने लगते हैं. बस आप एवरी डे काउंट करते हो, एवरी मिनट काउंट करते हो, कि मुझे आगे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना कि हम कितने दूर जाने वाले हैं और क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे बस ये देखना है कि आज मुझे क्या करना है और कितनी अच्छी तरीके से मैं कर पाऊँगा, चाहे वो एक शॉट हो जाए, चाहे वो एक सीन हो जाए, चाहे वो किसी को ब्रीफ करना हो जाए. मैं पूरे दिल से, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ करता था, फिर मैं नतीजा के बारे में सोचता था.
1: आपने बात की सॉफ्ट पावर की. आज हम देख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा को एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय सिनेमा आज दुनिया के कोने कोने में भारतीय संस्कृति, भारतीय कहानियां, भारतीय सितारों को लेकर जाती है और जोड़ती है. सिनेमा में वो ताकत है जो हमने देखा. आपकी ये फिल्म नामी की बात करें, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी सिनेमा का एक बेहद बहुत ही सशक्त रोल हो सकता है, उस लिहाज से भी ये फिल्म बहुत ही खास रही. किस तरह से युवाओं पर इसका इफेक्ट?
0: नम्बी नारायण साहब जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे वो पहले से ही रहते आ रहे हैं पिछले 40 साल से. एक हीरो थे पहले, फिर सबके आंखों के वो तारे बन गए, फिर अचानक उन्हें देशद्रोही का करार दिया गया, जिसके वजह से लोग उनके यहाँ आना नहीं जाना चाहते थे, दिवाली पे नहीं आते थे, उनको मंदिरों में अलाउड नहीं किया जाता था, और फिर इस फिल्म के बाद वो एक वापस सुपरस्टार बन गए हैं. और आज जब भी हम कोई कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो देखिए ना, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितने सारे कॉम्पिटिशन शुरू हो गए. आजकल यंगस्टर्स स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर कितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं. आज भी उनका जो इंजन आज तक फेल नहीं हुआ है. इट्स अ हाईली मोटिवेटिंग फैक्टर. और स्पेस रॉकेटरी के पब्लिसिटी के दौरान मैंने एक बात कही थी. पहले कहा जाता था कि जिस इंसान के पास हथियार और घोड़े हों तो वो राज कर सकता है पूरे दुनिया पे. फिर कहा जाता था कि जिसके पास शिप्स हो, जो समुंदर को अपने काबू में कर ले, वो दुनिया पे राज करेगा.

0: कहा जाता था कि जिनके पास एयरफोर्स हो और आसमान पर जो राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। आज ऐसा मौका आ गया है कि स्पेस के ऊपर जिसका राज है, जिसका कंट्रोल है, वही पूरे दुनिया पर राज करेगा, और वो सही है। और उस दौड़ में हम कभी पीछे नहीं रहना चाहते। इसी वजह से हमारे यंगस्टर्स को जो प्रोत्साहन मिलती है, व्हेन यू सी पीपल लाइक नंबी नारायणन और द अचीवमेंट्स ऑफ इसरो, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट।
1: कितने किरदार किए आपने? हर किरदार में एक अलग रंग माधवन का हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्या है जो आपको लगता है कि आपकी अपनी एक प्रिपरेशन है, यू नो, कि मैं इस किरदार को इस तरह से देखूं? एक विजन है डायरेक्टर का, लेकिन ये मेरा विजन, क्योंकि आज आप उस मुकाम पर हैं कि आपके पास वो एक लिबर्टी है कि मैं अपने किरदार चूज कर सकता हूं, किस तरह से उसे अपनी बात कहनी है, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज आज बदल चुका है। तो वो मैडी इफेक्ट कहाँ से आता है और कैसे आता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है ये। बहुत लोगों ने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा जो जिसके बारे में जवाब देना चाह रहा हूँ। जब भी कोई किरदार हमें मिलता है करने के लिए, चाहे वो फिक्शनल हो या रियल लाइफ पे बेस्ड हो, इतना तो तय है कि इस चेहरे में जो जेन्युइन एक्सप्रेशंस होते हैं वो लिमिटेड हैं। मैं कुछ 3-4 तरीके से हंस पाऊंगा जो मैं निजी जिंदगी में वाकई में हंसता हूँ, या मैं रो पाऊंगा जैसे निजी जिंदगी में। उसकी एक रियलिटी होती है और वो रियलिटी ही कैमरा में ट्रांसलेट होती है।
1: इतना तो मैं विश्वास नहीं करती 3-4 एक्सप्रेशन है आपके पास
0: जो ओरिजिनल नहीं। एक होता है कि आपने किरदार निभाने के लिए अभिनय किया, और एक होता है कि आपने उस पर जान फूंक दी। जब आप जान फूंकते हो उसमें, तो आपकी जो एक्सप्रेशन है वो लिमिटेड होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। तो हमें यह तय करना पड़ता है कि इस किरदार को प्ले करते समय कौन से सीन में वो जेन्युइन मैडी की एक्सप्रेशन डाल दिया जाए, ताकि वो रस जो है वो आपको लगे कि ये वाकई में ये इंसान जी रहा है। बाकी जगह मैं एक्टिंग कर सकता हूँ बाकी पूरे सीन में, पर मुझे वो चंद सीन्स या चंद शॉट्स पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें मैडी आधा आधा वनराज को कैसे डालें, या आधा मैडी या माधव शास्त्री को कैसे ले आएं, ताकि वो जेन्युइननेस के साथ वो किरदार निकल जाए, तो लोगों को वो एहसास हो जाता है कि वो रियल है। आई थिंक दैट इज द आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सा शॉट है, कौन सा सीन है जहाँ पे आपको मैडी बनना है, असली लाइफ मैडी बनना है, और कहाँ पे आपको किरदार बनना है, वो आई थिंक इज द टैलेंट दैट इज इंपॉर्टेंट दैट आई हैव।
1: ऐसा शुरू में हुआ कि मैडी इतना ज्यादा लोकप्रिय हो गया, या आपकी जो रोमांटिक हीरो या चॉकलेट बॉय हीरो थी वो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो गई कि गंभीर किरदार के लिए लोग आपको, मतलब उसको गंभीरता से लेने में समय लगा ऑडियंस को या फिल्म इंडस्ट्री को, निर्माता निर्देशकों को?
0: नहीं, देखिए अगर आप मेरी फिल्मों की फिल्मोग्राफी हिंदी में देखेंगे तो पहला फिल्म था रहना है तेरे दिल में, उसके बाद दिल विल प्यार व्यार, के बाद रंग दे बसंती, फिर गुरु, फिर हो गया 3 इडियट्स, तनुवर्ड्स मनु। तो वो एक प्रोग्रेसर ही था। मुझे एक ही टाइप की फिल्में करने का मौका नहीं मिला, हालांकि मैंने सिर्फ एक फिल्म का सीक्वल किया विच इज तनुवर्ड्स मनु। पर अगर आप देखोगे तो सारे किरदार अलग हैं। विक्रम वेदा ले लीजिए, फिर साला खड़ूस, फिर रॉकेटरी, उसके बाद शैतान, फिर दे दे प्यार दे, फिर ओटीटी में जो मेरे किरदार हैं जो कि मैंने रेलवे मैन में की है, या ब्रीद में, तो सारे सीरियस ही रहे हैं एक्चुअली। और मैं चाह रहा था कि कभी यार हल्का फुल्का रोल भी कर लूं, तो उसमें दे दे प्यार दे 2 में मुझे एक मौका मिला। उसके अलावा मुझे लगता है कि लोग गंभीर रोल में मुझे ज्यादा पसंद करते हैं।
1: सबसे ज्यादा मजा किसमें आता है आपको पर्सनली, कि आज सेट पे गए हैं, आज इसमें करने में मजा आएगा? क्या आपको लगता है कि मुझे मजा आता है सबसे ज्यादा?
0: देखिए, ये सवाल का जवाब शायद वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर। ये मजा तब आता है जब पूरे सेट में ना सारे लोग एक ही फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं।
1: द क्राफ्ट,
0: नहीं, सबकी नियत जो है वो उस एक फिल्म को बनाने की है। कभी ना लोग जुड़ जाते हैं अलग मकसद लेके, कि कभी किसी को यार फिल्म पैसों के लिए करनी है, कभी किसी को ये नाम के लिए करना होता है किसी को। पर जब एक सेट में सब कोई मिलकर एक ही किस्म की फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही फिल्म बनाना चाहते हैं, एक ही आइडिया को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि एक दोस्ती सी छा जाती है सेट पे, एक वननेस बन जाता है। तो फिर आपको ना मजा आता, बहुत मजा आता सेट पे, चाहे वो धुरंधर हो जाए, चाहे वो रंग दे बसंती हो जाए। सबको पता था कि हमें करना क्या है, कोई अपनी और अपनी दिशा पे जो है ना कहानी को ना अपनी क्राफ्ट को खींचने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी ये होता है अनफॉर्चुनेटली, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फिल्म एक ही नीयत से नहीं बनी है। तो जब सबकी नीयत सेम होती है, सब जुट के एक ही फिल्म बनाने होते हैं, तो उसका जो मजा है ना, दैट्स अनकंपेरेबल। हम अपने फैमिली से दूर रहते हैं, हम कई महीनों तक एक ही यूनिट के साथ रहते हैं, पर वो जो दूर रहने का जो दर्द है वो अच्छे सेट में होने से वो वो दर्द दूर हो जाता है।
1: जब फिल्म को लेकर आपको लगता है अलग अलग किरदार जो सारे हम सब दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किए, एंड मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा एक लकी भी रहे, या बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट रहे कि हर आपका किरदार एक कल्ट फिल्म के रूप में निकला। कैसे इतनी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा माधवन बनते चले गए?
0: जैसे कि मैंने कहा, ये किरदार मुझे ऑफर होना ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर हमें पता चलता कि कोई किरदार बन रहा है तो हम सामने से अप्रोच करें, अगर वो मौका होता तो मैं जरूर करता था, पर मैंने कभी की नहीं क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये किरदार बन रहे हैं। पर आपका जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है, वो इसलिए क्योंकि जो भी रोल हमें मिलता है करने के लिए उसे पूरे जी जान लगाकर करना ही मेरा काम। और मैं ये कभी सोच के नहीं चलता कि मेरा किरदार जो है पिक्चर के बाद लोगों को सबसे ज्यादा याद रहे। ये मेरे लिए एक्चुअली अगर मैं ऐसा अप्रोच लेके चलूंगा तो ये मेरे लिए एक हार है, ये मेरी एक मैं कहूंगा कि ग्रीडी वाला एटीट्यूड होगा जिसकी वजह से फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी एक्टर से आप पूछ लीजिए कि आप चाहते हो कि आपको इस फिल्म में बहुत नाम मिले या आपकी फिल्म को नाम मिले, तो हर एक एक्टर हमेशा कहेगा कि फिल्म को नाम मिलना चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब तक फिल्म चलेगी नहीं ना तो फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग भले ही आपकी मतलब इतनी प्रेस करें कि आपने बहुत कमाल की फिल्म की, लेकिन पर प्रोजेक्ट नहीं चली, फिल्म नहीं चली, उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता।
1: रिपीटिशन दोहराव से डर लगता है?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रिपीटिशन इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स रिपीटेड बिकॉज इट इज गुड, बट द एटीट्यूड इज टू मेक श्योर दैट द फिल्म विंस। तो अगर किसी सीन में मेरा सीन नहीं है, हीरोइन का सीन है या किसी और का सीन है जहाँ पे वो हम पे हावी हो रहे हैं, तो एज एन एक्टर मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आई शुड अलाउ देम टू बी दैट, टू पुट मी डाउन इन द सीन, टू मेक श्योर दैट द फिल्म वर्क्स। तो मैं इसी नीयत के साथ सेट पे जाता हूँ, ऊपर वाले की दुआ से आज तक वो चलता आ रहा है मेरे लिए।
1: सबसे ज्यादा किरदार आपको कौन सा याद आता है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे से कुछ ले गया, ये तो या मेरे में रह गया, ये मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा?
0: मेरे ख्याल से नंबी नारायण साहब की जो किरदार है वो धुरेंद्र, एक और फिल्म अभी कर ही रहा हूँ जो रिलीज होने वाली है जिसका नाम है जीडी नायडू, वो हमारी इंडियन एडिसन के बारे में एक फिल्म है। तो ये सब रियल लाइफ कैरेक्टर कुछ ना कुछ मुझ में छोड़ जाते हैं।
1: धुरंधर की कामयाबी को लेकर जो हिस्टेरिया हुआ या उसका एहसास कैसे है? भारतीय सिनेमा के लिए बहुत उल्लेखनीय है ये, किरदारों के लिए, सबके लिए, बॉक्स ऑफिस नंबर्स, क्योंकि कोविड के बाद जिस तरह से हम उभरने की कोशिश कर रहे थे, कितनी महत्वपूर्ण है ये फिल्म, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, एक एक किरदार को लेकर अभी तक जिस तरह से हिस्टेरिया है या लोकप्रियता है, हाउ इम्पोर्टेंट दिस फिल्म इज?
0: मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ और ये मानता भी आता रहा हूँ कि जब कोई फिल्म की रिसर्च सही होती है, जब उसके पीछे में सिर्फ पैसे कमाने की मकसद नहीं बल्कि एक कहानी को तहे दिल से कहने की जो इच्छा होती है ना, वो अगर सही रहे, उसका रिसर्च सही रहे, अगर आप दुनिया सही तरीके से बना पाओ, तो वो कभी ऑर्डिनरी फिल्म हो ही नहीं सकती। जहां तक धुरंधर का सवाल है, मुझे पता है कि हर एक इंसान, हर एक जो टेक्नीशियन है, हर एक एक्टर जो है, वो इतना इन्वॉल्व था फिल्म के साथ कि इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द कैरेक्टर फ्रॉम द प्रोफेशनल, इट वॉज दैट वेरी गुड। इसमें हकीकत से जुड़ी हुई हर चीज है, एक प्रोग्रेसिव, एक एडवांस्ड और एक एम्पावर्ड इंडिया की जो कहानी है वो अगर कहानी रहेगी तो लोग वाकई में देखेंगे। धुरंधर वॉज एग्जैक्टली दैट। और इसमें यंगस्टर्स को बहुत दिनों के बाद थिएटर में आके एक फिल्म को देखकर गर्व करने का महसूस हुआ, उनको पता चला कि हमारी जो सुरक्षा है, जो हम इतनी आसानी से हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि एक ही देश है जो एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, इर्द गिर्द घूम के बाकी सब देशों में देख लीजिए, ये हो नहीं पा रहा है। सुरक्षा की जो है सवाल जो है सर्वोत्तम है सबके दिमाग में बाकी के देशों में। सो आई थिंक टू बी एबल टू पे ओमाज एंड शो रिस्पेक्ट टू दीज पीपल, ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है और लोगों ने भर भर के थिएटर में देखा।
1: रियल लाइफ हीरोज की आप बात कर रहे हैं, आप खुद रियल लाइफ हीरो भी रियल जिंदगी में निभा चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने पद्म में भी एक बदलाव देखा, पीपल्स पद्म हमारे पद्म बन चुके हैं, जो हमारे देश के गुमनाम नायकों, अनसुने नायकों को सम्मानित कर रहा है, किस तरह से देखते हैं?
0: ये बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब कोई अपना काम बगैर किसी उम्मीद का करे, समाज के लिए जो भलाई है वो किसी उम्मीद के बगैर करे और दिल से करे, तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, उसका असर ज्यादा होता है। और इन लोगों को सम्मानित करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी एटीट्यूड को हम ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहते हैं। सबके सामने कोई भला करना या फिर उसका फोटो निकाल कर उसके लिए शय पाना, वो कुछ लोग करते हैं, चाहे वो भला करें तो अच्छी बात है, लेकिन वो शय पाने की भी इच्छा रखते हैं। पर ये जो पद्मा की जो है फिलोसफी है, मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ज्यादा सोच इसमें गया है और मुझे बड़ा गर्व है कि इस सोच के साथ पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है आज के दिन।
1: आखिरी सवाल, किसी ने समुद्र के किनारे चिल्ला चिल्ला कर कहा कि दुनिया को पागलों की जरूरत है क्या आप ये मानते हैं कितना पागलपन अभी भी मौजूद है 3 दशकों के बाद, इतने किरदारों के बाद?
0: मुझे लगता है मैं तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआत ही है, क्योंकि ये पागलपन का मतलब ये है कि जो चीज पहले से चलती आ रही है उस पे हम लोग खुश होकर उसी चीज को फॉलो करने में, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है और कभी कभार वो समाज के लिए सही नहीं होता। तो उस चीज को तोड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो किसी पागल के पास ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पागलपन मुझ में अभी भी,
1: बिल्कुल हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही रहें और मैडी लगातार हर नए किरदार के साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुछ कलाकार हिट फिल्में देते हैं, कुछ किरदारों से याद रखे जाते हैं, लेकिन बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो समय के साथ अपनी पहचान बदलते हैं और फिर भी दर्शकों के दिलों में वही जगह बनाए रखते हैं। माधवन उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक है, एक कलाकार जिसने मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी दी और अब पद्मश्री के रूप में देश ने उनके योगदान को सलाम किया है। माधवन जी, इस विशेष बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ आप

लीजिए, पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म पत्थर के फूल का ये बहुत प्यारा संगीत, जिसमें स्वर दिया है संगीत से सजाया है राम लक्ष्मण ने।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ में ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने। फिल्म है लव स्टोरी।

कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म लव से। स्वर हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रा के। शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की और संगीत है आनंद मिलिंद का।

मैंने प्यार किया। आइए श्रोताओं, अब हम आपको सुनाते हैं इस फिल्म का बेहद खूबसूरत गीत, जिसे गाया है एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। ये गीत लिखा है असद भोपाली ने और इस गीत को संगीत में बनाया है राम लक्ष्मण ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम की अंतिम पेशकश फिल्म लेकिन से, स्वर है सुरेश वाडकर की और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का। इस गीत को लिखा है गुलजार ने।

शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा

0: और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौंध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावो श्रीकृष्ण देवरायल्लू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन 3 देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जांजीबार के राष्ट्रपति और रिवॉल्यूशनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉ हुसैन अली मिवनी ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। जांजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना संविधान, राष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा और ध्वज है। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज सुबह राष्ट्रपति मिवनी से भेंट की। जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनी उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत की 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर लंबे रामेश्वरम पारद्वीप राजमार्ग का विकास करेगा। इस पर 8000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। ये राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा और राज्य के तटीय क्षेत्रों में मुख्य सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक स्थलों के बीच निर्बाध संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वायत्त संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि यह हमला जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है। ईरान ने अमरीकी हमले में हुए नुकसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में आज गत विजेता अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और निर्णायक एक दिवसीय मैच आज लंदन के लॉर्ड्स में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 46 ओवर में 2 विकेट पर 315 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:21 पर आप सुनेगा ग्राम सभा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे 7:30 सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इसमें विषय होगा बागवानी फसलों में वर्तमान कृषि कार्यमाला। विषय विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मुकुल कुमार। रात 8 कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:15 पर कार्यक्रम डगर विकास की। इसमें विषय है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। रात्रि 10 आप सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय कार्यक्रम संगीत सभा में। आज आप सुनेंगे कलाकार विदुषी बाला मणि ईश्वर का कर्नाटक गायन। कल प्रातःकालीन सभा में 7:20 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल और 8:30 कार्यक्रम सुरमई सबीरा। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर। इसमें कलाकार होंगे धर्मेंद्र मेहरा व साथी। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आईना। इसके बाद 10 आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम गीत सागर। 10:30 आप सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसमें आप सुनेंगे कमलेश तिवारी का ध्रुपद गायन। राग होगा अहीर भैरव। दिन में 11 फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

बारह बजे कार्यक्रम आपकी फरमाइश पेश किया जाएगा। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का अगला भाग। दोपहर 1 कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत का प्रसारण किया जाएगा। 2:30 पर कार्यक्रम आपकी फरमाइश पेश किया जाएगा। शाम 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे युवावाणी कार्यक्रम। प्रस्तुति होगी आकाशवाणी भोपाल की। शाम 5:33 और शाम 6:30 पर फिल्म संगीत आप सुनिएगा। 6:40 पर कार्यक्रम आजकल और इसके बाद 6:45 पर प्रादेशिक समाचार दर्शन। शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा और रात 8 संसद समीक्षा। रात 8:15 पर कार्यक्रम सुर्खियों में और 8:30 पर विधानसभा समीक्षा। रात 10 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनिएगा संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। रात 10:30 शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी में आप सुनिएगा कमलेश तिवारी का ध्रुपद गायन, राग होगा यमन। श्रोताओ, ये थे आज और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: श्रोताओं, कुछ कार्यक्रम आप पुनः सुन लीजिए। रात 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेगा संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई रिकॉर्डिंग, कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।

0: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
0: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से।
0: ये लो यार, यूपीआई ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। और छतरपुर और पन्ना जिले में आज भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल के जगदीशपुर में आयोजित बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ये विधेयक कल से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस कानून को लागू करने से पहले 2 महीने तक जनता से प्रतिक्रिया ली गई, 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और समाज के सभी वर्गों से राय ली गई। डॉक्टर यादव ने बताया कि कुल 9,58,000 सुझाव प्राप्त हुए और 93% से अधिक लोगों ने इस कानून का समर्थन किया। उन्होंने बताया कि 80% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने भी समान कानून की मांग की है। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के तहत राज्य में किसी व्यक्ति के एक से अधिक विवाह वैध नहीं होंगे। तलाक के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। महिलाओं और पुरुषों को समान वंशानुगत अधिकार प्राप्त होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण 1 महीने के भीतर कराना होगा। ग्राम स्तर तक विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा। आदिवासी समुदायों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से विधेयक का समर्थन करने की अपील की है। मंत्रिपरिषद ने 8 अन्य विधेयकों को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने के लिए भी अनुमोदन किया। एक अन्य निर्णय में प्रदेश के 73 अस्पतालों के उन्नयन को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 898,96,00,000 रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। इन संस्थाओं में 1600 नियमित कर्मचारी और 71 संविदा कर्मचारी और 560 आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बैठक के दौरान प्रदेश के 10.54 लाख किसानों के खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 1,460 करोड़ से अधिक की राशि भी अंतरित की। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का मानसून सत्र कल सोमवार से आरंभ होकर शुक्रवार 24 जुलाई तक चलेगा। सत्र को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा भवन का अवलोकन किया। इस 5 दिवसीय सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। सत्र में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप सहित अन्य मसौदे पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्षा जल की हर बूंद बचाने और देश भर में जल संरक्षण के अभियान को निरंतर गति देने के आह्वान के अनुरूप कैच द रेन अभियान 4 अगस्त 2026 तक जारी रहेगा। विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, जलाशयों की पुनर्जीवन और जल के कुशल उपयोग के लिए निरंतर प्रयास, कृषि को सशक्त बनाने, ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने और भावी पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज झाबुआ में बलराम कृषि महोत्सव के दौरान किसानों से वर्चुअली चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने तथा आधुनिक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा,
1: इसलिए मैं टमाटर की प्रोसेसिंग यूनिट, सॉस और केचप वगैरह बनाने के लिए भी और इसी के साथ साथ सोलर ड्रायर यूनिट के माध्यम से भी टमाटर को सुखाकर मूल्य संवर्धन किया जा रहा है। झाबुआ का टमाटर आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली कई क्षेत्रों में जा रहा है। 19,000 से अधिक हेक्टेयर में फल, सब्जियां, मसाले, पुष्प, औषधि फसलों का उत्पादन भी किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रशासन को पूरी तैयारी के साथ किसानों की सहायता के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए।

0: संसद के मानसून सत्र के कल से शुरू होने से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने एनसीपीआई को बैठक में शामिल किए जाने पर विरोध जताते हुए वॉकआउट किया। संसद का मानसून सत्र कल से अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने का कार्यक्रम है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से आग्रह किया कि वे संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे मानसून सत्र के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में योगदान और सहयोग करें। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद जितनी कुशलता से काम करेगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने पहली बार जापान ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सिंधु ने तीन बार की विश्व विजेता रही जापान की अकाने यामागुची को लगातार सेटों में 21-17, 21-17 से हराया। पीवी सिंधु जापान ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सिंगल्स का खिताब जीतने पर भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को बधाई दी है। उन्होंने इस जीत को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु की यह जीत देशभर के युवा खिलाड़ियों को बैडमिंटन में भाग लेने और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी। श्रीहरिकोटा से 18 जुलाई को किए गए विक्रम 1 यान के प्रक्षेपण में बालाघाट जिले के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ पटले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रक्षेपण के दौरान वे मिशन टीम के साथ मौजूद रहे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एवं उनकी टीम के साथ इसरो में कार्यरत बालाघाट के वैज्ञानिक डॉक्टर सौरभ पटले की मौजूदगी जिले के साथ प्रदेश भर के लिए गर्व का विषय बन गई। डॉक्टर सौरभ पटले की इस उपलब्धि से जिले के युवाओं में विज्ञान एवं अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति नई प्रेरणा का संचार हुआ है। प्रदेश में मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए छतरपुर और पन्ना जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के आसपास 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक टर्फ सिस्टम सक्रिय है, जिसके चलते जबलपुर ग्वालियर संभाग सहित प्रदेश के 34 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं भोपाल इंदौर उज्जैन समेत कई जिलों में मौसम सामान्य और साफ रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले के लगभग 260 श्रद्धालुओं को आज मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत हरिद्वार ऋषिकेश की 4 दिवसीय तीर्थ यात्रा के लिए विशेष ट्रेन द्वारा रवाना किया गया। शिवपुरी में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छोटे बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से विद्यालय से जोड़ने को लेकर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। कृषि विभाग ने छतरपुर जिले के सभी किसानों से समय रहते अपनी फसलों का बीमा कराने की अपील की है। नर्मदापुरम जिले में शनिवार को आयोजित वर्ष की प्रथम विशेष लोक अदालत में 143 लंबित प्रकरणों में से 120 की आपसी सहमति से निराकरण किया गया। झाबुआ महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने पेटलावाद में सखी वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन किया। आगरमालवा जिले के ग्राम मोड़ी स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर 9वीं और के 95 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया गया। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान 2.0 के अंतर्गत ग्राम अलहेड़ में पशुपालकों से संवाद किया गया। शिवपुरी जिले के शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय करेरा में युवा संगम कार्यक्रम 23 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। खंडवा जिले में 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कल जिला पंचायत सभागार में जिला स्तरीय नींव कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध। और छतरपुर और पन्ना जिले में आज भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

कार्यक्रम सुनने वाली अपनी सभी बहनन को स्वाति बहन की राम राम। बहनों कहते हैं कि जीवन में हमेशा बदलाव बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अपन समय के साथ बदलाव को नहीं अपनाते तो कहूँ ना कहूँ देखो जाए तो पिछड़ जाते हैं। और आजकल के छोटे मोड़ा मोड़ी भी अपन देख रहे हैं कई चीज़ों में तकनीकी तौर पे वे आगे बढ़ रहे हैं, अपन चाहें तो उनकी मदद से भी कई चीज़ों को सीख सकते हैं। और बहनों छोटी छोटी आदतों से ही जो है हमारा जीवन बदलता है। कई बार हम गृहस्थी के जो काम काज होते हैं उनमें थोड़ा सा बदलाव ला के उसको और बेहतर करते हैं। और आज के समय में अगर अपन बात करें तो आज बहुत सी बहनें कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, वे आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने साथ साथ अपने आसपास रहने वाले कई लोगों को यहाँ तक कि रोज़गार भी दे रही हैं और अपने परिवार के लिए एक मजबूत सहारा भी बन रही हैं। जहाँ वे अपनी गृहस्थी को बेहतर तरीके से संभाल रही हैं वहीं अपने आर्थिक निर्णय लेने के लिए भी सक्षम हो रही हैं। और ये सब तभी संभव हुआ है जबकि उन्होंने जीवन के साथ जो नए नए बदलाव आए उनको अपने जीवन में उतारा, यानी कि नई तकनीकों के बारे में जाना, शिक्षा के महत्व को जाना और आत्मनिर्भरता के महत्व को जाना। और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से सभी से यही कहें कि जहाँ तक हो सके अपनी सोच को सकारात्मक रखें, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। हो सकता है कि हम पहले प्रयास में असफल रहें, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी ही मन में दृढ़ संकल्प लेके अपन को आगे बढ़ना है। अब देखो शुरू से ही जब मतलब अपनी बहनें आत्मनिर्भर नहीं थीं, उनको घर गृहस्थी के लिए जो खर्चा दिया जाता था उसमें से भी अगर देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी बचत करके वे अपने पास एक ऐसी पूंजी तैयार कर लेती थी कि जो कि कभी भी ज़रूरत पड़ने में अपने घर परिवार के लिए वो पूंजी काम आती थी। कभी बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, तो कभी व्यापार को बढ़ाने के लिए, या फिर खेती के लिए, या फिर बच्चों की शादी ब्याह के लिए, या कोई ऐसी स्थिति बन जाने पे जबकि हमको बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने की ज़रूरत होती है। यही बचत हमारे कहीं ना कहीं काम में आई है और हमने पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी माँ से, अपनी दादियों से इस बचत के बारे में सुना है और जाना भी है। तो बहनों हर महिला के अंदर देखो एक गुण होता है कि वह थोड़ी थोड़ी बचत करके रखती है, लेकिन इस बचत से भी अपन वे जो पूंजी तैयार हो उसको सही तरीके से निवेश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आज अपन देख रहे हैं कि कई बैंक योजनाएँ हैं, खाते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने रुपए पैसे जो हैं उनको सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसको बचत के रूप में ही रखना एक अच्छी समझदारी नहीं होती है। हम अगर हमें लग रहा है कि हमारे पास जो पूंजी है उसमें से हमें कुछ हिस्से की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है और उसके बाद कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि हम चाहते हैं कि हम आगे लंबे समय तक उससे भी कुछ और अधिक ब्याज के रूप में या कुछ निवेश ऐसा करें जिससे कि हमें आर्थिक रूप से और ज़्यादा लाभ हो, तो ज़रूरी है कि हम जो बचत की योजनाएं हैं उनको जाने समझे और सही तरीके से अपना जो बचत है उसको निवेश करें। और इसके लिए शासन के द्वारा भी कई प्रयास किए जा सकते हैं और हो भी रहे जिनका लाभ लेकर अपनी जानकारी को बढ़ाकर हम उन योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं। ऐसी बहनों बहुत सी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हमारी जो बचत होती है वो एक अच्छा निवेश का रूप ले लेती है। अब देखो अपन लोग खाते भी खुलवाते हैं, खाते के साथ साथ महिला खाता भी खुलता है जिसमें महिलाओं को अधिक ब्याज दरें मिलती हैं, उसका उपयोग करके हम जो है अपनी पूंजी को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा देखो सुकन्या समृद्धि योजना है जिसको SSY भी कहते हैं, जो अपनी छोटी बच्चियां हैं जिनकी 10 वर्ष

से कम आयु है। इन जो बच्चियां हैं इनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए ये एक सरकारी बचत योजना है जिसके में आकर्षक ब्याज भी मिलता है और आयकर का भी लाभ हमें मिलता है। इसके साथ साथ जो हमारी बचत है उसको अपन फिक्स डिपॉजिट के रूप में भी कर सकते हैं। मान लो अपन ने थोड़ा थोड़ा करके एक ऐसी पूंजी बना ली है जिसकी हमें ज़रूरत अभी कुछ वर्षों तक नहीं है, तो उसको हम फिक्स डिपॉजिट के रूप में भी बैंकों में जमा कर सकते हैं और उस जो अपनी बचत है उससे जो हमें ब्याज मिलता है वो भी हमारे काम आता है। और अगर ऐसा लग रहा है कि हम हर माह थोड़ी थोड़ी बचत कर सकते हैं और उसका सही तरीके से निवेश करें, तो इसके लिए भी बहनों कई प्रकार की योजनाएं हैं। इसी में से एक योजना है आवृत्ति योजना या आवृत्ति जमा योजना भी कहते हैं, इसे आरडी के नाम से भी जानते हैं। तो अपन हर महीने जो है एक निश्चित राशि को अपने भविष्य को अच्छा बेहतर बनाने के लिए बचत के रूप में सुरक्षित रख सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बहनों हर महीने जो है निश्चित राशि जो है हम जमा करते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए इसको जमा किया जाता है जिससे भविष्य के लिए हमारे पास एक बड़ी पूंजी तैयार हो जाती है जो कि हमारे किसी भी समय काम में आ सकती है। बहनों कई तरह की जो है बचत योजनाएं होती हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने जो रुपए पैसे है उसका सही तरीके से निवेश करें। और अगर हम निश्चित रूप से अपनी बचत की आदत को बना के रखते हैं और उस बचत से अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमने आर्थिक रूप से सबकी मदद की हो। और बहनों जब हमारे पास नई पूंजी तैयार हो जाती है तो इसको भी हमें चाहिए कि हम सही तरीके से निवेश को एक नियमित रूप से बढ़ाते रहें। कई बार कई बहनें क्या होता है कि जो उनकी बचत होती है आज भी अपने घरों में संभाल के रखती हैं, लेकिन आज का समय जो बहनों है डिजिटल का युग कहलाता है। इस समय जो हम बैंकों के माध्यम से जो कई योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें निवेश कर करके हम अपनी बचत को बेहतर बना सकते हैं। और बहनों आजकल डिजिटल बैंकिंग है ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से हम अपने जो बचत है उसको बेहतर तरीके से और सुरक्षित भी रख सकते हैं और कई योजनाओं में तो अधिक लाभ भी मिलता है यानी कि अधिक ब्याज भी मिलता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपनी बचत के अनुसार जो है योजनाओं का चुनाव कर सकती हैं जिससे आप अपनी बचत को नियमित रूप से कर सकें। तो बहनों ये बात हुई हमारे रुपए पैसे की, लेकिन आज के समय में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है बचत की वो है समय की। अगर हमने समय पर सही काम किया और समय पर सही बचत की तभी हम जो है अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। बचत के साथ साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर हमारे पेंशन योजनाएं हैं उनको भी हमें अपने विकल्प में चुनना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे साथ भविष्य में क्या स्थितियां बनती हैं। अगर हमने निश्चित रूप से इन योजनाओं का लाभ लेकर के अपनी बचत को बाँट कर हिस्सों में किया है तो वह हमारे कहीं ना कहीं काम आती है, साथ ही हमारे परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से सभी बहनों से यही कहेंगे कि बचत की आदत को सिर्फ अपने घर में ही बचत करके ना रखें, उसका सही तरीके से निवेश भी करें ताकि भविष्य में वह निष्फिक्र होकर रह सकें। तो बहनों ये तो हुई रुपए पैसे की बचत की बात, लेकिन आज के समय में अपन बात करें तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी अपन बचत कर सकते हैं और अपने बचत के साथ साथ जो कई खर्चे हैं उनको हम कम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे आसपास हम देखते हैं कि घरों में भी या फिर अपने आस पड़ोस में भी कि कहीं भी अगर पानी बर्बाद हो रहा है तो हम उस पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे घर में पानी का हम उपयोग करते हैं उसके दोहरे उपयोग को भी अपना सकते हैं, इससे हम पानी की बचत कर सकते हैं। वहीं घर में जो अपन के घरों में बिजली आती है अगर हमें लग रहा है कि उसका उपयोग उस समय हम नहीं कर रहे हैं या एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो उस समय हम जो अपने जो बिजली के खटका हैं उनको बंद कर दें और अपने संगे संगे जो अपने मौड़ा मौड़ी हैं परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी छोटी छोटी आदत डाल के बचत की आदत डाल सकते हैं।
तो बहनों, इन्हीं उपायों को अपनाकर हमें जीवन में बचत लाना है और अपने जीवन को और बेहतर बनाना है। अब सुनते हैं लोकगीत, स्वर है लेखा निगम का।

भैया ना देखो, कहते हैं कि जो अपनी बचत होती है वो केवल रुपए पैसे की नहीं होती है। हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी हमें प्रकृति ने दिया है हम उसे बचा के चलें, और हमारी छोटी छोटी बचत से ही जो है हम बहुत बड़ी पूंजी जो है तैयार कर सकते हैं। और ये पूंजी तभी तैयार होगी जब हम नियमित रूप से बचत के महत्व को जानें और सही तरीके से जो है हर चीज़ की बचत करें। अब कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम अपने आसपास देखते हैं कि जिनको हम बचा के अपनी प्रकृति को जो है बेहतर बना सकते हैं, और बेहतर बनाने के साथ साथ हम अपनी प्रकृति के लिए अपने जो कर्तव्य हैं उनका भी निर्वाह कर सकते हैं। अब अपन देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो है प्रकृति बदल रही है तो हर जगह का मौसम भी बदल रहा है। जहाँ इस आषाढ़ के मौसम में भारी वर्षा होती थी तो आज हम देखते हैं कि बारिश कम भी होने लगती है। कहीं ना कहीं इसका मुख्य रूप से अगर कारण देखा जाए तो वो है कि प्रकृति में लगातार कुछ ना कुछ हस्तक्षेप हो रहा है। तो हम सभी को ये निर्णय लेना होगा कि हम सब मिलकर कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे हमारी प्रकृति पहले से बेहतर बने, और बेहतर बनने के साथ साथ हम उसका उपयोग भी बेहतर तरीके से कर पाएँ। अब जैसे कि अपन देख रहे हैं ना कि आषाढ़, सावन, भादो, यही वो समय होता है जबकि हम जो है अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगा करके अपनी प्रकृति को और भी सही

0: सकते हैं, संवार सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो है हमारी प्रकृति में कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं या अवरोध आ जाते हैं जिसके कारण हमारी प्रकृति का जो है संतुलन बिगड़ जाता है। तो हम सभी बहनों ऐसा क्या काम काज कर सकते हैं जिससे हमारी प्रकृति बेहतर हो जाए? तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जहाँ तक हो सके जिन चीज़ों को हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं तो उनको पुनः उपयोग में लाना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें, जैसे कि हमारे को लगता है कि हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम उपयोग में ला करके बेहतर बना सकते हैं, तो उनको हमें दोबारा उपयोग में लाना चाहिए। जैविक जो चीज़ें हैं उनको अपन को बेहतर तरीके से लाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमको क्या ध्यान रखना है कि जैसे हमारे आसपास जो खाली जगह है वहाँ पर हम जो है पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं। पेड़ पौधे लगाने के साथ साथ कई प्रकार की जो चीज़ें हैं उनको जो है सुरक्षित भी रख सकते हैं। तो बहनों, जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो है ना केवल पेड़ पौधे हमें ही सब चीज़ें नहीं देते, जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको भी सहारा देते हैं और कई प्रकार की चीज़ें हमको उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आज के समय में अगर हम देखें तो हर कोई जो है चाहता है कि आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो कृषि आधारित जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको भी हमारी बहनें जानें और उसको स्वरोजगार के रूप में भी अपनाएं। तो आज की हमारी भेंटवार्ता का विषय भी यही है, कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों हेतु महिलाओं को स्वरोजगार। जानकारी देख रही हैं डॉक्टर अरविंदर कौर। तो बहनों सुनते हैं। बहनों, हम सभी रहते हैं ग्रामीण वातावरण में और इस वातावरण में अगर देखा जाए तो हमारा जो व्यवसाय है वह है कृषि, और खेती बाड़ी ही कर हमारी जीविका चलती है। और इस काम में हमारी जो बहनें हैं वे भी पूरा पूरा सहयोग भी करती हैं। और आजकल तो महिलाएं जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग, उनमें भी प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ रही हैं। अगर हमारे पास कहा जाता है कि अगर सही जानकारी होती है, तकनीक के बारे में हमें पता होता है, तो हम कोई भी कार्य करते हैं या उद्योग लगाते हैं वो उसमें सफलता हमें ज़रूर मिलती है। इसी विषय पर आज आपको जानकारी देंगी डॉक्टर अरविंदर कौर, जो कि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रही हैं वो कृषि आधारित जो उद्योग हैं वे कौन कौन से हैं जो लगा सकती हैं?
1: ग्रामीण बहनों, आप सबको अरविंदर का नमस्कार। बहनों, आप सब लोग गांव में खेती से जुड़ी हुई हैं और खेती के कई काम, बीज की रोपाई, स्वस्थ बीज का चुनाव, उसके बाद निदाई गुड़ाई खेत में करना, फूलों की तुड़ाई, बीजों का भंडारण और कई ऐसे काम हैं जो आप खेत में करती रहती हैं, उसमें जुड़ी रहती हैं। खेती की कई महिलाएं ऐसी हैं जो आजकल अपने घरों में ही अपने परिवार को साथ लेकर उन्होंने अपने आमदनी का जो जरिया बनाया है, कई ऐसे उद्योग, कई ऐसे व्यवसाय उन्होंने अपनाए हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ने के कारण उनका स्तर गांव में ऊंचा उठा है, समाज के लोग उनको सम्मान से देखने लगे हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। तो महिलाएं जैसे कई काम हैं उनको कर सकती हैं खेती में, जैसे आप नर्सरी है गांव में, हर गांव में सब्जी हमारे उगाने वाले किसान भाई होते हैं,
0: एक पौधशाला तैयार करते हैं।
1: हाँ, उसके लिए वो लोग दूर दूर के क्षेत्रों में जाते हैं। अगर उन्हें स्वस्थ और अच्छी जो नर्सरी है ना, पौधशाला जो है वो गांव में ही मिल जाए तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो महिलाएं जो है अपने स्तर पर, और सब्जी के अगर या फूलों की पौधशाला तैयार करनी है वो आप उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, एक महीने में आपकी पौध तैयार हो जाती है और उसको आप अच्छी कीमत पर दूसरे किसान भाइयों को बेच सकते हैं। आजकल नई तकनीक आने के कारण महिलाएं, पहले तो खेतों में ही जो था वो तैयार होती थी पौध, अब तो पॉली हाउसेस बन गए हैं, संरक्षित खेती होने लगी है। इसके कारण महिलाएं जो है छोटे स्तर पर पॉली हाउस बनाकर उसमें भी पौध तैयार करके इसको बेच सकती है। इस ये जो आपकी पौधशाला है बनेगी, जो पॉली हाउस बनेगा, ये जो संरक्षित खेती में बनेगा, ये इसमें बारिश का भी असर कम होगा, धूप से भी कम होगा, और अंदर जो है अच्छे वातावरण में पौध अच्छी तैयार होती है, जिससे उनको अच्छे दाम मिलते हैं। और इसकी एक खासियत ये है कि समय से पहले आप अगेती फसल की भी इसमें पौध महिलाएँ तैयार करके इसको बेच सकती हैं। इसके अलावा महिलाएं जो हैं पशुपालन से संबंधित जो है कई काम कर सकती हैं, पनीर घी बना सकती हैं, केसिन बना सकती हैं, इसको भी बाजार में क्या कर सकती हैं, बेच सकती हैं। केंचुए की खाद, आजकल जैविक खेती का ज़माना है, हम लोग जैविक सब्जियां खाने लगे, फल खाने लगे, इसमें एक बहुत जो मुख्य घटक है वो है जैविक खाद का, तो केंचुए की खाद बना के भी महिलाएं इस व्यवसाय को अपना सकते हैं। मशरूम उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है, और जो हमारे मौसम में कई सब्जियां और फल होते हैं, जैसे टमाटर है, आंवला है, हमारी बेल है, बेल का मुरब्बा तो शहरों में बहुत पसंद किया जा सकता है, अचार है, बड़ी पापड़ है, तो महिलाएं जो हैं इनको भी एक व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। प्रायः शहरों में देखा गया है कि आजकल मल्टी स्टोरी बहुमंजिला इमारत बनती है, एक के ऊपर एक, उसमें धूप नहीं आती, तो कई बार घर की महिलाएं ये अचार और ये पापड़ ये सब नहीं बना सकते, तो वो बाजार पर निर्भर करते हैं। तो अगर हम महिलाएं कुटीर उद्योग के रूप में इस व्यवसाय को अपनाएं तो अच्छे अपनी आमदनी अपने परिवार के लिए।
2: दीदी, जब मैं आपकी बात सुन रही थी तो मेरे मन में एक बात उठ रही थी कि जब हम कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या जिन व्यवसाय के बारे में आपने बताया, तो कहीं ना कहीं एक बात हमारे मन में आती है कि हमें सबकी जो विधिवत जानकारी है, प्रशिक्षण है या तकनीक है, हम कौन सी अपनाएं और ये सारी जानकारी हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही आपने बात कही, क्योंकि कई बार महिलाओं के मन में जिज्ञासा होती है और वो सीखने की इच्छा होती है, लेकिन सही समय पर प्रशिक्षण ना मिलने के कारण उनकी इच्छा दबी रह जाती है। बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो विश्वविद्यालय है, राजमाता विजय राजा सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, इसमें हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, इसमें महिला वैज्ञानिक होती हैं, कृषि वैज्ञानिक, जो महिलाओं को समय समय पर प्रशिक्षण देती रहती हैं। और इसी कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि विज्ञान केंद्र अखबार के माध्यम से या उनके अपने न्यूज़लेटर निकलते हैं, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर का निकलता है कृषि ज्ञान दर्पण, उसमें भी जो आगामी जो प्रशिक्षण है उसकी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से कृषि विज्ञान केंद्र में एक किसान मोबाइल संदेश करके एक नई योजना है, इसमें आजकल आपने देखा होगा कि हर गांव में हर महिलाओं के पास भी अब मोबाइल होने लगे हैं, तो इसमें महिलाओं को जो किसान हैं या जो किसान महिलाएं हैं वो अपना पंजीयन कराते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में, उन अपना फ़ोन नंबर वो लोग देते हैं हम लोगों के पास, तो समय समय पर जो प्रशिक्षण या जो कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित होने वाले हैं उसकी जानकारी उन्हें संदेश के माध्यम से, जिसे हम लोग बोलते हैं किसान मोबाइल संदेश, उसके माध्यम से हर मंगलवार और हर शुक्रवार को उनको भेजा जाता है। तो इससे भी महिलाओं को या जो कृषक मित्र हैं, जो कृषक दीदी हैं या जो आपके किसान भाई हैं, इन सबको गांव में जो है ये जानकारी मिल जाती है कि कृषि विज्ञान केंद्र में ये प्रशिक्षण आयोजित होने वाला है, तो उनको सही समय पर जानकारी मिल जाती है। उसके बाद इस जानकारी के बाद जो इच्छुक महिला है वो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में अपना पंजीयन करा सकती है। पंजीयन के बाद जब हमारा पूरा महिलाओं का ग्रुप तैयार हो जाता है, हम लोग 20 महिलाएं लेते हैं उसमें, वो तैयार हो जाता है, फिर उस प्रशिक्षण का आयोजित किया जाता है। इन प्रशिक्षणों की अवधि जो है वो 5 दिन की रहती है, और कुछ प्रशिक्षण 1 दिन के भी होते हैं, लेकिन जो आप व्यवसाय के या उद्योग के रूप में जो प्रशिक्षण है उनकी अवधि समानता 5 दिन की होती है। और इसमें रुकने की व्यवस्था भी है, जैसे गांव से महिलाओं को कई बार
2: रही है और उसकी कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ रुके और तो कैसे प्रशिक्षण प्राप्त करे, समस्याएं आती हैं।
1: हाँ, इसके लिए हमारे यहाँ एक सुविधा है कृषि विज्ञान केंद्र में, यहाँ पर आवासीय सुविधा है जहाँ पर महिलाएं जो है प्रशिक्षण के दौरान यहाँ पर रुक भी सकती है और अपना प्रशिक्षण पूरा कर सकती है।
2: जैसे कि अपने प्रशिक्षण के बारे में बात की, हम अगर कोई लघु उद्योग लगा रहे हैं या कुटीर उद्योग लगा रहे हैं जो कि हमारी कृषि पर आधारित है, तो हमें किस प्रकार का उद्योग लगाना चाहिए जिससे कि हमें कच्चा माल मिले और भी हमारा उद्योग, जो भी हम उपज बना रहे हैं या कोई भी सामान बना रहे, वो सही रूप से बिके और उसका हमें लाभ अधिक से अधिक मिले।
1: प्रायः मन में आता है कि हमें भी आमदनी अपनी महिलाओं के मन में आता है कि कैसे हम आय बढ़ाएं, क्योंकि खेती जो है वो एक जोखिम भरा व्यवसाय है, कब मौसम में बारिश हो जाए, हाँ। कब पानी नहीं बरसे, तो महिलाएं अगर अपने खेती के साथ साथ दूसरे सहायक व्यवसाय जैसे मैंने आपको बताया अभी पहले, अगर उनको भी अपनाएंगे तो उनको इसमें लाभ मिलेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रशिक्षणों के माध्यम से जो कृषि विज्ञान केंद्र देते हैं, इन प्रशिक्षणों के, देखिए वैसे तो सब लोग अचार मुरब्बा बनाते हैं, बट इन प्रशिक्षणों में खास बात ये होती है कि आधुनिक जो तकनीक है उसकी जानकारी दी जाती है, ताकि उनका जो व्यवसाय है वो ज़्यादा समय तक टिकाऊ रहे और उनको अच्छी गुणवत्ता वाला जो उनका उत्पाद बने या जो है, जिससे जो कंज्यूमर हैं, जो खरीदार हैं उनको, उनको फ़ायदा पहुंचे और उनको अधिक लाभ मिले। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे गांव में जहां पर हम ये व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं, वहां पर एक तो कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में हो,

0: कच्चा माल से मतलब ये है कि हम कृषि आधारित उद्योग कह रहे हैं, तो हमारे कृषि से संबंधित जैसे सब्जियां हो गई, हमारे फल हो गए, या कई बार कई महिलाएं जो होती हैं वो दाल बनाने का भी उन्होंने एक छोटा सा यूनिट बना लेती हैं, दाल बनाने की रख लेती मिल टाइप की, उसमें वो लोग अरहर की दाल ऐसे दालें बना के भी वो क्या पैकिंग करके उसको बेचती हैं। तो हमारे गाँव में उस चीज़ का उत्पादन अधिक होना चाहिए, दूसरी हमें और आसानी से मिल जाना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, या फिर हमारी क्या हो, किसी चीज़ की मांग जो है वो बाज़ार में ज़्यादा हो। जैसे शहरों में आजकल आप देख रहे हैं कि होटलों का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है ना, तो वहाँ पर हर चीज़ पैक चल रही है, लोगों के पास इतना समय नहीं है, तो अगर उनको इस तरीके की चीज़ें मिल जाएँ तो वो निश्चय ही लाभदायक रहेगी और व्यवसाय भी खूब चलेगा।
1: बिल्कुल, ये बात तो सही है कि आजकल हम देखते हैं जैसे ही अगर बाजार में उसकी मांग अधिक है और उसी चीज का हम व्यवसाय लेकर चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें लाभ होगा। हाँ, साथ ही साथ इस बात का भी हमारी बहनों को ध्यान रखना है कि हमें ऐसा व्यवसाय चुनना चाहिए जिसके लिए जो लागत है या कच्चा माल है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सरलता से
0: मिल जाए। इसका फायदा ये होगा, एक तो ग्राम का जो ये जो हमारी सब्जियां हैं ये प्रयोग होंगी, दूसरा ये हमें सस्ता पड़ेगा, आपको बाहर से मंगाने में जो मंगाने की लागत है या उसके जो भाव है वो आपको ज़्यादा महंगे पड़ेंगे, अगर आप अपने गांव का ही लेंगे तो वो आपको आसानी से मिलेगा और आपके लिए वो फायदे का रहेगा। कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर किसानों की और महिलाओं की मदद करता है, कई जो है एग्जीबिशंस होते हैं, कई मेले लगते हैं, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र जो लोग जो महिलाएं इस तरीके से अपने प्रोडक्ट बनाते हैं उनको वो क्या कर सकती हैं, बेच सकती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का कार्य कृषि विज्ञान केंद्र का आता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी सहयोग से भी महिलाएं अपने कुटीर उद्योगों को और अपने लघु उद्योगों को आगे बढ़ा सकती हैं।
1: और जैसे कि बात की उद्योगों की, तो हमारी कुछ बहनें जैसे आसपास भी रह रही हैं, वो कुटीर उद्योग लगा रही हैं, अगर प्रत्येक जो महिला है उसके पास सही रूप से प्रशिक्षण होगा तो वो मिलकर जो उद्योग होगा वो बहुत ही बेहतर ढंग से चला पाएंगी, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास प्रशिक्षण नहीं होता है तो हमें उद्योग को चलाने में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना भी करना
0: सही जानकारी नहीं होती। अगर हम प्रशिक्षण लेते हैं, प्रशिक्षणों में हम अपनी जो मन में हमारी कुछ जिज्ञासाएं होती हैं उनको भी हम शांत कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि कृषि विज्ञान केंद्र में एक एक्स ट्रेनी सम्मेलन भी होता है जिसमें जो प्रशिक्षित ग्रामीण महिलाएं हैं या ग्रामीण युवा हैं उनको बुलाया जाता है ताकि उनको जो व्यवसाय करने में जो कठिनाइयाँ आ रही हैं वो अपनी कठिनाइयाँ इस प्रशिक्षण में बताते हैं ताकि जो उनको ये कठिनाइयाँ हैं उनका सामना किया जा सके। तो इस तरीके से वो अपने व्यवसाय को और बढ़ा सकते हैं।
1: और भी कोई व्यवसाय है जो हमारी बहनें सरलता से अपने ग्रामीण क्षेत्र में लगा सकती हैं?
0: हाँ, इसमें एक हैंडीक्राफ्ट है जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, जैसे आपका दोना बनता है, कई टोकरियाँ बनती हैं, कई
1: चटाइयाँ भी बनती हैं।
0: इस तरीके का व्यवसाय जो है ये भी महिलाएं जो है वो अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और सबसे अच्छा मैं एक और बताना चाहूँगी, गाँव में तो सब्जियाँ होती हैं, सब्जियों की भी वो महिलाएँ क्या कर सकती हैं, ग्रेडिंग कर सकती हैं, बड़े आकार के लाल रंग के टमाटर एक ग्रेडिंग में, फिर दूसरे इस तरीके से भी वो कर सकती हैं, अनाज को इस तरीके से महिलाएं, आजकल तो इतने उन्नत कृषि यंत्र आएंगे। यहाँ पर मैं एक खास बात बताना चाहूँगी, मैं हमारे केंद्र में एक महिला आई थी, वो लोग मूंगफली का उत्पादन करते थे, जब मूंगफली वो बेचते थे तो उनको उतना लाभ नहीं आता था और उनके पास इतना बड़ा खेत भी नहीं था कि वो और अलग अलग चीज़ें लगा सके। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र ने उनको जानकारी दी कि एक मेज क्या कहते हैं जो मूंगफली को छीलने वाला छिलका हटाने वाली एक मशीन आती है, पीनर जिसे हम शेलर बोलते हैं, उस मशीन को उन्होंने लिया, उसके बाद उन्होंने उसका ऑयल निकाला और मूंगफली निकाल के उन्होंने क्या करा उसे बेचा, और उन्होंने इस जो ऑयल निकला और जो मूंगफली का केक निकला जो उसकी खली निकली उसको उन्होंने आगे बेचा। तो पहले तो मूंगफली बेचते थे, अब उन्होंने मूंगफली का तेल बेचा और मूंगफली की खली बेची, उससे उनका क्या हो गया, लागत जो थी वो कम आई और उनका जो लाभ था, जो आर्थिक लाभ था वो बढ़ गया। तो ये कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या कुछ ऐसे संयंत्र हैं या कुछ ऐसी तकनीक हैं, जब हम इन प्रशिक्षण में आते हैं तब उनकी जानकारी उन महिलाओं को मिलती है, नहीं तो वो अपने तरीके से करते जाएं उसमें उनकी लागत भी ज़्यादा है, मेहनत भी ज़्यादा है, और अगर वो सही समय पर सही प्रशिक्षण में अगर उन्नत जानकारी लें तो निश्चय ही महिलाएँ भी क्या कर सकती हैं, उद्योग स्थापित कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, अपने बच्चों के स्कूल का खर्चा उठा सकती हैं और अपने परिवार को एक स्वस्थ अच्छा स्वास्थ्य भी दे सकती
1: बिल्कुल
0: है। और खुशहाली तो अपने आप आएगी
1: कि आम के आम और गुठलियों के दाम। और कृषि आधारित जो लघु उद्योग हैं और कुटीर उद्योग हमारी बहनों ने लगाया और प्रशिक्षण लिया तो फिर तो उनका उद्योग अच्छे से चलेगा। और आपने जो इतनी अच्छी जानकारी दी उससे निश्चित तौर पे हमारी बहनों को बहुत लाभ मिला होगा। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: बहनों। अभी अपन

सुन रहे थे भेंटवार्ता, जिसका विषय था कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु महिलाओं को स्वरोजगार। जानकारी दे रही थी डॉक्टर अरविंदर कौर। तो निश्चित तौर पे हमारी बहनें समझ ही गई होंगी कि यदि उनके मन में कोई लघु उद्योग या कुटीर उद्योग के बारे में जानकारी को लेके कुछ भ्रम होगा तो वो भी दूर हो गए होंगे। साथ ही कई प्रकार के जो उद्योग होते हैं जो कि कृषि पर आधारित होते हैं, हम खेती के साथ साथ उनको अपने घर से ही काम शुरू कर सकते हैं जिससे कि हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों, तो उनको भी वे लगा सकती हैं। तो हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जानकारी आप तक पहुँचाएँ ताकि हमारी बहनें आगे बढ़ें और जीवन में जो भी उनने अपने मुकाम स्थिर किए हों वहाँ तक वो पहुँचें और घर परिवार के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बने। और अब सुनते हैं अगला लोकगीत, स्वर है ममता गोस्वामी का।

0: लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: बहनों कहते हैं जहाँ चाहे वहाँ राह बना ही लेते हैं, और ऐसे ही कई प्रयास जो है हमारे शासन के द्वारा भी किए जाते हैं, जिससे हमारी बहनें बेहतर भविष्य के लिए तैयार हों, अपने घर परिवार के साथ साथ जो है अपनी गृहस्थी भी बेहतर तरीके से चलाएं। और ये तभी बहनों संभव होता है जब हम जो है आराम से अपने घर गृहस्थी के साथ साथ कई ऐसे कामकाज हैं जिनको बेहतर तरीके से समझें, करें, और अपने साथ साथ अपने आसपास रहने वाली जो महिला हैं उनको भी जागरूक करें। और ऐसे ही एक प्रयासों में होता है बहनों कि जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, जो हमारे हित में हैं, हमारे आसपास रहने वाली बहनें हैं उनके लिए ज़रूरी हैं, अगर हमें जानकारी है तो उनको भी बताएं ताकि वे भी बेहतर तरीके से इनका लाभ ले सकें। और ये तभी संभव होता है कि जब हम एक से एक हाथ मिलाकर बढ़ें और आगे बढ़ें। अब जैसे कि हम देखते हैं कि आंगनवाड़ी के माध्यम से जो है मंगल दिवस की जो अवधारणा है उसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं समय समय पर चलाई जाती हैं। हर मंगलवार कुछ ऐसा विशेष कार्यक्रम होता है जिससे हमारी बहनों के साथ साथ जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे जो गोदी के ललना हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, यहां तक कि जो बाल किशोरी हैं उनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में बताया जाता है। उनको शारीरिक से जुड़ी हुई बातें, अपना ध्यान कैसे रखना है, स्वच्छता को कैसे अपनाना है, और तो और हमारी बहनें कैसे अपने भविष्य को बेहतर बना सकती हैं इसके लिए भी बताया जाता है। तो उसका लाभ लेकर के हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जबकि हम इसके दिवस की अवधारणा को जानें और वहाँ जाके कुछ नया सीखें। तो आंगनबाड़ी वाली जो दीदी होती हैं वे भी आपके संपर्क में जब आती हैं तो उनसे भी जानें कि हमारे लिए इस समय क्या बेहतर है। और कई बार कहते हैं ना कि अपनी जो समस्याएं होती है हमें उसे छुपाना नहीं चाहिए, आगे बढ़ के उससे निपटना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहनों अपनी समस्याओं को साझा करें और उनका निदान पाके आगे बढ़ें। और अब हो रही है चलबे की बेरा, सभी बहनों को स्वाति बहन की राम राम।

0: गत सुनिए भारत के उभरते हुए स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा।
1: नमस्कार श्रोताओं, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र आज एक नए परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसरो की दशकों की उपलब्धियों के साथ अब प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स भी अंतरिक्ष क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 प्रक्षेपण ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की क्षमताओं को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। ऐसे में ये समझना महत्वपूर्ण है कि भारत का स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम देश की अर्थव्यवस्था, नवाचार और आत्मनिर्भरता को किस दिशा में ले जा रहा है। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले। डॉक्टर काले, आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एरोस्पेस की टीम से जुड़कर उन्हें बधाई दी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
3: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। स्काईरूट ने दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। कब से मेरा ध्यान जो गया, आपकी पूरी टीम 25-30 साल की दिखती है, ये मुझे और खुशी दे रही थी। शुरू में आपके चेहरे पर चिंता भी नजर आती थी, लेकिन फिर मैं देख रहा था कि खुशियों से माहौल भर गया।
1: डॉक्टर काले, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम होता क्या है और पिछले कुछ वर्षों में भारत में इसके तेजी से उभरने की प्रमुख वजह क्या है।
2: जब से इसरो ने काम चालू किया था, तब से एक देखा था कि सभी काम जो है उसकी जो संस्था है, जो सेंटर से वहां नहीं हो सकता है। कुछ तो काम जो है जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरी लगती है, वो सब जो अपनी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहां होना चाहिए। और इसी से लेकर हमारे जो रॉकेट्स है, लॉन्च व्हीकल्स है, उसके जो बड़े जो सामान होते हैं वो सब इंडस्ट्री में ही बनते हैं। और ये जब अपने इंडस्ट्री में बनते थे तो वो भी देखा था कि बहुत सारे उसके लिए जो कंपोनेंट्स लगते हैं, सिस्टम्स लगते हैं, मैकेनिकल जो होता है, वो सब काम इंडस्ट्री में तो होता ही है, मगर छोटी छोटी इंडस्ट्री ने भी इसमें हाथ भर लगाने के लिए प्रयत्न किए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा लॉन्च व्हीकल जो है वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया और उसका कल प्रक्षेपण बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है और वो अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में जाकर स्थित हुआ है। तो पूरे लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए जो भी कुछ इंडस्ट्री लगती है, जो भी कुछ टेस्टिंग करना पड़ता है, वो सभी काम ये प्राइवेट इंडस्ट्री ने किया है। और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम यानी पहले से लेकर अंत तक सब जो काम है वो बाहर हो सके। और मुझे खातरी है कि ये काम इस तरीके से करने के लिए सिर्फ मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे नहीं, मगर बाकी सब इंडस्ट्री जो है इसके लिए काम करने वाली उसका भी उसमें हाथ भर होता है और इसको ही हम स्पेस स्टार्टअप की इकोसिस्टम कह सकते हैं।
1: जी, आपने अभी स्काईरूट एरोस्पेस के विक्रम 1 प्रक्षेपण का उल्लेख किया है और ये अभी भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्या इस सफलता को हम मान सकते हैं कि इससे भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स को एक नई ऊर्जा मिलेगी?
2: ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है और इससे प्रेरणा लेकर और भी बहुत सारे लोग इसमें काम कर सकते हैं। मुझे खातरी है कि आजकल जो विद्यार्थी है वो भी इसमें आगे जाकर भाग ले सकते हैं। एक बहुत पहले मैंने यहाँ देखा था कि पुणे में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वहाँ के सब विद्यार्थियों ने मिलकर एक उपग्रह भी बनाया था। ऐसे जो उपक्रम होते हैं उससे हमें प्रेरणा मिलती है और खातरी मिलती है कि जो काम चालू किया था वो आगे भी अच्छी तरह से चालू रह सकेगा।
1: जी, और हमने देखा है जैसे पिछले कुछ समय में जो हमारी अंतरिक्ष नीति है देश की, उसमें कई तरह के सुधार आए हैं जिनसे स्टार्टअप्स के लिए ये वातावरण तैयार हुआ है और वो अच्छा काम भी करके दिखा रहे हैं। क्या जो इस तरह के सुधार हैं, जो नीतिगत सुधार हैं, वो हमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़े रहने में सहायक साबित होंगे?
2: इस तरीके की जो नीति है उसे हम आगे जाकर अगर जो हमारे देश के लिए नहीं लेकिन और भी देशों के लिए उपग्रह बना सकते हैं, उनके लिए रॉकेट्स बना सकते हैं, उनके उपग्रह जो वो बनाते हैं वो हम अपने यहाँ के लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके उनको अंतरिक्ष में भी भेज सकते हैं। मुझे खातरी है कि अभी जो प्रेरणा मिलेगी लोगों को तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छा काम कर सकेंगे।
1: जी डॉक्टर काल, ये आज भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स जो हैं, लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट निर्माण, पृथ्वी अवलोकन, संचार, डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में

0: काम कर रहे हैं, आपको इनमें सबसे अधिक संभावनाएं किस क्षेत्र में दिखाई दे रही हैं?
1: एक तो मुझे लगता है कि जो इसरो ने चालू किया था कि पहले एसएलवी तैयार किया, उसके बाद में एएसएलवी तैयार किया, पीएसएलवी तैयार किया, मगर ये सब एक एक करके बहुत बड़े बड़े लॉन्च व्हीकल हो गए। तो उसके बाद अगर जो कोई छोटा उपग्रह है उसके जो लॉन्च करना है तो उसके लिए एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बनाया है इसरो ने। अगर ऐसे लॉन्च व्हीकल जो है, जो छोटे लॉन्च व्हीकल है जिनका उपयोग बहुत जल्दी से हो सकता है, ऐसे लॉन्च व्हीकल हम अपने देश के लिए नहीं लेकिन बाकी सब देशों के लिए भी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी बना सकते हैं, और उसमें ही मुझे लगता है कि हमें और प्रगति होगी।
0: जी, और इसके अलावा अगर हम देखें तो अब तक जैसा भी हमारे यहाँ चल रहा था, अगर कुछ साल पहले तक अंतरिक्ष के सभी कार्यक्रम या उससे जुड़ा हुआ जो कुछ क्रियाकलाप था वो इसरो तक सीमित था। अभी जैसा हम बात कर रहे हैं कि अब निजी कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, सब इसमें शामिल हैं, सबके लिए रास्ते खुल गए हैं। हम अगर भविष्य की बात करें, निकट भविष्य की, अगर एक दशक की या उससे कुछ अधिक, तो इस बदलाव से जो हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम है क्या उनको गति मिलेगी, उनको तेजी मिलेगी?
1: प्राइवेट इंडस्ट्री ने अभी जो करके दिखाया है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इससे आगे जाकर जो भी कुछ सामान बना सकते हैं उसका टेस्टिंग करना जो है उसके लिए अभी भी इसरो की मदद लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो भी कुछ टेस्टिंग करना है वो भी अगर जो कोई प्राइवेट इंडस्ट्री आगे जाकर कर सकेगी तो इसमें बहुत ही ज्यादा सुधार होगा। और ऐसे टेस्टिंग के लिए जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों मिलकर जो कर सकेंगे तो और भी अच्छा होगा।
0: जी, और अक्सर कहा जाता है कि आने वाले समय में स्पेस डेटा एक नई अर्थव्यवस्था का आधार बनेगा, एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। तो अगर हम कुछ क्षेत्रों पर गौर करें, जैसे कृषि क्षेत्र है या डिजास्टर मैनेजमेंट है या शहरों की योजना बनाने, शहरी नियोजन है और राष्ट्रीय सुरक्षा है, इनमें ये जो चार क्षेत्र हैं इनमें स्पेस डेटा से कैसे हमें सहायता मिल सकती है?
1: डिजास्टर मैनेजमेंट की जो हम जो बात करें तो जब भी चाहे तब अगर जो उपग्रह को जो लॉन्च करना होगा तो इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री का ये छोटा उपग्रह बहुत ही अच्छा रहेगा और इसमें बहुत आगे जाकर बहुत ही काम कर सकते हैं। अगर जो शहरी व्यवस्था है उसकी जो व्यवस्थापना करना है तो उसके लिए भी बहुत सारे उपग्रह जो मिल सके तो ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।
0: जी, और बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे यहाँ कृषि भी, तो क्या खेती बाड़ी में भी इनका इस्तेमाल हो सकता है?
1: हाँ, हो सकता है। जो रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स है, ऐसे सैटेलाइट्स जो हम बना सकेंगे और भी ज्यादा, तो उसका उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकेंगे, क्योंकि हर रोज अगर जो कोई हमें जो इमेज मिल सके कोई भी खेती क्षेत्र की तो उससे हमें ज्यादा जानकारी मिल सकती है, और वो जानकारी जो है वो सब अपने जो एग्रीकल्चरिस्ट है उन तक जो पहुंच सके तो बहुत अच्छा होता है। और ये पहुंचने के लिए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की जरूरत है वो भी अच्छी तरह से आगे जाकर बना सकते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री, और उसका उपयोग करना जो है वो भी वो कर सकते हैं।
0: जी, और डॉक्टर काले, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां रही हैं, भू राजनीतिक कई जगह तनाव रहे हैं, कई जगह सैनिक कार्रवाई चल रही है पूरी दुनिया में, ऐसे में सैटेलाइट्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी, इसकी भूमिका पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे?
1: ऐसे जो सैटेलाइट्स है जो हमें इसके लिए काम में ला सकते हैं तो ये सैटेलाइट्स जो है वो डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे सैटेलाइट्स, छोटे जो सैटेलाइट्स है, बड़े भी सैटेलाइट्स है, ऐसे हम बना सकते हैं और प्राइवेट इंडस्ट्री का जो सहभाग आगे लेकर जो कर सके तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सिर्फ सैटेलाइट्स बड़े बनाने से ये काम नहीं हो सकता है, उसके लिए बहुत ही सारे और भी तरीके के उपग्रह की जरूरत होती है, और ये उपग्रह लॉन्च भी करना जल्दी से होता है तो इसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री जो है उसका बहुत ही सहभाग होगा।
0: जी, और भारत अभी वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य लेकर आगे की ओर अग्रसर है भी, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में स्टार्टअप्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी और हमारे सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं?
1: इसके लिए जो सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए, क्योंकि सबको अभी पता है कि भारत ये कर सकता है, लेकिन उनको जो जल्दी से कुछ करना होगा तो हम कर सकेंगे कि नहीं, इस पर ये लोगों का विश्वास नहीं है, तो वो विश्वास प्राप्त करना बहुत ही जरूरी होगा। जो भी कुछ काम कर सकते हैं वो अच्छा करना है, टाइम पे करना है, और जो उसके लिए जो कुछ फंडिंग लगेगा वो भी हम

0: मिला सकते हैं, अगर इसके लिए अच्छी तरह से ये काम करना होगा और जो टाइम सर करना होगा।
1: जी, हम जानते हैं कि स्पेस सेक्टर में नवाचार यानी इनोवेशन के लिए सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि निवेश की भी जरूरत होती है, अनुसंधान भी चाहिए और उद्योग और शिक्षा संस्थानों के बीच सहयोग भी जरूरी है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो भारत को अभी और क्या कदम उठाने चाहिए?
0: एक तो मैंने भी इतने सालों से देखा है कि रिसर्च के लिए जो फंडिंग लगता है वो फंडिंग कमती हो रहा है, जो अपने यहाँ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी तक जाकर पहुंचना चाहिए। अगर जो वहां तक जो ये पहुंच सके अच्छी तरह से तो ये इनोवेशन का काम और भी अच्छी तरह से आगे चल सकेगा।
1: जी,
0: इसके लिए जो भी कुछ रिसर्च फंडिंग है इसरो की है, दूसरे डिपार्टमेंट की भी है, डिफेंस की भी है, तो उन्हें अपने यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज है उनके यहाँ जाकर अच्छी तरह से काम, यूनिवर्सिटी में जो हो सके तो उसके लिए विद्यार्थी भी मिल सकते हैं, काम करने के लिए लोग भी मिल सकते हैं और ये लोगों को जो प्रेरणा मिले तो वो आगे जाकर ये जो स्पेस इकोसिस्टम है उसके लिए बहुत ही हाथ भार लगा सकते हैं।
1: जी, और दुनिया में हम लगातार देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में गतिविधियां तो काफी बढ़ गई हैं, कई देश इसमें बहुत सक्रिय हैं। इसके साथ साथ अंतरिक्ष में भी नई चुनौतियां दिख रही हैं स्पेस में, जैसे कचरा बढ़ गया है, साइबर सुरक्षा से जुड़ी नई चुनौतियां आ रही हैं और रेगुलेशंस से जुड़े हुए भी कई चैलेंजेस हैं। तो अभी हम भारतीय स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए ये मुद्दे कितने महत्वपूर्ण होंगे आने वाले दिनों में?
0: उनके लिए एक तो आगे जाकर जो देखना है कि हमें जो दूसरे के देशों के लिए हम कुछ बना सकते हैं तो वो अच्छी तरह से बनाना है, ये तो सही है, मगर उनके रूल्स और रेगुलेशंस को का भी पूरा पालन होना चाहिए। जैसे हम मानते हैं कि अपने देश के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसका तो पालन ये करेंगे ही, लेकिन वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनका अच्छी तरह से समझ पहुँचना चाहिए। और इसके लिए अगर जो यूनिवर्सिटीज जो है वहाँ जो ऐसे कुछ प्रोग्राम हो कि कौन से देश में कौन से तरीके रूल्स एंड रेगुलेशन से इंटरनेशनल स्टडीज जिसे कह सकते हैं उसका उपयोग करके हमारे स्टार्टअप्स और भी ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप भारत के स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम की कैसी तस्वीर देखते हैं? क्या भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक स्पेस इनोवेशन हब के रूप में उभर सकता है?
0: हाँ, बन सकता है, मैंने अभी जैसे कहा तो ये इसके लिए जो भी कुछ करना है काम उसके लिए रिसर्च लेबोरेटरीज चाहिए और जगह चाहिए, और ये जगह जो है वो एक आइसोलेटेड नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे यूनिवर्सिटीज तक जो पहुंच सके तो ये अच्छी तरह से काम आगे हो सकता है।
1: श्रोताओं, जैसा कि आपने अभी सुना, भारत का उभरता स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है बल्कि विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। डॉक्टर प्रमोद काले जी, इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के उभरते हुए स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। प्रस्तुति है आकाशवाणी छिंदवाड़ा की।

0: विकास की।
1: बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम डगर विकास की में। श्रोता दोस्तों, देश की तरक्की का रास्ता हमारे गांव की पगडंडियों से होकर गुजरता है। ग्रामीण भारत की समृद्धि हमारे राष्ट्र के विकास का मुख्य आधार है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुमूलन, वित्तीय समावेशन और स्थायी रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को, विशेषकर महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। तो आज के कार्यक्रम डगर विकास की में हम जानेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। कहा जाता है कि जब आप एक व्यक्ति को सशक्त करते हैं तो केवल एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, लेकिन जब आप ग्रामीण भारत की महिला शक्ति को सशक्त करते हैं तो पूरा समाज और राष्ट्र प्रगति करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन गाँव की महिलाओं में, उनके परिवारों में किस तरह का सकारात्मक बदलाव ला रहा है और इस योजना की कार्य प्रणाली क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी दे रही हैं रेखा हिरवार, जिला परियोजना प्रबंधक, जिला छिंदवाड़ा।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्वसहायता समूह के माध्यम से उन्हें संगठित करना और उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के पश्चात उनके पसंद के अनुसार आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना।
3: इसमें स्वरोजगार शुरू करने के लिए क्या प्रशिक्षण दिया जाता है और युवाओं को भी जोड़ा जाता है क्या?
2: हाँ, इस योजना में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में उनको, अगर वो दीदी कोई आजीविका के माध्यम से कोई गतिविधि करना चाहती है तो उनको भी हम लोग प्रशिक्षित करते हैं। जिला स्तर पर हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर, जिसको हम CTC कहते हैं। ये हमारा तामिया में है और ये CTC को हमारी जो CLF है वो CLF ही उसको संचालित करता है और उसमें विभिन्न प्रकार की लाइवलीहुड से संबंधित, उनके सशक्तिकरण से संबंधित, लेखा संधारण और विभिन्न प्रकार की उनको गतिविधियों से संबंधित उनको वहाँ प्रशिक्षित किया जाता है। और जैसा कि आपने एक प्रश्न पूछा मुझसे कि स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए क्या है, तो ग्राम के जो हमारे बेरोजगार युवा युवतियाँ हैं जो 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में रहते हैं, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। जैसा हमारा कि एक RCT है हमारा जिला लेवल पे सेंट्रल बैंक की, उनके स्वरोजगार के लिए वहाँ पर उनको ट्रेनिंग देते हैं। विभिन्न प्रकार के ट्रेडों में ट्रेनिंग होती है, ब्यूटी पार्लर हो गया और क्या बोलते हैं मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, ड्राइविंग हो गया और उनका लघु उद्यमिता से संबंधित जैविक सब्जी उत्पादन, विभिन्न प्रकार के ऐसे विषयों से उनको ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद में वो अपने स्वरोजगार को स्थापित कर देते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विकासखंड स्तर पर भी विभिन्न प्रकार के रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्राइवेट कंपनियां आती हैं और उनका साक्षात्कार होता है, वो युवाओं का चयन करके और उनको भी प्लेसमेंट दिया जाता है और वो अच्छे से मतलब कंपनियों में जाके अभी अपना नौकरी करते।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्राम संगठन भी काम कर रहे हैं, तो इनकी क्या भूमिका है?
2: ये ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत में हमारे जो ब्लेज हैं, ब्लेज लेवल पे भी हमारे ग्राम संगठन बने हुए हैं। इस ग्राम संगठन में कम से कम 3 SHG और अधिकतम 20 SHG ये हैं जो संगठित रूप से ये कार्य करते हैं। इस ग्राम संगठन के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण किया जाता है। इसमें समूह की जो दीदियां बहनें हैं वो अपने अनुभवों को आदान प्रदान करती हैं और सीखती हैं।
3: इस मिशन में डिजिटल लेनदेन और ऑनलाइन बैंकिंग को भी महत्व दिया जा रहा है क्या?
2: यस, हाँ, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको हम लोग वित्तीय साक्षरता की ट्रेनिंग वगैरह देते हैं और जो भी उनका जो ट्रांजेक्शन है, जो लेनदेन है, वो दीदियां अपना मतलब चेक के माध्यम से ही पेमेंट करती हैं और चेक के माध्यम से या RTGS हो गया या फिर जैसे कि विभिन्न प्रकार के हमारी दीदियां स्वरोजगार कर रही हैं, आजीविका गतिविधियों से जुड़ी हैं, जो अपने पेमेंट लेती हैं वो दीदियां, तो वो भी उसमें भी QR कोड के

0: माध्यम से ही पेमेंट करती है, तो पूर्णतः ये हम लोग डिजिटल राशियां उपलब्ध करा दी जाती है, चाहे आरएफओ, चाहे सीआईएफ हो, सीसीएल हो, और इनको भी आजीविका गतिविधि से जोड़ने का अवसर हमारे द्वारा प्रदान किया जाता है।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

0: जागरूकता, डिजिटल लेनदेन, कौशल विकास और प्रशिक्षणों द्वारा स्वावलंबन को अपना रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह की महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं अजय कांत तिवारी, शाखा प्रबंधक, महाराष्ट्र बैंक, छिंदवाड़ा।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं वो विशेष रूप से महिलाओं के लिए होते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें पूरा एक ग्रुप बनता है जिसमें महिलाओं को जिस भी कार्य के लिए वो चाहती हैं, जैसे कि कुटीर उद्योग हो गया, पशुपालन हो गया, और भी प्रकार के लोन जो ग्राम में और छोटे कस्बों में जो वो कर सकती हैं, जैसे कि आपकी टोकरी बुनना हो गया, इस तरह के कई कार्य जो हो सकते हैं जिसके लिए हम उनको ऋण प्रदान करते हैं। पहले क्या करते हैं कि उनसे एक हमको कुछ दस्तावेज उनसे मांगते हैं, जैसे कि उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है उनका NURLM में, वहां से हमको एक बैंक सखी होती है, बैंक सखी के माध्यम से हमको जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक में जमा होते हैं। उसमें मुख्य रूप से उनका पंजीयन जो हुआ है वो हो गया, उसमें मुख्य रूप से तीन लोग होते हैं, जैसे कि आपका अध्यक्ष हो गया, सचिव हो गए और कोषाध्यक्ष हो गया। इन सब का हम आधार कार्ड और पैन कार्ड लेते हैं, इसका हम वेरिफिकेशन करते हैं और उसकी मीटिंग का एक हम मजमून लेते हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि इस ग्रुप के अंदर कुल कितनी महिलाएं हैं जो कि इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। फिर उसके आधार पर हम जितने भी इनके जो संगठन के जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, जैसे अध्यक्ष हो गया, आपका सचिव हो गया और कोषाध्यक्ष हो गया, इनके जो ऑफिस इन्होंने यहाँ बताया है वहां जाते हैं, वहां उसको सत्यापित करते हैं। उसके अलावा इनके घरों का सत्यापन होता है और जहां ये मुख्य रूप से अपना रोजगार या जो भी ये व्यवसाय कर रहे हैं वहां जाकर भी हम इसको वेरीफाई करते हैं। हम जाकर के हर 2-3 महीने के अंतर पर उन जगहों पर जहां हमने पहली बार सत्यापन किया है फिर जाकर के उसको वेरीफाई करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो आपके संगठन की महिलाएं हैं वो कहां कहां कार्य कर रही हैं, और फिर हम वहां वहां जाकर भी उसको सत्यापन करते हैं कि ये यहां पर कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे पास बैंक सखी जो महिलाएं हैं जो कि इन सब का हमें दस्तावेज देती हैं, जो इनके बारे में हमें बताती हैं कि ऐसे ऐसे ये आ रहे हैं वो हैं, और उसके अलावा हम चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जितनी महिलाएं हैं जो ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं, जो हमारी भारत सरकार की जो ये स्कीम है इसके थ्रू लाभान्वित हों और अपना उन्नयन करें।
0: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के समेकित विकास और जीवन स्तर में गुणात्मक सुधारों के लिए स्वयं सहायता समूह के गठन के अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त कर रहा है। स्थायी आजीविका के अवसरों ने ग्रामीण भारत की महिलाओं को नई दिशा दी है। इससे गाँव में निवास करने वाली महिलाओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन अब स्पष्ट रूप से परिलक्षित भी हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गए इस मिशन ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध किया है बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और गौरव को भी एक नई पहचान दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कार्य करने वाली इन हितग्राही महिलाओं से हमने बात की और इनसे इनके अनुभवों को जाना।
2: रजनी डहरिया भाना देई, शारदा स्व सहायता समूह। ये अपना जो NRLM है, आजीविका मिशन जनपद, वहाँ से जुड़ी हूँ। हमारे ये श्री कपिल पटवा सर हैं, उन्होंने प्रोत्साहित किया है। पूरा समस्त स्टाफ बहुत अच्छा है वहाँ का भी। 12-15-10 दीदियों को जोड़ना है तो पहले ये फील्ड वर्क की मैंने, ये अपन को समूह में जुड़ना है करके पहले पूछ रही थी कि दीदिया क्या फायदा मिलेगा, तो मेरी आपको फायदा मिलेगा आप इसमें जुड़िए, 100-100 रुपए आप लोग को हर महीने जमा करना पड़ेगा और 3 महीने के बाद फिर अपन को RF की राशि, CIF की राशि और 6 महीने बाद अपना बैंक से लोन हो जाएगा और बैंक में खाता खुलेगा इसका समूह का। सब दीदियों ने लिए हैं तो कुछ कुछ में लगाई हैं दीदिया लोग ने, मैंने भी अपना जो रोजगार है उसमें लगा ली पैसा भी। दीदियाँ कुछ जरूरत है कृषि में, पशुपालन में, दुकान में, उसमें व्यय करती हैं दीदिया लोग। फायदा तो काफी, आर्थिक स्थिति जो थी हम वो सुधरी। जैसे अपन जैसे काम कर रहे हैं, पहले अपन को ये इसका लाभ नहीं मिलता था, पैसे जैसे पेमेंट से काम कर रहे तो इसका अपन को राशि मिलने लगी है। दीदियाँ काम कर रही हैं पढ़ी लिखी जो सभी को राशि मिलने लगी, और अपने जो सर आए हैं सर के आने से काफी परिवर्तन हुआ है अपने आजीविका मिशन में, पहले नहीं था, बकायदा राशि मिल रही है उनको। तो दीदिया लोग आत्मनिर्भर बन गई है, सक्षम है, अपने पैरों पे खड़ी है। जब दीदिया लोग जुड़ती हैं तो प्रोत्साहित होती है जुड़ने के लिए। काफी दीदिया लोग जुड़ गई और बहुत सारे नए समूह बन रहे हैं, नदी में भी गाँव का विकास होगा
3: जी। मेरा नाम संगीता यादव है, ग्राम कुंडा, तहसील चौरी, जिला छिंदवाड़ा। हम लोग दुकान चलाते हैं, जनरल स्टोर। स्व सहायता से समूह से जुड़े हैं तो उससे लोन लेके उसको बढ़ा रहे हैं। हमारे स्व सहायता समूह का नाम सागर, हम 11 बहने हैं। स्व सहायता समूह बनाने के लिए हमारी नोडल मैम है एक अनिमा मिंज, 2018 में आई हुई थी यहाँ गाँव में फील्ड करने आई, तो हमसे संपर्क हुआ उनका कि ऐसा ऐसा है आप जुड़ो समूह खुलाओ खाता। तो फिर हम लोग ने खुलाए तो हमको काफी अच्छा बेनिफिट मिला था, हम हर साल उससे फिर लोन लेते जा रहे हैं। हमारी इसमें ज्यादा बहने जो है दुकानें वाली हैं, किसी का बुक डिपो है, किसी का फिर जनरल स्टोर है, किसी किराना दुकान है, एक दो जो है पान ठेला वाली भी है हमारी।

0: सभी को जरूरत पड़ती तो लेते हैं, हर साल ले रहे हैं हम लोग। समूह बनाने में कठिनाई नहीं आती, जैसे अपने लोन ले लिए, अपन अध्यक्ष सचिव है तो अपने सदस्य को अपन ही कंट्रोल करके चलना पड़ता है कि भाई 2 दिन पहले उनको बताओ कि अपनी किस्त आ गई है। दिक्कत कुछ नहीं है, बस सदस्य अच्छे रहना चाहिए, प्रोग्रेस भी हो रहा, आपस में चर्चा भी कर लेते हैं। जैसे मुद्रा लोन आया अभी, जिसको चाहिए तो वो अलग से ले सकता है अपना सीसीएल लोन के बावजूद भी। समूह से जुड़े, समूह से अपन लेन देन करें, फिर अपना अच्छा रोल काल रहा तो अपन को लोन मिलता है हर साल, अपना बिजनेस में प्रोग्रेस करें।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए द्वार खोलने और विकास को एक नई गति देने का सुनियोजित प्रयास है, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशिक्षण से रोजगार प्राप्ति तक की यात्रा ने ग्रामीण महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी है, इससे उन्हें एक नया आत्मविश्वास मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आज ग्रामीण समुदायों में समावेशी विकास और बेहतर जीवन स्तर का एक सशक्त वाहक बन गया है। तो आइए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र की प्रस्तुति थी। आलेख एवं वाचन स्वर रजनीश शर्मा, संपादन अनिल सनोडिया का था, प्रस्तुति सहयोग गीतांजलि गीत और प्रस्तुति थी अमोल शेंडे की और संयोजन था अल्पना गोलेंद्र का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की, प्रस्तुति थी आकाशवाणी छिंदवाड़ा की। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनाते हैं पहला गीत फिल्म तराना से। ये गीत लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीत है राम लक्ष्मण का, स्वर हैं शैलेंद्र के।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म अखियों के झरोखों से, इस फिल्म का गीत और स्वर थे हेमलता के, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब समय है एक अंतराल का।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित की जाए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं।

0: सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया। इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि NDA में NCPI अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
3: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो फील to run the house is their responsibility. But in our house, it has become a regular practice to disturb the house and not allow the house to run.
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और ना ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज किया जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगू की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में तीन दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन

0: कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
1: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
2: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा तीन दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता है। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान

0: तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है, जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेस्सी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेस्सी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार हैं। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर हैं। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित हैं। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई हैं। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of parliament beginning tomorrow, urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160 kilometer long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claim 9 lives in Nagaland. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, host England set 388-run target for India in the third and final ODI at Lord's. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will commence tomorrow and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. On the eve of the monsoon session, government today convened an all-party meeting and Parliament

0: बहस मुबहसा होगा। मॉनसून इजलास से पहले हुकूमत ने आज पार्लियामेंट हाउस की एनेक्सी में एक कुल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसकी सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और राज्यसभा में ऐवान के सरबराह जगत प्रकाश नड्डा, पार्लियामानी उमूर के वजराए ममलकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन भी इस मीटिंग में शरीक हुए। अपना दल की रहनुमा अनुप्रिया पटेल, जेडीयू के रहनुमा संजय झा, टीडीपी के रहनुमा लवू श्रीकृष्ण देवरायलु, कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी रहनुमा धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट महुआ माझी और दीगर 40 सियासी पार्टियों के 50 से ज्यादा रहनुमा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, अपोजिशन पार्टियों ने भारत की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी की शमूलियत के मामले पर मीटिंग से अलामती वॉकआउट कर दिया। NCPI एक रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसने हाल ही में मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में शिरकत की थी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ बागी अरकान पार्लियामेंट ने इसमें शमूलियत इख्तियार की थी। अलबत्ता ये अपोजिशन अरकान मुजाहरे के बाद मीटिंग में शरीक हो गए। मीटिंग के बाद नामनिगारों से बात करते हुए जनाब किरण रिजिजू ने सभी सियासी पार्टियों से जोर देकर कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि पार्लियामेंट का कामकाज खुश उसलूबी से जारी रहे और वो अहम मामलात पर तामीरी बहस मुबाहिसा करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजाय रखना अंदाजी के एक बामाना बहस जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए लाजमी है।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: सुने। टीएमसी की मेंबर पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जेएमएम, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत सभी ओपोजिशन पार्टियों ने इस मीटिंग से वॉकआउट किया। उन्होंने ये इल्जाम भी आयद किया कि एनसीपीआई कोई तस्लीमशुदा पार्लियामानी पार्टी नहीं है। राज्यसभा में ओपोजिशन के नायब रहनुमा प्रमोद तिवारी ने एनसीपीआई को इस मीटिंग में मदऊ किए जाने के खिलाफ इस वॉकआउट को एक अलामती बाइकआउट करार दिया। एनसीपीआई के रहनुमा सुदीप बंदोपाध्याय ने ओपोजिशन पार्टियों की इस कुल पार्टी मीटिंग के दौरान उनके एहतजाज पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले पार्लियामेंट के कामकाज से मुतालिक मुशावरती कमेटी BAC की मीटिंग तलब की है। मीटिंग में हुकूमत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने पार्लियामेंट इजलास के दौरान जेर गौर आने वाले कानून साजी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब ओम बिरला ने तामीरी बहसो मुबाहिसा, बामाना शिरकत और पार्लियामानी रवायात की आला अकदार की पासदारी की अहमियत पर जोर दिया। दिल्ली पुलिस ने वजाहत की है कि कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के इजलास के पेश नज़र नई दिल्ली जिले में किसी भी एहतजाजी मार्च या जुलूस की इजाज़त न तो मांगी गई है और न ही दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि मजकूरा इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की दफा 163 नाफिज है, लिहाजा जंतर मंतर के अलावा इलाकों में एहतजाजी मार्च, जुलूस, मुजाहरे और 5 या इससे ज्यादा अफराद के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी आयद है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत उड़ीसा के साहिल पर 160 किलोमीटर से ज्यादा तवील रामेश्वर पारादीप शाहराह तामीर करेगी, जिस पर 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये शाहराह खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे रियासत के साहिली इलाके में सकाफती, मजहबी, सियाहती और इकतसादी मकाम के माबेन बिला रुकावट रबता फराहम होगा। वजारत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से सड़क के बुनियादी ढांचे में बेहतरी और सियाहत और इकतसादी सरगर्मियों के फरोग की वजह से यकसर तब्दीली आ जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: इस नई शाहराह से मकामी लोगों के लिए मौके पैदा होंगे, क्योंकि इस शाहराह की वजह से होटलों, होम स्टेज, रेस्तरा, दस्तकारी की मार्केट्स और सियाहत पर मबनी कारोबार को फरोग हासिल होगा। इस प्रोजेक्ट से 9 इकतसादी मकाम और 5 लॉजिस्टिक्स के मराकज में बाहम रबता होगा, जिससे उड़ीसा के इकतसादी नेटवर्क को इस्तेहकाम हासिल होगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है।

जम्मू कश्मीर में बर्फानी बारिश की वजह से रजौरी और पुंछ के सरहदी जिलों में मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक सैलाब के वाकये में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए जबकि 7 दीगर

बहुत से जिलों में मूसलाधार बारिश के सबब अचानक सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और जाने भी जाये हुई है। मौन जिले में अचानक सैलाब और जमीनी तोदे खिसकने के हादसात में 9 अफराद हलाक हो गए और बहुत से घर बह गए। नागालैंड की कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली रियासती अथॉरिटी के जॉइंट सीईओ जॉनी रंगमे ने आकाशवाणी के हमारे नामनिगार को बताया कि 3 खवातीन और 1 शख्स समेत 4 मुतासरीन की लाशें बरामद कर ली गई हैं और बकिया 5 की तलाश की जा रही है। नगीनी पोड़ा में 4 अफराद को जो मलबे में दबकर शदीद जख्मी हो गए थे बचा लिया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि गैर मुतअद्दी अमराज मुल्क में सेहत आम्मा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे निमटने के लिए अवामी सतह पर एक तहरीक शुरू करने की जरूरत है। वो आज नई दिल्ली में साइंस और टेक्नोलॉजी शोबे के साबिक सीनियर मुशीर डॉक्टर अखिलेश गुप्ता की तसनीफ अनब्रोकन माई बैटल विद कैंसर एंड द विल टू लीड के इजरा के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। मोल्दोवा और रोमानिया के सफीर डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने कहा है कि सदर द्रौपदी मुर्मू का इन दो मुल्कों का दौरा तारीखी नौयत का होगा। डॉक्टर महापात्रा ने प्रसार भारती से बात करते हुए कहा कि भारत और मोल्दोवा के दरमियान गर्म जोशी पर मबनी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं और ये दौरा एक अहम और तारीखी संग मील साबित होगा जिससे दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात एक वसी तर शराकतदारी में बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोमानिया यूरोपीय यूनियन में एक काबिल कदर शराकतदार है और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती समझौते के बाद दोतरफा इकतसादी शराकतदारी से आइंदा बरसों में ये ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज 3 मुल्कों मोल्दोवा शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे पर रवाना हो गई हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में वो मोल्दोवा पहुंचेंगी। ये किसी भी भारतीय सदर का मोल्दोवा का पहला सरकारी दौरा होगा। इस दौरान सदर जमहूरिया मोल्दोवा की सदर माई सैंडी से मुलाकात करेंगी और वर्द की सतह की बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू मोल्दोवा की पार्लियामेंट के सदर इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वो मोल्दोवा भारत बालेमानी दोस्ती ग्रुप के अरकान से मुलाकात, एक कारोबारी फोरम से खिताब और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगी। दौरे के दूसरे मरहले में मोहतरमा मुर्मू 21 से 22 जुलाई तक शिमाली मकदूनिया में रहेंगी जबकि अपने दौरे के आखिरी मरहले में वो 23 से 25 जुलाई तक रोमानिया का दौरा करेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उन्हें जंतर मंतर से अस्पताल मुंतकिल करने के हुकूमत के फैसले को मनमाना करार नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मिनी पुष्करना का ने कहा कि वांगचुक को फौरी तौर पर एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने के किसी फौरी हुक्म की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स उनकी हालत पर करीबी नजर रख रहे हैं और उनका इलाज मुआवजा उनकी मर्जी के मुताबिक किया जा रहा है। अदालत वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमू की एक दरख्वास्त की समाहत कर रही थी जिसमें उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की गई थी। अमरीकी फौज ने आज ईरान पर फजाई हमले किए जिनमें ईरान के नीम फौजी दस्ते सिपाहे पासदारन इनकलाब IRGC को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा कि यह कार्रवाई उर्दुन में अमरीकी फौजियों की हलाकत के जवाब में की गई है। अमरीकी सेंट्रल कमान के मुताबिक हमलों में ईरान की साहिली निगरानी, फजाई दिफाई तंसीबात, बहरी सलाहियतों और मिसाइल और ड्रोन मराकज को निशाना बनाया गया। अमरीका ने कहा है कि पहली मरतबा उसकी कार्रवाई का खसूसी निशाना IRGC थी जो ईरान के मजहबी निज़ाम में एक ताकतवर इदारा है और मुल्क के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कंट्रोल रखती है। ईरान ने अमरीकी हमलों से होने वाले नुकसान की तफसीलात जारी नहीं की हैं। अमरीकी फौज मुहिम अब 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है। दोनों ममालिक आबनाए हुरमुस पर कंट्रोल के लिए एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने भारत की सरकर्दा खातून बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय के तौर पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर मुर्मू ने कहा कि भारतीय बैडमिंटन की तारीख में यह कामयाबी एक अहम संग मील है। नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन ने सिंधु की इस हुसूलियाबी को तारीखी करार दिया है और कहा है कि इस कामयाबी से कौम को फख्र हासिल हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जापान ओपन 2026 के खवातीन के सिंगल्स का खिताब जीतने पर PV सिंधु को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस कामयाबी को भारतीय बैडमिंटन के लिए एक तारीख साज कारनामा करार दिया।
وزیر اعظم نے کہا کہ سندھو نے پورے ٹورنامنٹ کے دوران غیر معمولی مہارت، عزم اور بہترین کھیل کا

0: तो जिस तरह से पिछली बार कई लोगों ने उस वक्त नहीं किया था, लेकिन आज वो लोगों ने अफसोस जाहिर किया। अब समझ में उनको आया कि एक देश नीति होती है, देश के हित में काम होता है, समाज के हित में काम होता है और एक परिवार के हित में काम होता है। तो ऐसे लोगों ने, बहुत लोगों ने पार्टियां छोड़ भी दी हैं, अपनी पार्टियां बना ली हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार ऐसे कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे कोई बिल जो है उसमें कहीं ना कहीं हम पूरे तौर से सेटिस्फाइड हैं कि लोगों का समर्थन, अपोजिशन बेंच का समर्थन, सबका समर्थन मिलेगा और इस बार हम उस तरह के लेजिस्लेशन को, एक कानून के पास करके, बिल को पास करके कानून बना सकेंगे। उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन एक मुद्दा है, जैसा आपने सही कहा कि कोई घोर अपराध करता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर पर बैठा हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर चाहे चीफ मिनिस्टर, अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहता तो उसको पद से छोड़ना पड़ेगा। ये भी बिल एक है जो रेफर किया गया था जेपीसी को, वन नेशन वन इलेक्शन का जेपीसी को रेफर किया गया था। ये सब मुद्दे जो है वो जाहिर है जो आएंगे इस बार डिस्कशन के तौर पे आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी जो बिल आ सकता है वो हो सकता है कि किसानों से जुड़ा हुआ हो, या फिर लेबर से जुड़ा हुआ हो, या फिर डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ हो। ऐसे बिल आ सकते हैं जिससे जनविश्वास का बिल हो सकता है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है, और माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड कुछ बिल हो सकता है जो पेश होगा सरकार की तरफ से, और उसमें मुझे लगता है कि चर्चा करनी चाहिए अपोजिशन को, उसको डिटेल चर्चा करें और चर्चा करने के बाद बिल का समर्थन करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं कि बात तो कर लेते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, टाइम भी एलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो फिर ये अपना दूसरा रूप जो है, दूसरा चेहरा दिखाते हैं और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस कॉन्डक्ट करना देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए बहुत जरूरी है, और मैं अपील करूंगा अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन की पार्टियों को, देश को प्राथमिकता दीजिए, देश हित में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, देश नीति को प्राथमिकता दीजिए, एक आम नागरिक के हितों में जो बिल आ रहा है उसको प्राथमिकता दीजिए, ना कि अपने लीडर्स को जो एक ऑलरेडी क्राइसिस में है, जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनके यहाँ तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहा है। ऐसे बिल को ठुकरा के आप जनता का भी फायदा नहीं करेंगे, और जब जनता के दरबार में जाएंगे तो जनता आपको नाकार देगी। ऐसा देखिए केजरीवाल साहब की पार्टी को क्या हुआ, उन्होंने जनता के साथ वायदे किए लेकिन जब झूठ बोला तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया, बाद में इनके अपने लोगों ने ही उनको दरबदर कर दिया। उसी तरह से टीएमसी का देखिए क्या हाल हुआ, आज टीएमसी नहीं बच पाई, ममता बनर्जी नहीं बच पाई, इसलिए ममता बनर्जी की जो ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, जो देश के खिलाफ उनका अप्रोच था, वो सारी चीजें ने उनके अपने पार्टी के लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं इस बात को जग जाहिर करते हुए कि उनकी पॉलिसी और नीतियों से हम लोग रजामंदी नहीं है और इसलिए हम लोग कन्विंस नहीं है, इसलिए देश हित में वो फैसला नहीं लेती, इससे उनसे भी अलग हो गए। आज मुझे ऐसा लगता है कि इवन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को समझते होंगे, और जब बिल ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए, वो 100% मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार पूरे तौर से उसको अप्रूवल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और लोग अपने देश हित का, देश नीति का ज्यादा ध्यान देंगे, न कि परिवार को समर्पित होकर परिवार के लिए काम करें।
1: जी जफर साहब, अब चलते हैं सुखदेव भगत जी के पास जो कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर आरोप आप पर है सुखदेव जी की कांग्रेस पार्टी जो है वो मुद्दों की राजनीति नहीं करती, परिवार की राजनीति करती है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मानसून सत्र के लिए मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के क्या एजेंडे हैं, और जैसा कि जफर साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर गेम अब पक्ष में है किसी भी बिल को पास कराने के लिए, क्या रणनीति है कांग्रेस की?
2: मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी कांग्रेस के नहीं, पूरे देश की आवाज ये, अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेके संसद में अपनी बातों को रखती है या बाहर इन बातों को रखती है तो जन मुद्दे होते हैं। और जफर भाई जिन बातों को इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जिन बातों को कहा है परिवारवाद, तो मुझे लगता है कि एथनॉल की कंपनी E20 के लगातार भी बातें काफी चर्चा में रही है, वो किनके बेटे हैं, अमित शाह के बेटे कौन है, तो ये तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के हमेशा जो मुद्दों से भटकाव वाली बात है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जो अगर भारत की बात करें, सौगंध राम की खाते हैं जो वाले बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनकी बदौलत वो सत्ता में आई है, और हमारी जो हमारी विश्वास, हमारी आस्था का सा जो खिलवाड़ किया गया है राम मंदिर में, जो चोरी के मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि यहाँ के भावनाओं से जुड़ी हुई है। नीट के पेपर जो लगातार हमारे करोड़ों स्टूडेंट्स है जिनका भविष्य अंधकार में, उन्होंने नीट हमारे लिए इशू है, बेरोजगारी हमारे लिए इशू है, और ये लगातार जिन बातों को करे, अंडमान निकोबार के माध्यम से जिस प्रकार कारपोरेट घरानों को स्थापित की जा रही है, और क्या ये देश संप्रभु है क्या, जिस प्रकार हमारे ये पहली बार ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार हमने देखने को यहाँ मिला है जिसमें कोई दायित्व सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीट के लिए प्रधान जी अकाउंटेबल नहीं है, यहाँ पर प्राइस हाइक के लिए पूरी जी अकाउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे

0: ये स्थिति हो, आपने देखा होगा विकास की जो बात करें कितना भ्रष्टाचार क्या लगातार एक एक बारिश में, चाहे वो एयरपोर्ट की बात करें, हाईवेज की बात करें, वो मुद्दे हैं। और ये पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिला है कि हम यहाँ पे राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, सदन को उन्होंने गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया है कि हमारे सैनिक नहीं मारे गए, अभी जाके आप देख लो। तो ये पूरी की पूरी सरकार, और जिसकी बात ये कह रहे हैं ना ममता बनर्जी की बात करें, ये पहले तो ये वोट चोरी करती है, एमपी एमएलए को चोरी करते, फिर सरकार भी चुरा लेती है। और एसआईआर का जो मुद्दा है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन है, वो ना निष्पक्ष है, ना स्वतंत्र है, ना इंडिपेंडेंट है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इन्होंने नहीं बनाकर रखा है, वो भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर ग्रुप में काम कर रही है, जिसके लिए राहुल गांधी जी लगातार उन बातों पर रख रहा है। आज भी जिस एग्रीकल्चर की बात करें, एमएसपी के बारे में इन्होंने क्या किया है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और हम ये समझते हैं, और रही बात गंभीरता की, मैं समझता हूं कि मैंने कहा ये सदन केवल राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे आशाओं का वहां पे जो बातें आशाओं भरी निगाहों से देखते हैं, लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो हम लोग इन मुद्दों को लेके इस बार हम लोग पूरी प्रखरता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ राहुल जी के नेतृत्व में इन बातों को हम लोग सदन में रखेंगे।
1: सीपीआईएम से हमारे साथ अमरा राम जी भी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी पार्टी किन जन सरोकारों को संसद में सबसे मजबूती से इस मानसून सत्र में उठाने वाली है।
2: एक तो जिस तरह से महंगाई से लूट रही है जनता, और एक जो पेपर लीक नीट का किया है, जिसे पूरे देश के 22 लाख होनहार विद्यार्थियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जिसमें दर्जनों अकेले राजस्थान के कई बच्चों ने अपने जीवन लीला समाप्त की है, और ये जो महिला आरक्षण बिल है वो अलग से पास किया हुआ है, इसका लागू करने की जो शर्तें उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और 33% आरक्षण जो भी आने वाली जो जनगणना और पुनर्गठन की शर्त है उसमें लगाई हुई है वो हटाएं, और पूरी जो इस ईरान युद्ध के कारण जो रेटें बढ़ाई थी पेट्रोल डीजल रसोई गैस की, वो तमाम वापिस लें। आज जिस तरह से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ने से पूरे देश में जो महंगाई की मार झेल रहे थे, उसमें और गांव पे नमक छिड़कने का काम किया। तो ये तमाम मुद्दे, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, लाखों पद खाली हैं, वो नहीं भर रहे हैं, और एक जो जनतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरह से खरीद फरोख्त पार्लियामेंट मेंबरों की कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए सब मुद्दे होंगे।
1: आम आदमी पार्टी से अनमोल पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल जी, आपकी जो पार्टी है शिक्षा, स्वास्थ्य और संघीय ढांचे के मुद्दे को बहुत प्रखरता से उठाती रही है, मॉनसून सत्र को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? और जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सदन को चलने नहीं देता, सिर्फ हंगामा करना उसकी रणनीति है।
3: देखिए, विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देता, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोगों के असल मुद्दों पे जवाब दिए जाएं। भाई पिछले 12 साल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो गए, युवाओं के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया पिछले लगभग 3 महीने के अंदर, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल भी इस पे चुप्पी साधे हुए है। और दूसरा ये है कि जिस तरह से प्रभु श्री राम के नाम पे लोग वोट मांग के आए थे, जिन लोगों को इन्होंने ट्रस्ट में नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री द्वारा खुद नियुक्त किए गए थे, वही लोग आज वहां पे डकैती डाल रहे हैं। हजारों करोड़ों का वहां से चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, वहां से इन्होंने जमीन में भ्रष्टाचार किया। जो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव थे चंपत राय जी, उन्होंने 23 करोड़ की जमीन लगभग 160 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे खरीदी। 18 दिन तक इन्होंने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, 18 दिन बाद जब अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे तो इन्होंने एफआईआर रजिस्टर की। एक फर्जी एफआईआर, एक फर्जी एसआईटी का गठन किया गया केवल लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए। और तीसरा प्रमुख मुद्दा जिस पे हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, वो E20 से जो लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं, कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। भाई सरकार ने नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा था कि लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, जो प्योर पेट्रोल भरवाना चाहे वो प्योर पेट्रोल भरवाए, जो E10 भरवाना चाहे E20 भरवाना चाहे उसे ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आज वो मना कर रहे हैं। 2023 से पहले की बनी लगभग 30 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो खराब हो रही हैं, वर्क स्टेशन पे लाइन लगी हुई है, सर्विस स्टेशन पे लाइन लगी हुई है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी गए पेट्रोल पंप पे, उन्होंने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई। तो इन मुद्दों पे सरकार को जवाब देना चाहिए,
4: लेकिन आप देखिएगा जैसे ही संसद में विपक्ष इन मुद्दों पे सवाल करेगा ये हंगामा करेंगे ये जो है सदन को चलने नहीं देंगे यही होता है और यही करते रहेंगे।
1: जफर साहब आपसे थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं कि संसद के मॉनसून सत्र में आपने भी कहा कि आपने इशारा किया कि नंबर गेम आपके पक्ष में है और जो परिसीमन और महिला आरक्षण का महापैकेज बिल है वो दोबारा आप

0: लाने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किस तरह के संशोधन हुए हैं? जब ये पिछली बार सदन में आया था तो ये विधेयक नहीं बन पाया था, इस बार सरकार उसमें किन प्रावधानों को जोड़कर या घटाकर पेश करने की कोशिश करेगी?
1: देखिए, अभी तो एक चर्चा का विषय है, जब एक बार इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उसमें संशोधन किया गया नहीं किया गया। लेकिन जो आपने जो पहले कहा कि आंकड़ों की जगह पर एक अपील जो हमारी थी उस वक्त बिल के गिरने के बाद कि देश हित के बारे में एक चुने हुए नुमाइंदों को सोचना चाहिए, वो अपील जो है जाहिर है लोगों ने समझा, परखा, सुना और जनता से चर्चा जरूर की गई और अपने लीडरशिप को भी परखा होगा तो समझ में आया होगा कि ये अपने लिए काम करते हैं, ना कि देश के लिए या जनता के लिए। इसलिए आपने देखा कि वो नंबर जो बहुत ही गैप ज्यादा था उस वक्त, अभी अपने आप ही गैप खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि जब ये बिल पूरे तौर से चर्चा में आएगा तो बाकी चीजें भी जब साझा होंगी, सारी चीजें लोगों को जानकारी मिलेगी, उसके बाद ये बिल को समर्थन नहीं, प्रचंड बहुमत से बिल जो है पास होगा और एक जो लोगों का एस्पिरेशन है वो रियलिटी में बदल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बचे खुचे लोग भी हैं उनके, जैसे अभी आपके स्पोक्स पर्सन बोल रहे थे बड़ी बड़ी बातें, बट उनके लिए पार्लियामेंट में उनके ही लोग नहीं बचे और जो लोग थे उनके, वो जाहिर है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनके लीडर केजरीवाल साहब के बारे में बात कर रहे थे, वो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं मरते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, झूठे वायदे करते हैं, जनता के मुद्दे से दूर पर्सनल मुद्दा ज्यादा एजेंडा चलाते हैं, मीडिया में अपने आप को हर वक्त इंट्रोड्यूस करते रहते हैं और चाहते हैं कि मीडिया में चमकते रहे, तो ऐसे लोगों को उनके ही लोगों ने नाकार दिया। तो जनता के दरबार में तो जब जाएंगे पूरी तरह से नकारे जाएंगे, जो बचे के चले वो भी नकारे जाएंगे, लेकिन आज उन्हीं के पार्टी के उन्हीं के लेफ्टिनेंट जो पहले कभी हुआ करते थे आज उनसे विपरीत अलग खड़े हैं, उनका स्टैंड भी बिल्कुल क्लियर है कि देश हित में है, देशवासियों के हित में स्टैंड होना चाहिए और मुझे लगता है कि वो आंकड़े जो है जो भी इसमें चेंजेस के बाद है वो सभी को स्वीकृत होगा और कुछ पार्टियां क्रॉस वोटिंग भी सामने दिखेगी।
0: सुखदेव जी, आपसे ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष की भूमिका सवाल उठाने के साथ साथ क्रिएटिव पॉलिटिक्स करने की भी है, क्योंकि आपको भी जनता ने मैंडेट देकर अगर संसद पहुंचाया है तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि देश हित में आप सरकार का सहयोग करें और कुछ रचनात्मक करें। क्या विपक्ष इस दिशा में भी सोच रहा है?
2: आपको मैं एक चीज बतला दूं, लोकतंत्र में जवाबदेही जो है विकल्प नहीं होता है, सरकार का संवैधानिक दायित्व तो होता है। हम अगर मुद्दों को उठाते हैं तो इनके लिए राजनीति हो जाती है। क्या अगर हम नीट की बात करें तो वो राजनीति है? क्या हम अंडमान निकोबार, जो ग्रेट निकोबार जिसमें आरएफ रिजर्व फॉरेस्ट भी काट दे, वो राजनीति है? क्या अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो राजनीति है? क्या अगर हम सॉवरेन कंट्री है, अगर हम जैसे ट्रंप जो डिक्टेट कर रहे वो हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे ट्रेड डील में 18% अगर वो कर रहे जो 33% था वो राजनीति है? क्या हम अगर ईरान के साथ, अगर आप जाते हो इसराइल जाते हो ईरान, वहां पे हमारा जो पुराना नेचुरल लड़ाई होता है वो आपसे नाराज होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अगर इस तरह की बातें, वो राजनीति है क्या? राजनीति जो राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मसले हैं, उसका समाधान अगर राजनीतिक तरीके से नहीं किया जाए, डायलॉग से नहीं किया जाए, तो फिर कैसे होगा? आज मैं बता रहा हूं जो गंभीरता की जो बातें होती है, आज भी मैं कह रहा हूं सत्ता पक्ष आज भी अगंभीर है, सत्ता पक्ष आज भी अपनी जिम्मेदारी से भागती है, और इसलिए मैंने कहा कि राम मंदिर में केवल आस्था की चोरी नहीं है, वहां तो जिम्मेदारी की भी चोरी हुई है, और यही एक कारण है चंपत राय को बचाने के वहां पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि FIR नहीं हुआ और SIT आपने गठन कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हम अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं और राहुल जी इस देश के जिम्मेवारी को समझते हैं और पूरे कंट्री जो है, पूरा देश जो है उन पे आशा भरी निगाहों से एक ऐसा व्यक्ति दृढ़ रही है जो दूरदर्शी भी है और पहले आगाह वो कर देते हैं और उसको बाद में सरकार उन बातों को मानती है। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, एक चीज होती है आप मेहनत से पास करो, एक है चोरी से पास करो। ये सरकार तो चोरी के द्वारा बनाई गई है, चोरी की सरकार भी है जो लोगों को चोरी करती है, मतलब MP चोरी करती है, MLA चोरी करती है, सत्ता चोरी करती है ये, और ये हमें नसीहत देती है। रही बात जिस संविधान की, 123वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, तो ये एक नैतिकता, हम अगर सार्वजनिक जीवन में है तो नैतिकता एक पक्ष होता है, नैतिकता एक शब्द होते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो रिजाइन करे अगर उसमें इस प्रकार की बातें हैं। लेकिन क्या भारत के कानून क्या कहते हैं कि जब तक कोई आरोप जो है दोष नहीं होता है तो न्यायिक प्रक्रिया बीच में करा देंगे और आप प्रतिशोध ना लेंगे, कौन क्या गारंटी लेंगे? ये सरकार तो प्रतिशोध ही लेती है लोगों से, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाहती है।
0: अमरा राम जी, जैसा कि सत्ता पक्ष के जफर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ विरोध कर रहा है और नंबर गेम में नहीं होने के बावजूद रचनात्मकता में बाधा

0: पहुंचाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि क्या विपक्ष इस मानसून सत्र में एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
1: बिल्कुल, असल बात यह है कि जो मुद्दे हैं जनता के जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रचनात्मक क्यों नहीं दें? हम तो बिल्कुल, जहां भी देश के सवाल आया है निश्चित रूप से एकजुट होकर के, जिस तरह से आज अमेरिका के साथ डील की है, जो हमारे माल पे अमेरिका जाता था, निर्यात होता था, उसमें 3% की जगह 18% लगेगा, और हमारे यहाँ 18 से 23 लगता था, वो 0 अमेरिका का सामान आने पे होगा, तो देश की बर्बाद होगा, तो उसके साथ कैसे खड़े हो सकता है प्रतिपक्ष? ये जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है सरकार की गलतियों को उजागर करना और जनता में जो बेदारी है उसको संसद में उठाना प्रतिपक्ष का है, और जो भी जो जनता के साथ है निश्चित रूप से वो सब मिलकर के उठाएंगे। सत्ता पक्ष जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, सर्वसम्मत कर दिया, तो इस शर्त को जनगणना और पुनर्गठन उसके साथ जोड़ने से क्या मतलब है? मतलब इसको बुधाने का महिला आरक्षण लागू नहीं करना चाहते। जिस दिन सर्वसम्मत पास हो गया, ये शर्तें जोड़ने की कहाँ जरूरत है? वो अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए महिलाओं के आरक्षण को सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये देश की जनता भी जानती है और संपूर्ण प्रतिपक्ष भी जानता है। जी
0: अनमोल जी, एक बार फिर आपके पास आते हैं। जफर साहब ने आरोप लगाया कि आपके खुद के लोग ही संसद में नहीं बचे तो आप क्या मुद्दों की राजनीति करेंगे? आप युवा हैं, क्या महिला बिल पर इस बार आपकी पार्टी कुछ सकारात्मक सोच रही है? एक और सवाल कि क्या विपक्ष इस बार एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देता नजर आएगा?
2: देखिए, सवाल आपका जो है वो सत्ता पक्ष से ये होना चाहिए कि वो क्यों नहीं चाहते कि महिला विधेयक जो है वो पारित हो। 2023 में विपक्ष तो पूरा एकजुट था, हमने तो कहा था भाई आप जो है महिला रिजर्वेशन जो है तुरंत लागू करो, 33% रिजर्वेशन दो आप 543 सीट में। उस समय इन्होंने कहा कि नहीं जी, अभी तो डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, उससे पहले सेंसस कराने की जरूरत है, 2011 के सेंसस पे देंगे तो महिलाओं के अधिकार मारे जाएंगे। उस समय बिल पास नहीं होने दिया, फिर 30 महीने बाद ऐसा क्या हो गया भाई? सेंसस तो उस समय भी नहीं हुआ था जब दोबारा ये महिला बिल लेके आए, हम तो तब भी समर्थन में थे कि आप रिजर्वेशन दीजिए, 33 क्यों, आप 50% रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को, महिलाओं को आधा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते, ये महिला विरोधी पार्टी है, इनकी कभी मंशा नहीं रही कि ये रिजर्वेशन दे। पंचायती राज का जब बिल आया था तो इन्हीं के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने विरोध किया था उस समय 1990 के दौरान जब पहली बार महिला रिजर्वेशन का बिल आया था पंचायती राज में। दूसरी बात भाई, हमारी जो है मेजोरिटी नहीं रही, हमारे सांसद नहीं रहे राज्यसभा में, ये कह रहे हैं ईडी पार्टी के प्रवक्ता। भाई ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी कर रही है। चुनी हुई सरकारों को जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता ने वोट डाल के चुना है, उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? ईडी पार्टी सरकार कर रही है। ईडी और सीबीआई को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तोता और मैना की तरह काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के, तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? ये लोकतंत्र के हत्यारे, ये संविधान के हत्यारे, जो दिन दहाड़े जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांग के उन्हीं के घर में डकैती डाल दी, तो इनका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये तो किसी के सगे नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ के जिस तरह से ये मेजोरिटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दर्शाता है कि पूरे देश के लोगों का विश्वास इनके ऊपर से पूरी तरह खत्म हो चुका। ये इस बात को भली भांति जानते हैं। 400 सीट की मांग की थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, लोगों ने इन्हें केवल 240 सीट दी। उसके बाद से इन्होंने जबरदस्त तरीके से अपना ऑपरेशन लोटस चालू कर दिया। कोई भी राज्य सरकार हो विपक्ष की, उसे तोड़ने का काम कर रही है ईडी पार्टी सरकार। और आप समाज का कोई भी तबका ले लीजिए, किसान इनसे परेशान है, जवान इनसे परेशान है, युवा इनसे परेशान है, छात्र इनसे परेशान है, व्यापारी इनसे परेशान है, तो इन्हें वोट आखिर क्यों देंगे वो लोग?
0: जफर साहब, आरोप प्रत्यारोप की बातों से अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें और थोड़ी सकारात्मक चर्चा करें, क्योंकि आकाशवाणी के श्रोता जो दूर दराज से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आर्थिक विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर मानसून सत्र से पहले सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है?
3: देखिए, अब ग्लोबल सिचुएशन जो है वो आपके नजर में भी है, दुनिया देख रही है कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। जब से ईरान, इजराइल और यूएस का जो एक जंग छिड़ी हुई है, उससे पूरे दुनिया को तबाही की तरफ ढकेल दिया है। ऐसे में भारत की स्थिति जो सबसे मजबूत स्थिति है, इसलिए कि भारत में आप देखिए हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है, महंगाई का दर भी हमारे जो वेल विद इन द लिमिट है। पहले जो यूपीए की सरकार में डबल डिजिट इन्फ्लेशन होता था, अभी तो आप देखिए सीपीआई इंडेक्स जो है वो जो हम 4 और 6 के बीच में जो हमने कहा है कि हम मेंटेन करेंगे इन्फ्लेशन, उसमें मेंटेन है। एमपीसी के द्वारा उस पर पूरा फोकस रहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो कि इन्फ्लेशन हमारा विद इन द रेंज रहे, और पूरे टाइम हमने 12 साल 13 साल में देखिए हमने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। लेकिन कभी कभी सीजनल फैक्टर की वजह से, कभी कभी ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, कभी कोई और कारण ऐसे आते हैं जिसकी वजह से कोई स्कार्सिटी होती है जैसे, या डिसरप्शन होता है, और उसकी वजह से प्राइस जो है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो खुदरा प्राइस में आ जाता है, उसका कभी न कभी इम्पैक्ट होता है। जैसे सीजनल फैक्टर में सब्जी और फलों के दाम बढ़ जाते हैं कभी, उसी तरह से कभी तेल के दाम बढ़ने से, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से उस पर असर आ जाता है, महंगाई पे असर आता है। बट ये सब टेम्पररी है, परमानेंट क्या है कि हालात जब नॉर्मल हो जाते हैं तो उस वक्त देखना चाहिए कि हमारा महंगाई दर क्या था, और यूपीए के समय में नॉर्मल सिचुएशन में महंगाई दर क्या था। तो आपको साफ दिख जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत की नीतियां मजबूत है, पॉलिसी मजबूत है, और भारत की सरकार का गवर्नेंस मॉडल ऐसा है कि जिसमें महंगाई पर भी फोकस है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने पर फोकस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर भी फोकस है, और जो देश की अर्थव्यवस्था जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स उस पर सब तरह से खरी उतरे उसकी कोशिश। आज देखे जो रिजर्व है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने आप में दर्शाता है कि देश की स्थिति बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है कंपेयर टू व्हाट इंडिया हैज सीन इन द पास्ट। तो ये सारी चीजें अपने आप को दर्शाती है हमने आम लोगों के लिए क्या, और वेलफेयर स्कीम के बराबर हम चिंता करते हैं, और इसलिए हम वेलफेयर स्कीम चलाते रहते हैं, उससे आम नागरिक को फायदा होता रहता है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, पेंशनर्स हो, सबके लिए हम स्कीम लेकर आए, सबके लिए चिंता करते हैं, और सबके लिए कुछ ना कुछ हर बजट में आता है, और भी अलग अलग पॉलिसी मेजर्स आते हैं जिसमें हम उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और देश के लोग मजबूत हो रहे हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं, और लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर में जो परसेंटेज है पर कैपिटा का वो बढ़ता जा रहा है, उस बात को दर्शाता है कि लोग अपने सेहत पर भी अब ज्यादा ध्यान देते हैं और उस पर खर्चा भी करते हैं। ये सारी चीजें जो है देश को एक मजबूत स्थिति देने वाली सरकार जो है उसने ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि देश की जनता और देश को दोनों बहुत कठिन समय में भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा।
0: सुखदेव जी, जैसा कि जफर साहब कह रहे हैं कि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव है, वैसे देश की स्थिति काफी सुदृढ़ है, प्रगतिशील है, और दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जनता कांग्रेस पार्टी से ये भी समझना चाहती है कि अपार अनुभव और सत्ता में कई दशकों तक राज करने के बाद ऐसी स्थिति में क्या विपक्ष रचनात्मक तरीके से समाधान भी सरकार को बताएगा या सिर्फ विरोध करेगा?
4: देखिए, निश्चित रूप से दो चीजें है, डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण चीज है सत्ता पक्ष और विपक्ष। इन्होंने कहा कि हम काफी जो हमारे गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों के, आप देते हो राशन, देते 80 करोड़ लोग के 5 किलो अनाज की बात कर रहे हो, आप गरीबी रेखा से ऊपर की बात करें, जो एमएसएमई का जो हालात है, जिस प्रकार जब मैं समझता हूं जो हमारे पीएसयू थे उनको जिस प्रकार से लाउट अप कर रहे हो, तो आप कहां पे वर्ल्ड रैंकिंग, आपको हंगर ये पे इंडेक्स में आप कहां पे हो, हर जगह पे हैप्पीनेस में आप कहां पे हो। मैं आज भी, मेरा ये मानना है कि ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, हमारे लिए सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण देश है, और देश कैसे समृद्ध हो, देश में जनता की बातें कैसे आए, जो सदन एक सर्वोच्च मंच था उसमें एक सार्थक बहस हो, सार्थक बातें हो, और जिम्मेवारी लोग निभाए। और हमने कहा अगर विपक्ष किसी बातों को रखती है तो वो दुश्मन नहीं है, उन बातों को आपको देखना चाहिए, एक कहावत है ना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, आप उन बातों को लेके चले और क्या बेहतर हो सके उनको लेके चला है। आरोप प्रत्यारोप से महत्वपूर्ण है एक पारदर्शी और जिम्मेवारी के साथ अपने जिम्मेवारी को, अपने दायित्वों का निर्वहन करना।
0: अनमोल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जनता संसद से नतीजे चाहती है, न कि सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। आप युवा हैं, आपके अनुसार इस सत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए?
2: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आपने जैसा कहा कि हम युवा हैं, तो हम युवाओं के लिए चिंतित भी हैं, तो सरकार जवाबदेही तय करे। 100 पेपर लीक हो गए पिछले 12 साल में, हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हमारे माँ बाप ने हमें इसलिए पढ़ाया है इस उम्मीद में कि हमारा भविष्य बेहतर हो, उन्हें बेहतर जीवन मिल पाए, और जो लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं वो कर्जा लेते हैं, अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, अपने गहने गिरवी रखते हैं कि अगर उनके बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा और देश की प्रगति में भी वो अहम भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना, तो उनके सारे सपने टूट जाते हैं, उनके सारे अरमान टूट जाते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे 25 होनहार बच्चों ने जो है सुसाइड कर लिया, उन्हें इस तरह का रास्ता चुनना पड़ा। तो ये सरकार जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रही, क्यों बचाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा। भाई, प्राइवेट जॉब में भी कोई गलती कर देता है तो उसे जो है टर्मिनेट कर देते हैं, यहाँ तो 100 पेपर लीक हो चुके, ईट एग्जाम के बाद 6 पेपर लीक हो चुके। मैं जो सरकारी

0: पेपर नहीं करा पा रही, उसके भरोसे एक युवा देश को कैसे छोड़ दिया जाए, आप ये बताओ, जो जवाबदेही तय करने से भाग रही है, और लोगों के मुद्दे हैं उस पर जवाब देना चाहिए ना सरकार को।
1: कार्यक्रम में समय कम है जफर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि संसद के मानसून सत्र के लिए विपक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे, और देश की जनता जो हर सत्र से उम्मीद लगाए बैठती है उसके लिए आप क्या क्या संदेश होगा?
2: देखिए, मैं जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे बस एक ही अपील है कि बिहेव लाइक ए रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, एंड आप एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने का जो दावा करते हैं उसी दावे को पूरी तरह से दिखाना चाहिए कि आप परिवार हित में नहीं देश हित में काम करते हैं, और उनके लोग जो है उनके साथ जो बचे कुचे लोग हैं उन्हें भी यही कहीं ना कहीं गाइडेंस देना चाहिए उनको कि भाई सब देश हित में काम करो, और जो ऐसे बिल आए जिसमें देश के नागरिकों का फायदा देश का फायदा है तो जरूर उसको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ अपोजिशन पार्टीज है जो कहने के लिए कहते हैं कि हम एक यूनाइटेड ब्लॉक है, इंडी ब्लॉक, बट उन लोग आपस में इतना एक दूसरे का विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब कहने के लिए ऑप्टिकली दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत में कोई एक दूसरे के साथ खड़ा ही नहीं है, और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है वो सब इनको जानकारी है। लेकिन फिर भी मैं अपील करूंगा कि आप जब आपस में मिले तो आप अपने पॉजिटिव जो सपोर्ट होना चाहिए उसको कीजिए उन मुद्दों पे जिन पे आपको भी लगता है कि देश हित में है और ये देश नीति के नाते आपको सपोर्ट करना चाहिए।
1: आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
3: संसद के समक्ष मुद्दे, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सैयद जफर इस्लाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से लोकसभा सदस्य सुखदेव भगत, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से लोकसभा सदस्य अमरा राम और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अनमोल पंवार। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रोताओं का स्वागत है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। श्रीमती बालामणि ईश्वर कर्नाटक संगीतज्ञ मुसरी सुब्रमण्य अय्यर के परिवार से जुड़ी हुई हैं। आपने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता श्रीमती सुशीला रामस्वामी से प्राप्त की। आगे आपने त्रिशूर के श्री राम वर्मा संगीत विद्यालय से उच्च प्रशिक्षण ग्रहण किया। आप 1992 से आकाशवाणी मदुरई में संगीत कलाकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। संगीत यात्रा के अनेक पड़ावों को पार करते हुए आज आप ए ग्रेड की कलाकार हैं। श्रीमती बालामणि ईश्वर ने संगीतज्ञ त्रिची श्री एस गणेशन से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी कला की तकनीक एवं कौशल का गहन ज्ञान प्राप्त किया। आपने तमिलनाडु और केरल में अनेक संगीत सभाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं तथा संगीत प्रेमियों की अपार प्रशंसा प्राप्त की है। श्रीमती बालामणि ईश्वर त्रिची एस गणेशन की कर्नाटक संगीत शैली में राग आलापना के लिए सुप्रसिद्ध हैं। पिछले 3 दशकों से सक्रिय रूप से गायन प्रस्तुत करती आ रही श्रीमती बालामणि ईश्वर अनेक पुरस्कारों एवं उपाधियों से अलंकृत हैं।
5: नमस्कार, दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इन टुनाइट्स प्रोग्राम यू कैन लिसन टू अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। श्रीमती बालामणि ईश्वर हेल्स फ्रॉम द लीनिएज ऑफ रेनाउंड वोकलिस्ट मुसरी सुब्रमण्य अय्यर। इनिशियली शी लर्नड म्यूजिक फ्रॉम हर मदर श्रीमती सुशीला रामस्वामी। फर्दर ट्यूटिलेज वॉज फ्रॉम रेनाउंड म्यूजिशियन त्रिची श्री एस गणेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग म्यूजिक Senior Certificate Course from Thrissur Sri Rama Verma Music School, Srimati Balamani joined Akashwani Madurai in the year 1992. Acclaimed for her Raga Alapana style rendition, she has travelled extensively for performances. Srimati Balamani Ishwar is an A-grade artist of Akashwani and is the recipient of several awards and accolades.
4: Aaj ke karyakram mein Srimati Balamani Ishwar ke saath sangat kar rahe hain वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी,

0: अब आप सुनेंगे मुथुस्वामी दीक्षितर की रचना शेषाचल नायकम, वराली राग और रूपक ताल में।
1: लिसन नाउ टू शेषाचल नायकम कंपोज्ड बाय मुथुस्वामी दीक्षितर इन राग वराली सेट टू ताल रूपकम।

रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमती बालामणि ईश्वर का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती

0: रचना के अंत में आपने सुना तनि आवर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजीरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। श्रीमती बालामणि ईश्वर अपने कार्यक्रम का समापन करते हुए प्रस्तुत कर रही हैं रचना मनदिर कुहंदद, सिंधु भैरवी राग और आदि ताल में। रचना है तंजावूर शंकर अय्यर की।
1: That was a tani avartanam performed by Shri B. Ganapati Raman on the mrudangam and Udupi Shri S. Srikant on the kanjira. Shrimati Balamani Ishwar concludes the concert with Manadir Kugandad, composed by Tanjavur Shankara Iyer in Rag Sindhu Bhairavi set to Tal Adi.

रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में आज आप सुन रहे थे श्रीमती बालामणि ईश्वर का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती परूर एम के अनंत लक्ष्मी, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा कंजिरा पर श्री उडुपी एस श्रीकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के मदुरई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया। इन द रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा यू जस्ट हर्ड अ वोकल रिसाइटल बाय श्रीमती बालामणि ईश्वर। शी वॉज अकॉम्पनीड बाय परूर श्री एम के अनंत लक्ष्मी ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड उडुपी श्री एस श्रीकांत ऑन द कंजीरा। Recorded in the studios of Akashvani Madurai, this broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौन भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी की नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्रीकृष्णा देव रायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने उन सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
1: सुने। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। यह यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉ मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। डॉ महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनाधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। जम्मू कश्मीर के